शुभ सवेरा, नमस्कार। नाइन्टी पॉइंट एट मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त सुनीता सिंह। अपने सभी सुनने वालों का, सुबह सवेरे जागकर हमसे जुड़ने वालों का, हमारे साथ चलने वालों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं, हार्दिक अभिनंदन करती हूं। श्रोताओं, आज सोमवार है, विक्रम संवत 2083 के भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि और शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 16वीं तिथि, तदनुसार 7 सितंबर सन 2026। इस समय 7:05 और 15 सेकंड हुए हैं। हमारी आज की ये सभा अब आरंभ होती है।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, समय है कि आपको आज सुबह प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों से हम परिचित करवाएं, लेकिन उसके पहले आज के दिन की बात। आप जानते ही हैं कि हमारे देश में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 1 से 7 सितंबर के बीच मनाया जाता है, तो आज इसका समापन है। हम आपको बताएं कि इसकी शुरुआत वर्ष 1882 में खाद्य और पोषण बोर्ड द्वारा की गई थी। उद्देश्य यही था कि स्वास्थ्य, शारीरिक विकास और उत्पादकता के लिए सही और संतुलित आहार के महत्व के बारे में लोगों को बताया जाए। इस वर्ष का मुख्य संदेश है स्वस्थ खानपान, जीवन शैली से सुधार और कुपोषण को दूर करना। तो श्रोताओं, जो संतुलित आहार है वो बहुत आवश्यक है। भोजन एक ऐसा तत्व है जो हर इंसान की ज़िंदगी में रोज़ाना शामिल होता है। हम प्रतिदिन भोजन करते हैं, लेकिन भोजन सिर्फ स्वाद का विषय नहीं है, भोजन हमारे स्वास्थ्य का विषय है, ये जानना बहुत आवश्यक है। तो संतुलित आहार लें। संतुलित आहार का मतलब है कि उचित मात्रा में सभी जो भोजन के पोषक तत्व हैं, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, वसा हो, विटामिन्स हो, खनिज हो, सब कुछ सही मात्रा में आपके शरीर में पहुँचे। इसलिए आवश्यक है कि आपका जो भोजन है उसमें अनाज भी हो ताकि कार्बोहाइड्रेट मिल सकें, उसमें सब्जियां ज़रूर शामिल हों ताकि विटामिन्स आपको मिल सकें, उसमें तेल और वसा और थोड़ी हल्की मात्रा में शक्कर का भी प्रयोग हो, और अगर आप मांस मछली खाते हैं, दूध लेते हैं, तो वो भी आप ज़रूर शामिल करें। तो इस तरह से एक संतुलित आहार रोज़ाना आपके जीवन में शामिल होना चाहिए ताकि आप स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे। तो आज यानी 7 सितंबर को, जबकि राष्ट्रीय पोषण सप्ताह समाप्त हो रहा है, लेकिन हम ये ज़रूर आपको याद दिलाना चाहेंगे कि पोषण किसी एक दिन की बात नहीं है, एक सप्ताह की बात नहीं है। भोजन आप रोज़ाना करते हैं, इसलिए रोज़ाना आपकी जो थाली है वो संतुलित होनी चाहिए। तो खाने की थाली हमेशा संतुलित हो, इसका प्रयास करें और जंक फूड से बचकर रहें। तो ये था आज का संदेश, और चलिए आपको बता दें कि क्या कुछ खास लेकर हम उपस्थित हुए हैं आज की प्रातःकालीन प्रसारण सभा में। अब से थोड़ी ही देर बाद आप सुनेंगे कार्यक्रम जीवन सौरभ, उसके बाद अक्षय निधि और फिर भक्ति संगीत। सुबह 8 बजे वतन का राग कार्यक्रम प्रसारित होगा। हमारा आज का ये कार्यक्रम गोपीनाथ कविराज पर केंद्रित होगा। 8:30 बजे सुनो कहानी कार्यक्रम के अंतर्गत मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी आप सुनेंगे, सेवा मार्ग। कला कल्लोलिनी, ये कार्यक्रम सुबह 9 बजे प्रसारित होता है। आज का ये कार्यक्रम विष्णु नारायण भातखंडे पर केंद्रित होगा। हमारा विशेष कार्यक्रम होगा सुबह 9:30 बजे। इसमें आपको हम सुनवाएंगे मार्च शैली में नाटक शहीद भगत सिंह का पहला भाग। नगर की सामाजिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों पर आधारित कार्यक्रम परिक्रमा का प्रसारण होगा सुबह 10 बजे। 10:10 का वक्त होगा रेडियो रिपोर्ट का। 10:30 बजे आज़ाद हिंद कार्यक्रम में हम बात करेंगे मान कुमार बसु ठाकुर की। शब्दों के शिल्पकार कार्यक्रम में 11 बजे आप सुनेंगे धर्मवीर भारती पर केंद्रित कार्यक्रम, और 11:30 बजे सुनिए धारावाहिक युग प्रवर्तक स्वामी विवेकानंद। आज इसकी 38वीं कड़ी प्रसारित की जाएगी। तो श्रोताओं, ये था एक संक्षिप्त सा परिचय आज सुबह प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का। एक छोटा सा अंतराल लेते हैं और उसके बाद कार्यक्रमों का सिलसिला शुरू होगा।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: श्रोताओं, कुछ बातें जो जीवन को देती हैं एक नई दिशा, कुछ घटनाएं जो सुलझा देती हैं मन की उलझने, महकती उन बातों को हम कहते हैं जीवन सौरभ। रेडियो आजाद हिंद की ओर से लीजिए सुनिए कार्यक्रम जीवन सौरभ।
2: जीवन सौरभ।
3: एक राजा को अपने लिए सेवक की आवश्यकता थी। उसके मंत्री ने दो दिनों के बाद एक योग्य व्यक्ति को राजा के सामने पेश किया। राजा ने उसे अपना सेवक बना तो लिया, पर बाद में मंत्री से कहा, वैसे तो ये आदमी ठीक है, पर इसका रंग रूप अच्छा नहीं है। मंत्री को ये बात बड़ी अजीब लगी, पर वो चुप रहा। एक बार गर्मी के मौसम में राजा ने उस सेवक को पानी लाने के लिए कहा। सेवक सोने के पात्र में पानी लेकर आया। राजा ने जब पानी पिया तो पानी पीने में थोड़ा गर्म लगा। राजा ने कुल्ला करके फेंक दिया। वो बोला, इतना गर्म पानी, वो भी गर्मी के इस मौसम में, तुम्हें इतनी भी समझ नहीं। मंत्री ये सब देख रहा था। मंत्री ने उस सेवक को मिट्टी के पात्र में पानी लाने को कहा। राजा ने ये पानी पीकर तृप्ति का अनुभव किया। इस पर मंत्री ने कहा, महाराज, बाहर को नहीं भीतर को देखें। सोने का पात्र सुंदर, मूल्यवान और अच्छा है, लेकिन शीतलता प्रदान करने का गुण इसमें नहीं है। मिट्टी का पात्र अत्यंत साधारण है, लेकिन इसमें ठंडा बना देने की क्षमता है। रंग रूप को न देखकर गुण को देखें। उस दिन से राजा का नजरिया बदल गया। सम्मान, प्रतिष्ठा, यश, श्रद्धा पाने का अधिकार चरित्र को मिलता है, चेहरे को नहीं। चाणक्य ने कहा है कि मनुष्य गुणों से उत्तम बनता है, ना कि ऊंचे आसन पर बैठने से। अमित सौंदर्य व्यक्ति के मन, विचार, चिंतन और कर्म का आईना है। कई लोग बाहर से सुंदर दिखते हैं, मगर भीतर से क्रूप होते हैं, जबकि ऐसे भी लोग होते हैं जो बाहर से सुंदर नहीं होते, मगर उनके भीतर भावों की पवित्रता इतनी ज्यादा होती है कि उनका व्यक्तित्व चुंबकीय बन जाता है। सुंदर होने और दिखने में बड़ा अंतर है। आपके गुण ही आपका सबसे बड़ा धन है।
2: जीवन सौरभ।
1: मन की उलझनों को सुलझाता, जीवन को एक नई दिशा, नया चिंतन देता, ये था कार्यक्रम जीवन सौरभ।

नमस्कार, मैं हूं चंदन दास, गज़ल गायक। 90.8 मेगा हॉर्स पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय निधि।
1: प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय निधि। अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के 13वें सूक्त से वाचन। ऋषि हैं गृत्समद और भार्गव शौनक। देवता हैं अग्नि, छंद है जगती और त्रिष्टुप।
2: ऋतुर्जनित्री तस्या अपस्परी मक्षु जात आविषद्यासु वर्धते तदाहना अभवत् पिप्युषी पयोंशोः पीयूषं प्रथमं तदुक्तं। वर्षा से सोम की उत्पत्ति होती है, वह सोम जल में बढ़ता है। श्रेष्ठ रस वाली लता कूटकर सोमरस निकालने योग्य होती है। यह प्रशंसनीय सोमरस इंद्रदेव का हविष्यान्न है। सध्रीमा यंति परि बिभ्रति ही पयो विश्वप्सन्याय प्रभरंत भोजनम समानो अध्वा प्रवता मनुष्यदे यस्ता कृणो प्रथमं सास्युक्त्यः। सभी नदियां प्रवाहित होती हुई समुद्र को जल से भरकर मानो भोजन कराती हैं। हे इंद्रदेव, यह अभूतपूर्व कार्य करने वाले आप प्रशंसा के योग्य हैं। अन्वेको वदति यद्ददाति तद्रूपा मिनंतदपा एक ईयते विश्वा एकस्य विनुदस्ति तिक्षते यस्ता कृणोः प्रथमं सास्युक्त्यः। सूक्ष्म चेतन प्रवाहों अथवा श्रेष्ठ कर्मरत व्यक्तियों यजमानों में से एक जो कुछ देता है उसके संबंध में जानकारी देता चलता है। एक प्राप्त वस्तुओं के रूपों में भेद करता चलता है। एक हटाने योग्य को हटाकर शोधन करता चलता है। हे इंद्रदेव, आपने पहले ही इन सब कर्मों को संपन्न किया, इसलिए आप प्रशंसनीय है। प्रजाभ्य पुष्टिम विभजन्त आसते रईमिव पृष्ठम प्रभवन्त मायते असिन्वन्द्रष्टैः पितुरत्ति भोजनम यस्ता कृणोः प्रथमं सास्युक्त्यः। देवगण अभ्यागतों की तरह प्रजा के लिए ऐश्वर्य का पोषक अन्न प्रदान करते हैं। जिस प्रकार मनुष्य अपने दांतों से चबाकर भोजन करता है, उसी प्रकार आप प्रलय काल में समस्त जगत को ग्रहण कर लेते हैं। इन किए गए हितकारी कार्यों के लिए आप प्रशंसा के योग्य है। अधा कृणोः पृथ्वीम संदृशे दिवे यो धौती नाम हिहन्नारी

0: पुष्टिकारक बनाते हैं, उसी प्रकार स्तोत्रों के माध्यम से स्तुतियां करके साधक आपको बलशाली बनाते हैं। इस प्रकार आप प्रशंसा के योग्य हैं। यो भोजनम च दयसे च वर्धनमार्द्रादा शुष्कम मधुमद दुहोहित सह शेवधिम निदधिशे विवस्वति विश्वस्यैक ईशिसे सास्युक्त्यः। हे इंद्रदेव, आप प्राणियों को वृद्धि के साधन तथा भोजन प्रदान करते हैं। गीले पौधे में मधुर सूखे पदार्थ फल या अन्न को प्राप्त कराते हैं। ऐश्वर्य प्रदान करने वाले आप अकेले ही संपूर्ण विश्व के स्वामी हैं, अतः आप प्रशंसा के योग्य हैं। यह पुष्पिणीश्च प्रस्वश्च धर्मणाधिदाने व्यवनीर धारयः यश्चा समा अजनो दिद्युतो दिव उरुरुवार्वा अभितः सास्युक्त्यः। हे इंद्रदेव, आपने खेतों में फूल व फल वाली औषधियों को गुणवान बनाकर उनका संरक्षण किया है। आपने प्रकाशित सूर्य को नाना किरणें प्रदान की। आपकी महानता से ही सुदूर तक विस्तृत पर्वतों का प्रादुर्भाव हुआ। ऐसे महान आप प्रशंसा के योग्य हैं।
1: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आपने सुना ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के 13वें सूक्त से वाचन। प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम्ब त्रिपाठी।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अक्षय निधि। बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

नमस्कार, मैं हूं मधुश्री और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए। मैं सलाम करती हूं देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा में हमेशा तैनात रहते हैं, और साथ ही उन क्रांतिकारियों को भी जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर हमें आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण। मैं हूं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह। स्वागत करती हूं आप सभी सुनने वालों का भक्ति संगीत के इस कार्यक्रम में। श्रोताओं, समय अनवरत निर्बाध चलता रहता है। धरती सांस सांस गाती है नव सृजन का संकल्प, रचती है नया दिन, नई सुबह, नया जीवन। सुबह जैसे खुशी की सरगम है और शाम एक मध्यम सी मुस्कुराहट है जिंदगी की। सुबह एक शक्ति है जो सिखाती है जीने का मंत्र, दिखाती है कुछ नए रास्ते, और शाम जैसे पुनर्जीवन है, नए सिरे से नई राह पर जिंदगी की एक नई शुरुआत का चिंतन। शायद इसीलिए सुबह और शाम आराधना का विधान है। तो आइए हम और आप साथ साथ चलें आज की भजन यात्रा पर।

जो है जैसा है उसे वैसे ही स्वीकार कर लेना वंदना है। प्रयास और प्रयत्न से जो हो वो मन के पार नहीं ले जाएगी, क्योंकि सभी प्रयास मन का है। जिसे मन से कोशिश करके पाया वो मन के ऊपर हो ही नहीं सकता। इसीलिए ज्ञानियों ने कहा कि परमात्मा को प्रयत्न से पाने का कोई उपाय ही नहीं, उसे तो अप्रयास से ही पाया जा सकता है।

ज्ञानी जन कहते हैं, हम हवा पानी की तरह सहज हो जाएं, जो हो रहा है उसे होने दें, जो है उसे स्वीकार करें, सिर्फ होने का एक शांत ढंग पकड़ लें, होने का एक ढंग जिसमें प्रतीक्षा है, धैर्य है, होने का एक ढंग जो प्रार्थना पूर्ण है, यही ढंग सही मार्ग है, यही ढंग दरअसल आराधना है।

श्रोताओं, मन की सफलता जहां समाप्त हो जाती है, वहीं भक्ति आरंभ होती है, वहीं वंदना घटित होती है। जब तक मन सफल होता रहता है, माया जारी रहती है। मन का न होना ही मौन है, मन का न होना ही परमात्मा में खोना है, और इस खोने में ही उसे पाने की व्यवस्था है।

श्रोताओं, सुख दुख जीवन के अनिवार्य अंग हैं। या तो हमारे जीवन में सुख है या दुख है। जीवन में या तो कुछ है जो हम चाहते हैं या कुछ ऐसा है जो हम नहीं चाहते हैं। कुछ है जिसका हम पीछा करना चाहते हैं, कुछ है जिससे हम बचना चाहते हैं। ये चाहना, ये मन का होना ही संसार है और ईश्वर संसार के पार है। जहां न सुख है न दुख है, उसी को हमने आनंद कहा। और इस ज्ञान की प्राप्ति भी उस परम शक्ति की कृपा से ही संभव है।

जिसने भी सत्य को जाना वो ठहर गया, मौन हो गया, क्योंकि फिर बोलना मुश्किल था। और अगर किसी ने बोलने की कोशिश भी की तो वो इशारा मात्र था, इंगित करना था। वो मील का पत्थर था जिस पर तीर बना होता है, बस एक इशारा। उसे ही हम मंदिर समझकर बैठ गए तो फिर हमारा कहीं भी पहुंचना संभव नहीं है। उन इशारों को समझते हुए ये यात्रा स्वयं करनी होती है, उस अनुभव से बिना किसी पूर्वाग्रह के स्वयं गुजरना होता है। इस तरह भक्ति में हर यात्रा व्यक्तिगत होती है, हर अनुभव व्यक्तिगत होता है।

और श्रोताओं, इसके साथ ही संपन्न होती है आज की भजन यात्रा। और अब अनुमति दें अपनी दोस्त सुनीता सिंह को। सुनते रहें रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद पर। मैं हूँ कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। रेडियो आजाद हिंद के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
1: ये मेरा इंडिया।
0: देश के अमर शहीदों को मेरा नमन है, जिन्होंने आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। जय हिंद। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: श्रोताओं, रेडियो आजाद हिंद की ये प्रसारण सभा आप सुन रहे हैं सुनीता सिंह के साथ। हमारी अगली प्रस्तुति कार्यक्रम वतन का राग।

नमस्कार, वतन का राग कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भारत की सनातन संस्कृति बताती है कि भारत अध्यात्म की धरती है, साधना की धरती है। हमारे यहाँ पूजा की तीन मूल तकनीकें मानी गई हैं, तंत्र, मंत्र और यंत्र। इनमें से तंत्र भारतीय उपमहाद्वीप की एक वैविध्यपूर्ण एवं संपन्न आध्यात्मिक परिपाटी रही है। तंत्र एक विशिष्ट प्रक्रिया है जिसके माध्यम से साधक आत्मा और मन को बंधन मुक्त करता है, शरीर और मन की शुद्धि करता है, जिससे ईश्वर का अनुभव करने में सहायता प्राप्त होती है। शरीर के सात चक्रों और ईश्वरीय शक्ति के मध्य गहरा संबंध स्थापित होना ही तंत्र साधना है, जिसके लिए विविध क्रियाकलाप किए जाते हैं। इसका इतिहास बहुत पुराना है। भारतीय तंत्र साहित्य अत्यंत विशाल, प्राचीन और व्यापक है। वैदिक साहित्य से भी इसकी विशालता अधिक रही है। माना जाता है कि अद्वैत विज्ञान का जितना सूक्ष्म विश्लेषण और विवरण तंत्र ग्रंथों में है, वैसा किसी भी शास्त्र के ग्रंथों में नहीं है। आधुनिक दुनिया में तंत्र शास्त्र को पुनः स्थापित कर एक अलग पहचान दिलवाने वाले प्रकांड विद्वान, इंडोलॉजिस्ट और दार्शनिक थे पद्म विभूषण गोपीनाथ कविराज। उन्हें तंत्र पर अपने शोध ग्रंथ तांत्रिक वांग्मय में शाक्त दृष्टि के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। योग और तंत्र के प्रकांड विद्वान गोपीनाथ कविराज का जन्म 7 सितंबर 1887 को ढाका के पास धमराई गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम वैकुंठनाथ बागची था। उनकी आरंभिक शिक्षा धमराई और कंथालिया गांव में हुई। इसके बाद 7वीं कक्षा में उन्होंने केएल जुबली हाई स्कूल ढाका में प्रवेश लिया और 10वीं कक्षा तक यहीं पढ़ाई की। गोपीनाथ कविराज अत्यंत मेधावी छात्र थे। सन 1906 में वो उच्च शिक्षा के लिए जयपुर चले गए और 4 साल शिक्षा ग्रहण करते हुए महाराजा कॉलेज जयपुर से कला में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। यहां उन्होंने मधुसूदन ओझा जैसे अनेक विद्वानों के साथ अध्ययन किया। सन 1910 में वो देवनाथपुरा वाराणसी चले गए। उसके बाद सन 1914 में उन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। चूंकि बचपन में ही उनके पिताजी का निधन हो गया था, इसलिए उनका पालन पोषण उनके मामा ने किया और ढाका, कोलकाता, जयपुर, वाराणसी, प्रयागराज जैसे महत्वपूर्ण स्थानों में उनकी शिक्षा की व्यवस्था की। गोपीनाथ कविराज इतने होनहार छात्र थे कि हर जगह उन्हें छात्रवृत्ति मिलती रही। इस तरह मामा के सहयोग और अपनी योग्यता से उन्हें अच्छी शिक्षा प्राप्त हुई। उनकी शिक्षा का अंतिम चरण वाराणसी में आर्थर वेनिस के मार्गदर्शन में शुरू हुआ। वो क्वींस कॉलेज वाराणसी के प्राचार्य थे। गोपीनाथ कविराज की प्रतिभा से डॉक्टर वेनिस अत्यधिक प्रभावित थे। एमए में प्रथम आने के बाद गोपीनाथ कविराज को लाहौर और अजमेर में अध्यापक का कार्य मिल रहा था, लेकिन उनकी योग्यता से प्रभावित डॉक्टर वेनिस ने उन्हें वाराणसी में ही रोक लिया और कॉलेज के सरस्वती भवन पुस्तकालय का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। इस पुस्तकालय का जो समृद्ध स्वरूप आज दिखाई देता है, उसके पीछे गोपीनाथ कविराज की अथक मेहनत है।

क्वींस कॉलेज वाराणसी में स्थित एक राजकीय इंटर कॉलेज है जिसकी स्थापना अंग्रेजी शासन काल में हुई थी। पहले ये संस्कृत क्वींस कॉलेज के नाम से जाना जाता था। वर्तमान संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय क्वींस संस्कृत कॉलेज का प्रवर्धित रूप है, जो इससे अलग एक मानद विश्वविद्यालय है। प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद जैसे साहित्य मनीषी यहीं से शिक्षित हुए थे। ऐसे प्रतिष्ठित संस्थान के पुस्तकालय में गोपीनाथ कविराज ने अध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं दी और सरस्वती भवन पुस्तकालय की काया पलट कर दी। वो वाराणसी की ही धरती थी जिसने प्राचीन तांत्रिक दर्शन के विभिन्न पहलुओं से उन्हें अवगत कराया। सन 1918 में काशी में ही उनकी भेंट विशुद्धानंद परमहंस जी से हुई। विशुद्धानंद परमहंस एक योगी, ज्ञानी, भक्त, परम पथ के प्रदर्शक, सत्य संकल्प महात्मा थे। उन्होंने योग तथा विज्ञान दोनों ही विषयों की परम स्थिति को प्राप्त कर लिया था। ये भेंट जैसे गोपीनाथ जी के प्रारब्ध के निर्माण में जुट गई। विशुद्धानंद परमहंस ने गोपीनाथ कविराज को तंत्र, योग तथा विज्ञान के प्राचीन ज्ञान से परिचित कराकर उनका मार्गदर्शन किया। विशुद्धानंद परमहंस मूल रूप से बंगाल के थे और वाराणसी में ही उन्होंने अपनी आध्यात्मिक चिंतन धारा का प्रतिपादन किया था, जिसे बाद में गोपीनाथ कविराज ने विस्तार दिया। 21 जनवरी सन 1918 को योगीराज विशुद्धानंद परमहंस देव ने मलदहिया स्थित विशुद्धानंद कानन में गोपीनाथ जी को दीक्षित किया था। गोपीनाथ कविराज ने गुरु के मार्गदर्शन में साधना तो की ही, इसके साथ ही उनकी आध्यात्मिक चिंतन धारा को विस्तार देकर सात समंदर पार तक पहुंचा दिया। उन्होंने योग क्रिया पर आधारित कई पुस्तकें लिखीं, जिनमें से अधिकांश आज भी सरस्वती भवन में संग्रहित हैं। तंत्र साधना की शाक्त परंपरा पर उन्होंने बहुत गहन चिंतन और शोध किया, जो अत्यंत चर्चित रहा।

गोपीनाथ कविराज डॉक्टर वेनिस के बाद सन 1924 में संस्कृत महाविद्यालय के प्राचार्य नियुक्त हुए। 14 वर्षों तक वो इस पद पर बने रहे और पूरी निष्ठा के साथ इस संस्था को अपनी सेवाएं दीं। सरस्वती भवन की ओर से संस्कृत भवन ग्रंथमाला का प्रकाशन भी किया जाता था, जिसे पहले संस्कृत भवन ग्रंथ के नाम से जाना जाता था। ये संस्कृत विद्वानों के ग्रंथों के संस्करणों की एक श्रृंखला थी। गोपीनाथ कविराज इसके संपादक भी रहे। गोपीनाथ कविराज केवल तंत्र शास्त्र के ही ज्ञाता नहीं थे, बल्कि वो वेद, वेदांग, न्याय दर्शन, योग, सांख्य योग, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, दर्शन सहित तमाम शास्त्रों के ज्ञाता थे। उन्हें चलता फिरता विश्वकोश माना जाता था। भारतीय शास्त्र ही नहीं, सूफीवाद और ईसाई रहस्यवाद का भी उन्हें गहन ज्ञान था। दुनिया भर के शास्त्र जैसे उन्हें कंठस्थ थे। यही कारण है कि देश के साथ साथ विदेशों से भी तमाम विद्वान उनसे शिक्षा ग्रहण करने विश्वविद्यालय आया करते थे। भारतीय शास्त्रों के साथ साथ कुरान और बाइबल पर भी उनकी पकड़ समान रूप से थी। उनके समकालीन विद्वत जन एक स्वर में कहा करते थे कि सागर की थाह लगाई जा सकती है, लेकिन उनके ज्ञान सागर की थाह नहीं लगाई जा सकती। गोपीनाथ कविराज द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ हैं भारतीय संस्कृति और साधना, तांत्रिक साधना और सिद्धांत, साधु दर्शन एवं सत्प्रसंग, तांत्रिक वांग्मय में शाक्त दृष्टि, श्री कृष्ण प्रसंग, काशी की सारस्वत साधना, विशुद्धानंद प्रसंग, त्रिपुरा रहस्य आदि। सन 1937 में गुरु विशुद्धानंद परमहंस की मृत्यु के पश्चात उन्होंने महाविद्यालय के प्राचार्य पद से सेवानिवृत्ति ले ली और आने वाले वर्षों में उन्होंने तंत्र में अपनी साधना और विद्वत्तापूर्ण अनुसंधान दोनों को आगे बढ़ाया। वाराणसी में अपने गुरु के आश्रम की देखभाल में भी वो संलग्न रहते थे। काशी से उनका लगाव अद्भुत था। एक दो विशिष्ट अवसरों के अलावा उन्होंने इस पावन भूमि को कभी नहीं छोड़ा। इस नगरी की सुबह और शाम जैसे उन्हें एक अदृश्य आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देती थीं। साधना के साथ साथ अध्ययन और शोध सदा ही उनके जीवन से जुड़ा रहा। अपने बाद के वर्षों में उन्होंने सुप्रसिद्ध वैदिक विद्वान तथा दार्शनिक श्री अनिर्वाण के साथ स्वयं को कश्मीर की शैव परंपरा के अध्ययन हेतु समर्पित कर दिया। अपने बाद के वर्षों में वो मां आनंदमयी के सानिध्य में भी रहे। उनकी विद्वत्ता सर्वत्र मान्य थी, जिसके सम्मान में उन्हें महामहोपाध्याय की उपाधि से विभूषित किया गया था। प्रयाग, बनारस और कलकत्ता विश्वविद्यालय ने उन्हें डीलिट की उपाधि से सम्मानित किया था। साहित्य अकादमी पुरस्कार के साथ ही सन 1971 में उन्हें साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया और भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण सम्मान से अलंकृत किया। 12 जून सन 1976 को वाराणसी में ही उन्होंने अंतिम सांस ली। नमन ऐसी महान विभूति को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, संस्कृति विभाग, मध्य प्रदेश की।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। हमारी फ्रिक्वेंसी 90.8 मेगाहर्ट्ज़।

आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8, देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। हम सलाम करते हैं उन देश के जवानों को जो सरहदों पर दिन रात तैनात होकर हमारी और हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, और हम उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को नमन करना चाहते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर हमें ये आज़ादी दिलाई। रेडियो आज़ाद हिंद देश का पहला और एकमात्र ऐसा रेडियो चैनल है जो वीर जवानों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की अमर गाथाओं को समर्पित है। तो सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। नमस्कार।

श्रोताओं, रेडियो आजाद हिंद की इस प्रसारण सभा में आज आपकी हम सफर हूँ मैं सुनीता सिंह। हमारे कार्यक्रमों का सिलसिला जारी है, बस एक छोटे से अंतराल के बाद प्रस्तुत करेंगे कार्यक्रम सुनो कहानी। इंतजार कीजिएगा बस कुछ पलों का।

0: नमस्कार, मैं हूं चंदन दास, गज़ल गायक। 90.8 मेगा हॉर्स पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: सुनो कहानी, कहानी जो बचपन में नानी दादी सुनाया करती थीं, कहानी जो हमें स्वप्न लोक और काल्पनिक लोक में ले जाया करती हैं, कहानी जिनको सुनते सुनते हम बड़े हो गए, कहानी जो मन को छू लेती हैं, दिल में उतर जाती हैं, जीवन के अनछुए मार्मिक और ज्ञानवर्धक पहलुओं पर प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम सुनो कहानी।

नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आज़ाद हिंद। मैं हूं आपका रेडियो मित्र संदीप शर्मा और आज मैं आपको सुना रहा हूं मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी सेवा मार्ग।

तारा ने 12 वर्ष तक दुर्गा की तपस्या की, न पलंग पर सोई, न केशों को सवारा और न नेत्रों में सुरमा लगाया। पृथ्वी पर सोती, गेरुआ वस्त्र पहनती और रूखी रोटियां खाती। उसका मुख मुरझाई कली की भांति था, नेत्र ज्योतिहीन और हृदय एक शून्य बीहड़ मैदान। उसे केवल यही लौ लगी थी कि दुर्गा के दर्शन पाऊं। शरीर मोमबत्ती की तरह घुलता था, पर यह लौ दिल से न जाती थी। यही उसकी इच्छा थी, यही उसका जीवन उद्देश्य। घर के लोग उसे पागल कहते। माता समझाती, बेटी तुझे हो क्या गया है? क्या तू सारा जीवन रो रो कर काटेगी? इस समय के देवता पत्थर के होते हैं, पत्थर को भी कभी किसी ने पिघलते देखा है? देख, तेरी सखियां पुष्प की भांति विकसित हो रही हैं, नदी की तरह बढ़ रही हैं, क्या तुझे मुझ पर दया नहीं आती? तारा कहती, माता अब तो जो लगन लगी तो वो लगी, या तो देवी के दर्शन पाऊंगी या यही इच्छा लिए हुए संसार से पायन कर जाऊंगी। तुम समझो मैं मर गई। इस तरह पूरे 12 वर्ष व्यतीत हो गए और तब देवी प्रसन्न हुई। रात्रि का समय था, चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। मंदिर में एक धुंधला सा घी का दीपक जल रहा था। तारा दुर्गा के पैरों पर माथा नवाए सच्ची भक्ति का परिचय दे रही थी। यकायक उस पाषाण मूर्ति देवी के तन में स्फूर्ति प्रकट हुई। तारा के रोंगटे खड़े हो गए। ये धुंधला दीपक दीप्यमान हो गया। मंदिर में चित्ताकर्षक सुगंध फैल गई और वायु में सजीवता प्रतीत होने लगी। देवी का उज्जवल रूप पूर्ण चंद्रमा की भांति चमकने लगा। ज्योतिहीन नेत्र जगमगा उठे, होंठ खुल गए, आवाज आई, तारा मैं तुमसे प्रसन्न हूं, मांग। क्या वर मांगती है? तारा खड़ी हो गई। उसका शरीर इस भांति कांप रहा था जैसे प्रातः काल के समय कंपित स्वर में किसी कृषक के गाने की ध्वनि। उसे मालूम हो रहा था मानो वो वायु में उड़ी जा रही है। उसे अपने हृदय में उच्च विचार पूर्ण प्रकाश का आभास हो रहा था। उसने दोनों हाथ जोड़कर भक्ति भाव से कहा, भगवती तुमने मेरी 12 वर्ष की तपस्या पूरी की, किस मुख से तुम्हारा गुणानुवाद गाऊं? मुझे संसार की वे अलभ्य वस्तुएं प्रदान हों जो इच्छाओं की सीमा और मेरी अभिलाषाओं का अंत है। मैं वो ऐश्वर्य चाहती हूं जो सूर्य को भी मात दे। देवी ने मुस्कुराकर कहा, स्वीकृत है। तारा बोली, वो धन जो काल चक्र को भी लज्जित करे। देवी ने मुस्कुराकर कहा, स्वीकृत है। वो सौंदर्य जो अद्वितीय हो। देवी ने मुस्कुराकर कहा, यह भी स्वीकृत है। तारा कुंवरी ने शेष रात्रि जागकर व्यतीत की। प्रभात काल के समय उसकी आंखें क्षण भर के लिए झपक गईं। जागी तो देखा कि मैं सिर से पांव तक हीरे और जवाहरात से लदी हूं। उसके विशाल भवन के कलश आकाश से बातें कर रहे थे। सारा भवन संगमरमर से बना हुआ, अमूल्य पत्थरों से जड़ा हुआ। द्वार पर नौबत बज रही थी, उसके आनंददायक सुहावने शब्द आकाश में गूंज रहे थे। द्वार पर मीनों तक हरियाली छाई थी। दासियां स्वर्णाभूषणों से लदी हुई सुनहरे कपड़े पहने हुए चारों ओर दौड़ती थी। तारा को देखते ही वो स्वर्ण के लोटे और कटोरे लेकर दौड़ी। तारा ने देखा, मेरा पलंग हाथी दांत का है। भूमि पर बड़े कोमल बिछौने बिछे हुए हैं। सिरहाने की ओर एक सुंदर ऊंचा शीशा रखा है। तारा ने उसमें अपना रूप देखा और चकित रह गई। उसका सुंदर रूप चंद्रमा को भी लज्जित करता था। दीवार पर अनेकानेक सुप्रसिद्ध चित्रकारों के मनमोहक चित्र टंगे थे, पर ये सब के सब तारा की सुंदरता के आगे तुच्छ थे। तारा को अपनी सुंदरता का गर्व हुआ। वो कई दासियों को लेकर वाटिका में गई। वहां की छटा देखकर वो मुग्ध हो गई। वायु में गुलाब और केसर घुले हुए थे। रंग बिरंग के पुष्प वायु के मंद मंद झोंके से मतवालों की तरह झुक रहे थे। तारा ने गुलाब का फूल तोड़ लिया और उसके रंग और कोमलता की अपने अधर पल्लव से समानता करने लगी। गुलाब में वो कोमलता न थी। वाटिका के मध्य में एक बिल्लौर जटित हौज था। इसमें हंस और बतख किलोने मार रहे थे। यकायक तारा को ध्यान आया कि मेरे घर के लोग कहाँ हैं। दासियों से पूछा, उन्होंने कहा, श्रीमती वे लोग पुराने घर में हैं। तारा ने अपनी अटारी पर जाकर देखा। उसे अपना पहला घर एक साधारण झोंपड़े की तरह दृष्टिगोचर हुआ। उसकी बहनें उसकी साधारण दासियों के समान भी न थीं। मां को देखा, वो आंगन में बैठी चरखा कात रही थी। तारा सोचा करती थी कि जब मेरे दिन चमकेंगे तब मैं इन लोगों को भी अपने साथ रखूंगी और उनकी भली भांति सेवा करूंगी।
पर इस समय धन के गर्व ने उसकी पवित्र हार्दिक इच्छा को निर्बल बना दिया। उसने घर वालों को स्नेह रहित दृष्टि से देखा और तब उस मनोहर गान को सुनने चली गई जिसकी प्रतिध्वनि उसके कानों में आ रही थी। एक बारगी जोर से धड़ाका हुआ, बिजली चमकी और बिजली की छटाओं में से एक ज्योति स्वरूप नवयुवक निकलकर तारा के सामने नम्रता से खड़ा हो गया। तारा ने पूछा, तुम कौन हो? नवयुवक ने कहा, श्रीमती मुझे विद्युत सिंह कहते हैं, मैं श्रीमती का आज्ञाकारी सेवक हूं। उसके विदा होते ही वायु के उष्ण झोंके चलने लगे, आकाश में एक प्रकाश दृष्टिगोचर हुआ। वो क्षण मात्र में उतरकर तारा कुंवरी के समीप ठहर गया। उसमें से एक ज्वालामुखी मनुष्य ने निकलकर तारा के पदों को चूमा। तारा ने पूछा, तुम कौन हो? उत्तर मिला, श्रीमती मेरा नाम अग्नि सिंह है, मैं श्रीमती का आज्ञाकारी सेवक हूं। वो भी जाने भी ना पाया था कि एक बारगी सारा महल ज्योति से प्रकाशमान हो गया। जान पड़ता था सैकड़ों बिजलियां मिलकर चमक रही हैं, वायु सेवक हो गई। एक जगमगाता हुआ सिंहासन आकाश पर दिख पड़ा। वो शीघ्रता से पृथ्वी की ओर चला और तारा कुंवरी के पास जाकर ठहर गया। उससे एक प्रकाशमय रूप का बालक, जिसके रूप से गंभीरता प्रकट होती थी, निकलकर तारा के सामने शिष्ट भाव से खड़ा हो गया। तारा ने पूछा, तुम कौन हो? बालक ने उत्तर दिया, श्रीमती मुझे मिस्टर रेडियम कहते हैं, मैं श्रीमती का आज्ञा पालक हूं। धनी लोग तारा के भय से थर्राने लगे। उसके आश्चर्यजनक सौंदर्य ने संसार को चकित कर दिया। बड़े बड़े महीपति उसकी चौखट पर माथा रगड़ने लगे। जिसकी ओर उसकी कृपा दृष्टि हो जाती, वो अपना अहोभाग्य समझता, सदैव के लिए उसके बेदाम का गुलाम बन जाता। एक दिन तारा अपनी आनंद वाटिका में टहल रही थी, अचानक किसी के गाने का मनोहर शब्द सुनाई दिया। तारा विक्षिप्त हो गई। उसके दरबार में संसार के अच्छे अच्छे गवैये मौजूद थे, पर वो चित्ताकर्षकता जो इन सुरों में थी कभी अवगत न हुई थी। तारा ने गायक को बुला भेजा। एक क्षण के अनंतर वाटिका में एक साधु आया, सिर पर जटाएं, शरीर में भस्म रमाए। उसके पास ही एक टूटी हुई बीन थी, उसी से वो प्रभावशाली स्वर निकालता जो हृदय के अनुरक्त स्वरों से कहीं प्रिय था। साधु आकर हौज के किनारे बैठ गया। उसने तारा के सामने शिष्ट भाव नहीं दिखाया, आश्चर्य से इधर उधर दृष्टि नहीं डाली। उस रमणीय स्थान पर वो अपना सुर अलापने लगा। तारा का चित्त विचलित हो उठा, दिल में अपार अनुराग का संचार हुआ। मदमत्त होकर टहलने लगी। साधु के सुमनोहर मधुर आलाप से पक्षी मग्न हो गए। पानी में लहरें उठने लगीं, वृक्ष झूमने लगे। तारा ने उन चित्ताकर्षक सुरों से एक चित्र खींचते हुए देखा। धीरे धीरे चित्र प्रकट होने लगा, उसमें स्फूर्ति आई और तब वो खड़ी होकर नृत्य करने लगी। तारा चौंक पड़ी। उसने देखा कि ये मेरा ही चित्र है, नहीं मैं ही हूं, मैं ही बीन की तान पर नृत्य कर रही हूं। उसे आश्चर्य हुआ कि मैं संसार की अलभ्य वस्तुओं की रानी हूं, अथवा एक स्वर चित्र। वो सिर धुनने लगी और मतवाली होकर साधु के पैरों से जा लगी। उसकी दृष्टि में एक आश्चर्यजनक परिवर्तन हो गया। सामने के फले फूले वृक्ष, तरंगे मारता हुआ हौज और मनोहर कुंज सब लोप हो गए। केवल वही साधु बैठा बीन बजा रहा था और वो स्वयं उसकी तालों पर थिरक रही थी। वो साधु अप्रकाशमय तारा और अलौकिक सौंदर्य की मूर्ति बन गया। जब मधुर आलाप बंद हुआ, तब तारा होश में आई। उसका चित्त हाथ से जा चुका था, वो उस विलक्षण साधु के हाथों बिक चुकी थी। तारा बोली, स्वामी जी, ये महल, ये सुख, ये सौंदर्य सब आपके चरण कमल पर निछावर है। इस अंधेरे महल को अपने कोमल चरणों से प्रकाशमान कीजिए। साधुओं को महल और धन का क्या काम? नहीं नहीं, मैं इस घर में नहीं ठहर सकता। महाराज, संसार के सारे सुख आपके लिए उपस्थित हैं, लेकिन मुझे सुखों की कामना नहीं। मैं आजीवन आपकी दासी रहूंगी। ये कहकर तारा ने आईने में अपनी अलौकिक सौंदर्य की छटा देखी और उसके नेत्रों में चंचलता आ गई। नहीं तारा कुंवरी, मैं इस योग्य नहीं हूं। यह कहकर साधु ने बीन उठाई और द्वार की ओर चला। तारा का गर्व टूक टूक हो गया, लज्जा से सिर झुक गया। वो मूर्छित होकर भूमि पर गिर गई। मन में सोचा, मैं धन में, ऐश्वर्य में, सौंदर्य में जो अपनी समता नहीं रखती, वो एक साधु की दृष्टि में इतनी तुच्छ। तारा को अब किसी प्रकार चैन नहीं था। उसे अपना भवन ऐश्वर्य भयानक मालूम होने लगा।
बस साधु का एक चंद्र स्वरूप उसकी आंखों में नाच रहा था और उसका स्वर्गीय गान कानों में गूंज रहा था। उसने अपने गुप्तचरों को बुलाया और साधु का पता लगाने की आज्ञा दी। बहुत छानबीन करने के पश्चात उसकी कुटी का पता लगा। तारा नित्य प्रति वायुयान पर बैठकर साधु के पास जाती, कभी उस पर लाल जवाहर लुटाती, कभी रत्न और आभूषण की छटा दिखाती। पर साधु इससे तनिक भी विचलित ना हुआ, तारा के माया जाल का उस पर कोई असर ना हुआ। तब तारा कुंवरी फिर दुर्गा के मंदिर में गई और देवी के चरणों पर सिर रखकर बोली, माता तुमने मुझे संसार के सारे दुर्लभ पदार्थ प्रदान किए। मैंने समझा था कि ऐश्वर्य में संसार को दास बना लेने की शक्ति है, पर अब मुझे ज्ञान हुआ है कि प्रेम पर ऐश्वर्य सौंदर्य और वैभव का कुछ भी अधिकार नहीं। अब एक बार मुझ पर फिर से वही कृपा दृष्टि हो, कुछ ऐसा कीजिए कि जिस निष्ठुर के प्रेम में मैं मरी जा रही हूं उसे भी मुझे देखे बिना चैन ना आवे, उसकी आंखों में भी नींद हराम हो जाए, वो भी मेरे प्रेम मद में चूर हो जाए। देवी के होंठ खुले, वो मुस्कुराई, उसके अधर पल्लव विकसित हुए, आवाज सुनाई दी, तारा मैं संसार के सारे पदार्थ प्रदान कर सकती हूं, पर स्वर्ग सुख मेरी शक्ति से बाहर है। प्रेम स्वर्ग सुख का मूल है, लेकिन माता संसार के सारे ऐश्वर्य मुझे जंजाल जान पड़ते हैं, बताइए मैं अपने प्रीतम को कैसे पाऊंगी। उसका एक ही मार्ग है, पर वो है बहुत कठिन, भला तुम उस पर चल सकोगी? वो कितना ही कठिन हो मैं उस मार्ग का अवलंबन अवश्य करूंगी। तो सुनो, वो सेवा मार्ग है, सेवा करो, प्रेम सेवा से ही मिल सकता है। तारा ने अपने बहुमूल्य आभूषणों और रंगीन वस्त्रों को उतार दिया, दासियों से विदा हुई, राजभवन को त्याग दिया, अकेले नंगे पैर साधु की कुटी में चली आई और सेवा मार्ग का अवलंबन किया। वो कुछ रात रही उठती, कुटी में झाड़ू देती, साधु के लिए गंगा से जल लाती, जंगलों से पुष्प चुनती, साधु नींद में होते तो वो उन्हें पंखा झलती, जंगली फूल तोड़ लाती और केले के पत्तल बनाकर साधु के सम्मुख रखती। साधु नदी में स्नान करने जाया करते थे, तारा रास्ते के कंकड़ चुनती, उसने कुटी के चारों ओर पुष्प लगाए, गंगा से पानी लाकर उन्हें सींचती, उन्हें हरा भरा देखकर प्रसन्न होती। उसने मदार की रुई बटोरी, साधु के लिए नर्म गद्दे तैयार किए। अब कोई और कामना न थी, सेवा स्वयं अपना पुरस्कार और फल थी। तारा को कई कई दिन उपवास करना पड़ता था, हाथों में गड्ढे पड़ गए, पैर कांटों से छलनी हो गए, धूप से कोमल गात मुरझा गया, पर उसके हृदय में अब स्वार्थ और गर्व का शासन न था, अब वहां प्रेम का राज था। वहां अब उसे सेवा की लगन थी, जिससे कलुषता की जगह आनंद का स्रोत बहता है और कांटे पुष्प बन जाते हैं, जहां अश्रुधारा की जगह नेत्रों से अमृत जल की वर्षा होती और दुख विलाप की जगह आनंद के राग निकलते हैं, जहां के पत्थर रुई से ज्यादा कोमल हैं और शीतल वायु से भी मनोहर। तारा भूल गई कि मैं सौंदर्य में अद्वितीय हूं, धन विलासिनी तारा अब केवल प्रेम की दासी थी। साधु को वन के खगों और मृगों से प्रेम था, वे कुटी के पास एकत्रित हो जाते, तारा उन्हें पानी पिलाती, दाने चुगाती, गोद में लेकर उनको दुलार करती। विषधर सांप और भयानक जंतु उसके प्रेम के प्रभाव से उसके सेवक हो गए। बहुधा रोगी मनुष्य साधु के पास आशीर्वाद लेने आते थे, तारा रोगियों की सेवा करती, जंगल से जड़ी बूटियां ढूंढ लाती, उनके लिए औषधि बनाती, उनके घाव धोती, घावों पर मरहम रखती, रात भर बैठी उन्हें पंखा झलती। साधु के आशीर्वाद को उसकी सेवा प्रभाव युक्त बना देती थी। इस प्रकार कितने ही वर्ष बीत गए। गर्मी के दिन थे, पृथ्वी तवे की तरह जल रही थी, हरे भरे वृक्ष सूख जाते थे, गंगा गर्मी से सिमट गई थी। तारा को पानी लेने के लिए बहुत दूर रेत में चलना पड़ता था, उसका कोमल अंग चूर चूर हो जाता, जलती हुई रेत में तलवे भुन जाते। इसी दशा में एक दिन वो हताश होकर एक वृक्ष के नीचे क्षण भर दम लेने के लिए बैठ गई, उसके नेत्र बंद हो गए। उसने देखा, देवी मेरे सम्मुख खड़ी कृपा दृष्टि से मुझे देख रही हैं। तारा ने दौड़कर उनके पदों को चूमा। देवी ने पूछा, तारा तेरी अभिलाषा पूरी हुई? हां माता, मेरी अभिलाषा पूरी हुई। तुझे प्रेम मिल गया? नहीं माता, मुझे उससे भी उत्तम पदार्थ मिल गया। मुझे प्रेम के हीरे के बदले सेवा का पारस मिल गया। मुझे ज्ञान हुआ कि
कि प्रेम सेवा का चाकर है। सेवा के सामने सिर झुकाकर अब मैं प्रेम भिक्षा नहीं चाहती। अब मुझे किसी दूसरे सुख की अभिलाषा नहीं। सेवा ने मुझे प्रेम आदर सुख सबसे निवृत्त कर दिया। देवी इस बार मुस्कुराई नहीं, उसने तारा को हृदय से लगाया और दृष्टि से ओझल हो गई। संध्या का समय था, आकाश में तारे ऐसे चमकते थे जैसे कमल पर पानी की बूंदे। वायु में चित्ताकर्षक शीतलता आ गई थी। तारा एक वृक्ष के नीचे खड़ी चिड़ियों को दाना चुगा रही थी कि यकायक साधु ने आकर उसके चरणों पर सिर झुकाया और बोला, तारा तुमने मुझे जीत लिया। तुम्हारा ऐश्वर्य धन और सौंदर्य जो कुछ ना कर सका वो तुम्हारी सेवा ने कर दिखाया। तुमने मुझे अपने प्रेम में आसक्त कर लिया। अब मैं तुम्हारा दास हूं, बोलो तुम मुझसे क्या चाहती हो। तुम्हारे संकेत पर अब मैं अपना योग और वैराग्य सब कुछ निछावर कर देने के लिए प्रस्तुत हूं। तारा ने कहा, स्वामी जी मुझे अब कोई इच्छा नहीं, मैं केवल सेवा की आज्ञा चाहती हूं। लेकिन मैं दिखा दूंगा कि योग साधकर भी मनुष्य के हृदय निर्जीव नहीं होता। मैं भंवरे के सदृश तुम्हारे सौंदर्य पर मंडराऊंगा, पपीहे की तरह तुम्हारे प्रेम की रट लगाऊंगा। हम दोनों प्रेम की नौका पर ऐश्वर्य और वैभव नदी की सैर करेंगे, प्रेम कुंजों में बैठकर प्रेम चर्चा करेंगे और आनंद के मनोहर राग गाएंगे। तारा ने कहा, स्वामी जी सेवा मार्ग पर चलकर मैं अब अभिलाषाओं से पूरी हो गई। अब हृदय में और कोई इच्छा शेष नहीं। साधु ने इन शब्दों को सुना, तारा के चरणों पर माथा नवाया और गंगा की ओर चल दिया।

0: तो दोस्तों, ये था आज का कार्यक्रम सुनो कहानी। हम फिर हाजिर होंगे किसी नए लेखक की नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: रेडियो आजाद हिंद से अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुनो कहानी। हमारी इस प्रसारण सभा में आगे बहुत कुछ है खास आपके लिए। बने रहिए हमारे साथ 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुनते रहिए देश का चैनल देश के लिए।

0: नमस्कार, मैं हूं रूप कुमार राठौड। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। जय हिंद।
1: आइए सुनते हैं अपने वतन को समर्पित ये स्वर।

0: ये है रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज और आप ध्रुव संगारी बिलाल चिश्ती को इस पे सुन रहे हैं। रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज, देश का चैनल देश के लिए।
1: इस वक्त आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ, सुन रहे हैं देश का चैनल देश के लिए। हमारी फ्रिक्वेंसी 90.8 मेगाहर्ट्ज। श्रोताओं, कुछ ही पलों में हम लेकर उपस्थित होंगे कार्यक्रम कला कल्लोलिनी। इंतजार कीजिए बस कुछ पलों का।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार श्रोताओं, 90.8 पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है कार्यक्रम कला कल्लोलनी।

0: कला कल्लोलनी। आज के इस कार्यक्रम में हम आपसे बात करने वाले हैं पंडित विष्णु नारायण भातखंडे के बारे में, जिन्होंने संगीत को स्वर से, शास्त्र और परंपरा से पाठशाला तक पहुंचाया। आप सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं। नमस्कार, मैं हूं वर्षा सिंह।
1: और मैं रत्नेश सोनी।
0: हमारे खास कार्यक्रम कला कल्लोलनी में, जहां हम आपको भारतीय कला और संस्कृति की उन विलक्षण विभूतियों से रूबरू कराते हैं, जिनकी साधना ने हमारी विरासत को समृद्ध किया।
1: आज का ये सफर हमें लेकर चलेगा भारतीय शास्त्रीय संगीत की उस दुनिया में, जहां स्वर केवल सुनाई नहीं देते, बल्कि परंपरा, साधना और ज्ञान की एक पूरी कहानी कहते हैं।
0: और आज हम आपको परिचित करवाएंगे संगीत की एक ऐसी विलक्षण विभूति से, जिनकी वजह से भारतीय शास्त्रीय संगीत की अनेक परंपराएं केवल मंचों तक सीमित नहीं रही, बल्कि शास्त्र, स्वर लिपि और व्यवस्थित शिक्षा के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रही।
1: एक ऐसे संगीत मनीषी जिन्होंने संगीत को केवल सुना नहीं, उसे समझा, खोजा, लिखा और व्यवस्थित किया। आज की हमारी कहानी है पंडित विष्णु नारायण भातखंडे की, उस महान संगीत शास्त्री की, जिन्होंने भारतीय संगीत की विशाल और विविध परंपरा को एक व्यवस्थित स्वरूप देने में अपना जीवन समर्पित कर दिया।
0: तो आइए संगीत की इसी ज्ञान यात्रा पर हमारे साथ चलिए और जानिए उस साधक की कहानी, जिसने स्वरों को केवल आवाज नहीं रहने दिया, बल्कि उन्हें शास्त्र और आने वाली पीढ़ियों की धरोहर बना दिया।

0: आज हम किसी राग का नाम लेते हैं, उसके आरोह अवरोह की बात करते हैं, किसी बंदिश को स्वर लिपि में देखते हैं, किसी संगीत विद्यालय में व्यवस्थित पाठ्यक्रम के माध्यम से संगीत सीखते हैं, या 10 थाटों के आधार पर रागों की दुनिया को समझने का प्रयास करते हैं, तो इन सब के पीछे हमें एक ऐसे व्यक्ति की अथक साधना दिखाई देती है जिसने अपना जीवन संगीत को समझने, खोजने, लिखने, व्यवस्थित करने और आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित करने में लगा दिया।
1: पंडित विष्णु नारायण भातखंडे का जन्म 10 अगस्त 1860 को बंबई के वालकेश्वर में हुआ था। उनका परिवार शिक्षित और संस्कारवान था। उनके पिता स्वयं संगीत के प्रति अनुराग रखते थे और अपने बच्चों को संगीत सीखने के लिए प्रोत्साहित करते थे। बचपन में संगीत उनके जीवन में आया, लेकिन ये उस समय उनका पेशा नहीं था।
0: उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की, कानून की पढ़ाई की और वकालत के क्षेत्र में भी गए। उनके सामने एक सम्मानजनक और सुरक्षित पेशेवर जीवन था, लेकिन मन का रास्ता अक्सर जीवन की तय राह से अलग होता है। भातखंडे जी के भीतर संगीत के लिए जो जिज्ञासा थी, वह धीरे धीरे इतनी गहरी होती गई कि कानून उनके जीवन का केंद्र नहीं रह गया।
1: सन 1884 में वे गायन उत्तेजक मंडली से जुड़े। ये जुड़ाव उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। यहाँ उन्होंने केवल संगीत सुना नहीं, बल्कि संगीत की शिक्षा, प्रस्तुति और विभिन्न परंपराओं को निकट से समझा। उन्होंने ध्रुपद और खयाल जैसी परंपराओं की बंदिशें सीखी और अलग अलग संगीतज्ञों के संपर्क में आए। यहीं से उनके भीतर एक बड़ा प्रश्न आकार लेने लगा, आखिर भारतीय शास्त्रीय संगीत का इतना विशाल संसार व्यवस्थित रूप में लिखा क्यों नहीं गया? राग इतने हैं, घराने इतने हैं, बंदिशें इतनी हैं, गायकी की इतनी शैलियां हैं, तालों की इतनी विविधता है, लेकिन इन सब का व्यवस्थित दस्तावेज कहाँ है?
0: संगीत का अधिकांश ज्ञान गुरु से शिष्य तक मौखिक रूप में पहुंचता था। गुरु गाते थे, शिष्य सुनता था। गुरु बजाते थे, शिष्य दोहराता था। गुरु सिखाते थे, शिष्य स्मृति में उसे संजोता था। यह परंपरा अपने आप में अत्यंत समृद्ध थी। उसमें केवल स्वर नहीं, बल्कि अनुभव, भाव, उच्चारण, नींद, गमक, लय और प्रस्तुति की सूक्ष्मता भी पीढ़ी दर पीढ़ी जाती थी। लेकिन इसकी एक सीमा भी थी। यदि किसी बंदिश को जानने वाला अंतिम व्यक्ति उसे आगे ना पहुंचा पाए, तो वह रचना उसके साथ ही समाप्त हो सकती थी। यदि किसी घराने की कोई विशिष्ट परंपरा अगली पीढ़ी तक ना पहुंच पाए, तो उसके साथ संगीत का एक पूरा अंश खो सकता था।
1: भातखंडे ने इसी खतरे को बहुत पहले पहचान लिया था। उन्होंने तय किया कि भारतीय संगीत को केवल सुना और याद नहीं किया जाना चाहिए, उसे लिखा भी जाना चाहिए। और यही विचार आगे चलकर भारतीय संगीत के इतिहास में एक बड़े परिवर्तन का कारण बना। भातखंडे जी ने भारत की यात्रा की। वे अलग अलग क्षेत्रों में गए, संगीतज्ञों से मिले, घरानों के कलाकारों से मिले, गायकों और वादकों से बंदिशें सुनी, संगीत के पुराने ग्रंथों का अध्ययन किया। उन्होंने केवल एक परंपरा को अंतिम सत्य मानकर काम नहीं किया, वे सुनते थे, प्रश्न करते थे, तुलना करते थे और फिर निष्कर्ष तक पहुंचते थे। उनकी यात्राएं वास्तव में भारत की संगीत यात्राएं थी।
0: वैसे समय में यह काम कर रहे थे जब न रिकॉर्डिंग की आधुनिक सुविधा थी और न आज की तरह किसी रचना को तुरंत ऑडियो या वीडियो में सुरक्षित कर लेने की तकनीक। किसी कलाकार से कोई बंदिश सुनना और उसे उसी समय ध्यानपूर्वक लिख लेना, यह अपने आप में असाधारण धैर्य और स्मरण शक्ति का काम था। उन्होंने अनेक घरानों से प्राप्त पारंपरिक रचनाओं को संकलित किया और अपनी विकसित की हुई स्वरलिपि पद्धति के माध्यम से उन्हें लिखित रूप दिया।
1: यहीं से भातखंडे जी के काम का दूसरा बड़ा पक्ष सामने आता है। उन्होंने संगीत के लिए एक ऐसी स्वर लिपि विकसित की जिसके माध्यम से राग, बंदिश और ताल को लिखित रूप में समझना संभव हुआ। आज किसी विद्यार्थी के सामने जब किसी बंदिश की स्वर लिपि रखी जाती है तो वो उसे देखकर अभ्यास कर सकता है। वो केवल ये नहीं कहता कि मेरे गुरु ने मुझे ये बंदिश सिखाई थी। अब उसके पास उसे देखने, पढ़ने और दोहराने का एक लिखित आधार भी होता है। ये परिवर्तन बहुत बड़ा था क्योंकि स्वर लिपि ने संगीत की स्मृति को कागज पर स्थान दिया। लेकिन यहाँ एक बात समझना जरूरी है, स्वर लिपि संगीत का पूरा शरीर नहीं होती।
0: कागज पर स्वर लिखे जा सकते हैं, लेकिन आवाज की पूरी मिठास, स्वर का कंपन, मींड की गहराई, किसी कलाकार की व्यक्तिगत अभिव्यक्ति या राग के भाव का पूरा अनुभव केवल लिखे हुए अक्षरों से नहीं मिल सकता। भातखंडे जी स्वयं संगीत की जीवंत परंपरा को जानते थे, इसलिए उनकी स्वरलिपि का महत्व इस बात में है कि उसने संगीत को संरक्षित करने और सिखाने का एक मजबूत आधार दिया।
1: इसी के साथ उन्होंने एक और बड़ी समस्या को संबोधित किया, रागों का वर्गीकरण। रागों का वर्गीकरण भारतीय संगीत परंपरा में रागों का संसार अत्यंत विशाल था। अलग अलग कालखंडों और परंपराओं में रागों को समझाने और वर्गीकृत करने के अलग अलग तरीके रहे।
0: भातखंडे जी ने जटिलता को सरल बनाने के लिए 10 थाटों की व्यवस्था प्रस्तुत की। बिलावल, कल्याण, खमाज, भैरव, पूर्वी, मारवा, काफी, आसावरी, भैरवी और तोड़ी, इन 10 थाटों को आधार बनाकर बड़ी संख्या में रागों को समझने का एक व्यवस्थित ढांचा तैयार किया गया।
1: ध्यान देने वाली बात यह है कि हर राग को किसी एक थाट में पूरी तरह बांध देना हमेशा संभव नहीं है। राग केवल स्वरों का गणित नहीं है, राग का अपना चलन है, उसकी अपनी पकड़ है, उसका आरोह अवरोह है, उसकी अपनी प्रकृति है, उसका समय है, उसका भाव है, उसकी विशिष्टता है। लेकिन अध्ययन के लिए एक व्यवस्थित आधार आवश्यक था।
0: भातखंडे जी का थाट प्रणाली का योगदान इसी अर्थ में महत्वपूर्ण है। उन्होंने संगीत सीखने वाले विद्यार्थियों के सामने एक ऐसा नक्शा रख दिया जिसके सहारे वे रागों की विशाल दुनिया में प्रवेश कर सके। जैसे किसी विशाल शहर को समझने के लिए पहले उसके मुख्य मार्गों का नक्शा चाहिए होता है, वैसे ही रागों की विशाल दुनिया को समझने के लिए थाट एक व्यवस्थित आधार बन गए।
1: लेकिन भातखंडे जी का काम केवल वर्गीकरण तक सीमित नहीं था, उन्होंने संगीत के सिद्धांत और व्यवहार के बीच पुल बनाने का काम किया। भारतीय संगीत के प्राचीन ग्रंथों में संगीत का विशाल शास्त्रीय साहित्य मौजूद था। दूसरी ओर अपने समय के संगीतज्ञ व्यवहार में संगीत की अलग अलग परंपराएं निभा रहे थे। भातखंडे जी ने दोनों संसारों को साथ रख कर देखा।
0: उन्होंने पुराने संस्कृत ग्रंथों का अध्ययन किया, उन्होंने प्राचीन संगीत परंपराओं को समझने का प्रयास किया, साथ ही उन्होंने जीवित संगीतज्ञों से सीखा कि वास्तव में उनके समय में राग कैसे गाए जा रहे हैं। इसका परिणाम ये हुआ कि वे केवल पुस्तकालय के विद्वान नहीं बने और न केवल मंच के संगीतज्ञ,
1: वे शोधकर्ता भी थे, संगीत शास्त्री भी थे, शिक्षक भी थे और संगीत के दस्तावेजीकरण के अग्रदूत भी। उनका काम हमें ये बताता है कि परंपरा को बचाने का अर्थ उसे केवल अतीत में रख देना नहीं है, परंपरा को बचाने का अर्थ है उसे समझना, उसके मूल तत्वों को पहचानना और उसे आने वाली पीढ़ी तक पहुंचने योग्य बनाना। भातखंडे जी ने यही किया।
0: उन्होंने अपने अध्ययन और यात्राओं के आधार पर अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथ तैयार किए। उनकी प्रमुख कृतियों में हिंदुस्तानी संगीत पद्धति और क्रमिक पुस्तक मालिका का विशेष महत्व है। हिंदुस्तानी संगीत पद्धति 4 खंडों में प्रकाशित हुई, जबकि क्रमिक पुस्तक मालिका 6 भागों में विस्तृत हुई। इन ग्रंथों में रागों के सिद्धांत के साथ साथ अनेक रचनाओं को स्वरलिपि में दर्ज किया गया।
1: आज भी ये पुस्तकें हिंदुस्तानी संगीत के अध्ययन में महत्वपूर्ण संदर्भ मानी जाती हैं। यहाँ एक दृश्य की कल्पना कीजिए। एक ओर गुरु अपने शिष्य को बंदिश सिखा रहा है और दूसरी ओर कोई व्यक्ति उसी परंपरा को ध्यान पूर्वक सुनकर कागज पर दर्ज कर रहा है। एक व्यक्ति संगीत को अगली पीढ़ी तक आवाज के माध्यम से पहुंचा रहा है, दूसरा व्यक्ति उसी संगीत की स्मृति को शब्द और स्वर के माध्यम से स्थायी बना रहा है। भातखंडे जी की भूमिका कुछ ऐसी ही थी।
0: उन्होंने कलाकारों के अनुभव को विद्वानों के अध्ययन से जोड़ा, उन्होंने परंपरा को पुस्तक से जोड़ा, उन्होंने मौखिक ज्ञान को लिखित ज्ञान से जोड़ा और सबसे महत्वपूर्ण, उन्होंने संगीत को केवल कुछ परिवारों या घरानों तक सीमित रहने के बजाय व्यापक शिक्षा व्यवस्था में पहुंचाने की दिशा में काम किया।
1: यहीं से उनकी दृष्टि का एक और महत्वपूर्ण पक्ष सामने आता है, संगीत शिक्षा का लोकतंत्रीकरण। उनके समय में शास्त्रीय संगीत सीखना मुख्यतः गुरु शिष्य परंपरा और संगीतज्ञ परिवारों तक सीमित था। ये व्यवस्था अपनी जगह अत्यंत प्रभावशाली थी, लेकिन समाज के हर व्यक्ति को उसमें प्रवेश मिलना आसान नहीं था। भातखंडे जी चाहते थे कि संगीत की शिक्षा व्यवस्थित संस्थानों में उपलब्ध हो। इसी विचार ने संगीत महाविद्यालयों और पाठ्यक्रमों की दिशा को प्रभावित किया।
0: लखनऊ में 1926 में मॉरिस कॉलेज ऑफ म्यूजिक की स्थापना हुई। इसमें राय उमानाथ बली और राय राजेश्वर बली जैसे सहयोगियों की महत्वपूर्ण भूमिका थी और भातखंडे ने संगीत के पाठ्यक्रम तथा शैक्षणिक व्यवस्था को आकार देने में निर्णायक योगदान दिया। बाद में यही संस्था भातखंडे के नाम से जानी गई और आज भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हो चुकी है।
1: लखनऊ का ये संस्थान केवल एक इमारत नहीं था, ये उस विचार का प्रतीक था कि संगीत को भी गंभीर शैक्षणिक अनुशासन के रूप में पढ़ाया जा सकता है, कि संगीत केवल मनोरंजन नहीं, संगीत अध्ययन का विषय है, संगीत शोध का विषय है, संगीत में व्याकरण है, संगीत में इतिहास है, संगीत में सौंदर्य शास्त्र है और संगीत में ज्ञान की एक पूरी परंपरा है।
0: भातखंडे जी ने इसी सोच को संस्थागत रूप दिया। उन्होंने ग्वालियर और बड़ौदा जैसे केंद्रों में भी व्यवस्थित संगीत शिक्षा के विकास में योगदान दिया। उनकी दृष्टि में विद्यार्थियों को केवल राग गाना नहीं चाहिए, उसे यह भी समझना चाहिए कि राग की संरचना क्या है, ताल क्या है, स्वर का संबंध क्या है, रचना की प्रकृति क्या है, परंपरा का इतिहास क्या है और सबसे महत्वपूर्ण जो वह गा रहा है उसके पीछे का ज्ञान क्या है। यही वह दृष्टि थी जिसने संगीत शिक्षा को एक नए आयाम तक पहुंचाया।
1: भातखंडे का एक और महत्वपूर्ण योगदान था संगीत के अलग अलग प्रवाहों के बीच संवाद। भारत में हिंदुस्तानी और कर्नाटक दोनों महान शास्त्रीय संगीत परंपराएं हैं। दोनों की अपनी भाषा है, अपनी संरचना है, अपनी परंपराएं हैं और अपना सौंदर्य है।
0: भातखंडे जी ने इन परंपराओं को एक दूसरे से समझने और संवाद करने की दिशा में भी प्रयास किए। उन्होंने संगीत सम्मेलनों की परंपरा को बढ़ावा दिया जिससे अलग अलग क्षेत्रों और संगीत प्रणालियों के कलाकारों को संवाद का अवसर मिला। ये विचार आज के समय में और भी महत्वपूर्ण लगता है,
1: क्योंकि किसी कला को मजबूत बनाने का एक रास्ता ये नहीं है कि वो स्वयं को बंद कर ले, बल्कि ये है कि वो अपनी पहचान को बनाए रखते हुए दूसरे अनुभवों से संवाद करे। भातखंडे की दृष्टि में शोध का अर्थ केवल पुराने ग्रंथ पढ़ना नहीं था, शोध का अर्थ था सुनना, प्रश्न करना, तुलना करना, यात्रा करना, कलाकारों से मिलना, परंपराओं को समझना और फिर निष्कर्ष निकालना। इस दृष्टि से वे अपने समय से आगे दिखाई देते हैं।
0: आज हम जिस शब्द का बहुत इस्तेमाल करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन यानी दस्तावेजीकरण, भातखंडे जी ने उस काम को एक सदी से भी पहले गंभीरता से किया। आज हमारे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग है, वीडियो है, डिजिटल आर्काइव है, क्लाउड स्टोरेज है।
1: लेकिन उस समय कागज, कलम और कान और उनका असाधारण धैर्य ही उनके सबसे बड़े साधन थे। उन्होंने संगीत को सुनकर लिखा, लिख कर व्यवस्थित किया, व्यवस्थित करके प्रकाशित किया और प्रकाशित करके विद्यार्थियों तक पहुंचाया। ये यात्रा भातखंडे जी की सबसे बड़ी विरासतों में से एक है।
0: उनकी निजी जिंदगी में भी ऐसे क्षण आए जिन्होंने उनके जीवन की दिशा बदल दी। सन 1900 में उनकी पत्नी का निधन हुआ और 1903 में उनकी बेटी भी नहीं रही। इन निजी आघातों के बाद उन्होंने अपने जीवन को लगभग पूरी तरह संगीत अध्ययन और संगीत सेवा के लिए समर्पित कर दिया। कभी कभी जीवन के सबसे बड़े दुख मनुष्य को उस काम की ओर धकेल देते हैं जिसे वह भीतर से अपना मानता है।
1: अब वो समय आ गया था जब भातखंडे जी के लिए स्वयं के लिए संगीत से इतर कोई दृष्टि नजर नहीं आ रही थी। संगीत और सिर्फ संगीत जीवन का उद्देश्य बन गया और इसके बाद उनके जीवन का बड़ा हिस्सा यात्रा, अध्ययन, लेखन और संगीत के पुनर्गठन में बीता। उन्होंने अनेक बंदिशें एकत्र की, अलग अलग घरानों की परंपराओं को समझा, पुराने ग्रंथों का अध्ययन किया। तब एक नई चुनौती उनको महसूस हुई।
0: अलग अलग घरानों में एक ही राग के रूप, बंदिश और प्रस्तुति में भी अंतर मिल सकता था। भातखंडे जी को इन विविधताओं के बीच से संगीत का एक व्यवस्थित व्याकरण निकालना था। ये किसी एक दिन का काम नहीं था, ये दशकों की साधना थी और यही कारण है कि उनके योगदान को केवल 10 थाट देने वाले व्यक्ति के रूप में देखना उनके काम को छोटा कर देना होगा।
1: थाट उनकी विरासत का केवल एक हिस्सा है, उनकी असली विरासत है एक विशाल, जीवंत और विविध संगीत परंपरा को व्यवस्थित ढंग से समझने का प्रयास। उनकी असली विरासत है स्वर लिपि, उनकी असली विरासत है रचनाओं का संकलन, उनकी असली विरासत है संगीत शिक्षा की संस्थागत व्यवस्था, उनकी असली विरासत है संगीत शास्त्र को आधुनिक अध्ययन की भाषा देना।
0: और उनकी सबसे बड़ी विरासत शायद यह है कि उन्होंने हमें सिखाया कि किसी परंपरा से प्रेम करना केवल उसकी प्रशंसा करना नहीं है, उसे सहेज कर पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करने के लिए अथक प्रयास भी जरूरी है।
1: हम अक्सर इतिहास को महान कलाकारों के नाम से याद करते हैं, तानसेन का नाम लेते हैं, उस्ताद बड़े गुलाम अली खां को याद करते हैं, पंडित भीमसेन जोशी को याद करते हैं, पंडित रविशंकर को याद करते हैं, लता मंगेशकर, कुमार गंधर्व, उस्ताद अमीर खां, ऐसे असंख्य कलाकारों की आवाजें हमारी सांस्कृतिक स्मृति का हिस्सा हैं।
0: लेकिन कलाकारों की उपलब्धियों के पीछे एक पूरी ज्ञान परंपरा भी होती है।

0: वास्तुकार स्वयं हमेशा उस भवन के भीतर दिखाई नहीं देता, लेकिन भवन की संरचना उसके विचारों को व्यक्त करती है। पादखंडे जी भी कुछ ऐसे ही थे।
1: आज यदि संगीत का विद्यार्थी रागों को एक व्यवस्थित प्रणाली में पढ़ता है तो उसमें पादखंडे की छाप है। यदि विद्यार्थी बंदिश को स्वर लिपि में पढ़कर अभ्यास करता है तो उसमें भातखंडे की छाप है। यदि संगीत के पाठ्यक्रम में सिद्धांत और व्यवहार दोनों साथ पढ़ाए जाते हैं तो उसमें भातखंडे की दृष्टि दिखाई देती है।
0: यदि संगीत के पुराने ज्ञान को पुस्तकों में सुरक्षित देखकर हम आज उसका अध्ययन कर पा रहे हैं तो उसमें भातखंडे की तपस्या का अंश है, और शायद इसी कारण उनके योगदान को समझना आज भी जरूरी है। क्योंकि हम जिस डिजिटल युग में जी रहे हैं उसमें सूचना को सुरक्षित करना पहले से आसान है, लेकिन ज्ञान को सही रूप में सुरक्षित करना अभी भी उतना ही कठिन है। एक वीडियो बना लेना दस्तावेजीकरण नहीं है, एक ऑडियो रिकॉर्ड कर लेना भी पर्याप्त नहीं है।
1: दस्तावेजीकरण का अर्थ है संदर्भ को समझना, कलाकार को समझना, परंपरा को समझना, उसके स्रोत को दर्ज करना, उसकी विविधताओं को सुरक्षित रखना और उसे ऐसी व्यवस्था में रखना कि भविष्य का विद्यार्थी उसे समझ सके। भातखंडे जी का काम हमें इस गंभीर दस्तावेजीकरण की प्रेरणा देता है।
0: अगर आप संगीत के विद्यार्थी नहीं हैं, सिर्फ शौकिया तौर पर भी जब आप भातखंडे जी की लिखी संगीत की किताबें पढ़ते हैं तो आप संगीत को समझने में मुश्किलों का सामना नहीं करते। बस यही समझ आती है भातखंडे जी की अथक लगन और मेहनत।
1: क्या केवल ये कह देना पर्याप्त है कि हमारी संस्कृति महान है? नहीं, महान संस्कृति को महान बनाए रखने के लिए मेहनत भी करनी पड़ती है। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी ने यही किया।
0: उनकी कहानी हमें एक और बात सिखाती है, कला केवल कलाकार की नहीं होती, कला के पीछे समाज होता है। गुरु होते हैं, शिष्य होते हैं, शोधकर्ता होते हैं, और वे लोग भी होते हैं जो चुपचाप अपना पूरा जीवन इस बात में लगा देते हैं कि कला का ज्ञान नष्ट ना हो। भातखंडे जी ऐसे ही व्यक्ति थे।
1: उनका जीवन हमें ये बताता है कि किसी विरासत को बचाने के लिए केवल भावुक होना पर्याप्त नहीं, उसके लिए अनुशासन चाहिए, अध्ययन चाहिए, जिज्ञासा चाहिए और सबसे बढ़कर धैर्य चाहिए।
0: यही कारण है कि उनका नाम भारतीय संगीत के इतिहास में एक ऐसे मोड़ के रूप में दिखाई देता है जहां परंपरा ने आधुनिक शैक्षणिक संरचना से संवाद शुरू किया। हमें उस विचार को भी याद करना चाहिए जो उनके जीवन के केंद्र में था, ज्ञान को सुरक्षित करना, परंपरा को समझना और उसे सबके लिए उपलब्ध कराना। क्योंकि संगीत केवल सुनने की चीज नहीं है, संगीत एक ज्ञान परंपरा है, संगीत स्मृति है, संगीत इतिहास है, संगीत अनुभव है, संगीत साधना है। और जब कोई व्यक्ति इस पूरी परंपरा को आने वाली पीढ़ियों के लिए व्यवस्थित करके छोड़ जाता है तो वह केवल अपने समय की सेवा नहीं करता, वह भविष्य की सेवा करता है।
1: पंडित विष्णु नारायण भातखंडे ने भविष्य की सेवा की। एक वकील से संगीत शास्त्री बनने की उनकी यात्रा केवल पेशा बदलने की कहानी नहीं है, ये उस आंतरिक पुकार की कहानी है जिसे उन्होंने पहचाना।
0: इसलिए जब अगली बार किसी राग की चर्चा हो, जब कोई विद्यार्थी सारे गामा लिखकर किसी बंदिश को सीखने का प्रयास करे, कोई बच्चा छोटा ख्याल गुनगुनाए या कोई संगीतज्ञ बड़ी तान लगाए, तब मन ही मन पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी को प्रणाम जरूर करिएगा।

0: यही समाप्त होता है।
1: कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना है अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम और लेखक है मनीषा चतुर्वेदी, और मैं हूं आपके साथ आपका ध्वनि मित्र रत्नेश सोनी,
0: और मैं हूं वर्षा सिंह। लेते हैं इजाजत, सुनते रहिए 90.8 रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: आप सुन रहे थे कार्यक्रम कला कल्लोलिनी, बने रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद के साथ, सुनते रहिए देश का चैनल देश के लिए।

मैं हूं पिनाज मसानी और आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद। दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको, दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको।

0: रेडियो आजाद हिंद के सभी सुनने वालों को नाज मसानी की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं।
1: नाइन्टी पॉइंट एट मेगा हर्ट्ज पर इस वक्त आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण। श्रोताओं, हमारा अगला कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में, बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद पर मैं हूँ कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। रेडियो आजाद हिंद के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
1: ये मेरा इंडिया।
0: देश के अमर शहीदों को मेरा नमन है जिन्होंने आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। जय हिंद। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है। अब वक्त है विशेष कार्यक्रम का। आज के इस खास कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं शहीद भगत सिंह नाटक के संपादित अंश।

0: जिसका मंचन हुआ 23 मार्च यानी शहीद दिवस के मौके पर। इस नाटक का निर्देशन किया सुंदरलाल मालवीय ने। यह प्रस्तुति रही माच शैली में। इस कार्यक्रम का पहला भाग है।
1: तो देवियों और सज्जनों, शहीद भगत सिंह के बलिदान को हम लोक स्वर में कहने जा रहे हैं। पंजाब की मिट्टी के लाल को मालवा की मिट्टी की ओर से एक भावांजलि है ये। आप जानते ही हैं कि माच मालवा की लोक संस्कृति का परिचायक है, जिसका इतिहास लगभग 300 साल पुराना है। हम आपको बता दें कि माच में गायन और अभिनय साथ साथ होता है, कथानक के संवाद गायन के साथ आगे बढ़ते हैं। परंपरागत रूप से माच में स्त्री पात्र को भी पुरुष ही निभाया करते थे, लेकिन अब मुख्य स्त्री पात्र को स्त्रियां भी निभाती हैं। हारमोनियम, ढोल, नगाड़ा, सारंगी और बांसुरी के साथ कई लयकारियों और अलग अलग तालों में माच का खेल आकार लेता है। देवी और सज्जनों, माच का एक रोचक पूर्व रंग होता है, जिसमें जर्जर की स्थापना, जय जयकार, पात्रों की सलामी यानी परिचय और लोक देवता भैरवनाथ की वंदना का क्रम होता है, और फिर माच की गजल गाई जाती है। इसके बाद बेढप आता है, परिचय देता है, भिष्टी को बुलाता है, छिड़काव करवाता है, फिर भर्रासन को जाजम बिछाने के लिए बुलाता है, यूं ठाट बाट जमाता है और कहानी आगे बढ़ती है। तो इस तरह माच मालवा की एक समृद्ध लोक नाट्य परंपरा है, जिसके साक्षी आप बनेंगे मालवा की माटी की सुगंध के साथ। तो लीजिए, प्रस्तुत है माच शैली में नाटक शहीद भगत सिंह।

सारू हाँ तो यहाँ पे सबसे पहले अपने कहीं करना छुटकाव कर ही देना तो एक लिए सबसे पहले भिष्ट जी

0: मैडम साहब बोलो क्यों आवाज नहीं गया था?
1: अरे ऐसा है क्या, यहाँ अमर शहीद सरदार भगत सिंह जी की सवारी आ वाली है।
0: भगत सिंह जी की सवारी आ रही है?
1: तुम्हारा भाग खुली गया भाग।
0: अरे वाह,
1: तुम्हारे कई काम मिले मालूम? अरे यहाँ पे तरी ने छिटकाव करना है।
0: ऐसा

0: इतनी जल्दी भूली गया? तो जा सगली बच्चा घर में से कर लो नहीं, अरे बाहर आ। यहाँ तुम बताओ, वो सखी सहेली के लेता
1: लो जानी है मामा पे।

0: मैं भी आएगी ना सबके बुलाई लाई। बताओ कई काम पड़ेगी जो हम सबके बुलाई।
1: इसो भाभी साहब, क्या यहाँ सरदार भगत सिंह जी की सवारी आवा वाली?
0: अरे वाह।
1: हाँ, मैं आपके यहाँ पे जादा बिछाई।
0: लो अभी बिछाई दा।
1: हाँ बिछाओ बिछाओ।

0: हमने सुनियो क्या आप देखियो क्या आपके जादू में बड़ा बड़ा नगी ना
1: हाँ।
0: अच्छा ये बताओ क्या आप कौन सा देवी देवता को पूजन करो
1: लो यो भी सुनावा
0: सुना।

0: गणपति भगवान ने सरस्वती माता का पूजन करो। हाँ, मैं आत्मा से परमात्मा तक की बात करूँ। अरे वाह, तो अब हमारे यो बताओ, क्या आपके जाजन में और कई कई विशेषता
1: लो यो भी सुनावा
0: सुनाओ।

0: राजम में सात रंग है ना, वो जीवन के जैसे निर्गुण को प्रकाश फैले है सात रंग को, वैसे प्रकाश आपके की राजम में है, वो आपको काम हुई हो, अबे आप जय सो जाओ।
1: अरे हमारा काम हुई क्या?
0: हाँ।

0: चलो अबे सगलो काम हो गया, अब तो बस एक ही इंतजार है कि सरदार भगत सिंह जी की सवारी आई जाए। वाह वाह वाह बस। अरे अरे लो भगत सिंह जी की सवारी आई आएगी तो बोलो इनकलाब
1: जिंदाबाद।

0: जिंदाबाद जिंदाबाद बेटा इनकलाब जिंदाबाद। कई बात है, तू भी क्रांतिकारी हुई क्यों?
1: अरे क्या, अरे क्रांतिकारी हुई जो इतनी मारी हैसियत का,
0: अरे
1: मैं तो बस आपका साथे रह रही के नारो लगाना सीखी जाऊँ। योज बहुत है
0: हमारा साथे, अच्छा अच्छा लोग नारो लगाना सीखी जाए।
1: अब आप आइया तो मैं यूँ कहूँ कि ये माँ देखवा वाला भला भला मनक है, तो इनको थोड़ा अपना परिचय दे दो।
0: अरे तो बेटा ये सब हमारे पहचाने नहीं कहीं।
1: अरे आपके तो देश को बच्चों बच्चों जाने हैं, पर कही है कि सभा में आए तो एक कायदो है।
0: सही बात।
1: तो आप थोड़ा सा परिचय दे दोगे तो अच्छा रहेगा।
0: ठीक है, तो सुनो हमारी बात।

0: हाँ बेटा कहीं सुनियो।
1: अरे हमने सुनियो क्या आप आजादी का दीवाना हो, ने आपको नाम भगत सिंह है।
0: फिर
1: अब मारे यो बताओ क्या आपका माता पिता कौन है, ने आपको जन्म कहाँ हो।
0: यो भी सुनो।
1: सुना

0: आपने क्योंकि आपको जन्म 1907 में हुआ, ने आपके पिताजी का नाम किशन सिंह जी, ने माता जी का नाम विद्यापति,
1: एकदम सही।
0: अब हमारे आप यो बताओ कि आपका गुरु जी कौन है?
1: पहला हमारा भाई बहन का बारे
0: में। अरे हाँ हाँ, पूरे परिवार को तो मालूम पड़ना चाहिए। तो आप हमारे ये बताओ कि आपका भाई बहन कितना है, ना आपका काका जी कहीं करें।
1: यो भी सुनो।

0: सुनियो।
1: अरे आपने क्योंकि आप तो दो भाई एक बेन जो आपको कहो जो क्रांतिकारी
0: क्रांतिकारी
1: अब तो बताइए तो मारे कि आपको गुरुजी कौन है
0: उनको भी नाम सुनो
1: ना।

0: आज के इस खास कार्यक्रम में आप सुन रहे थे नाटक शहीद भगत सिंह के संपादित अंश। ये इस कार्यक्रम का पहला भाग था। अगले कार्यक्रम तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: नमस्ते भोपाल, मैं हूं कैलाश खेर और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।

श्रोताओं, इस वक्त आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण, देश का चैनल देश के लिए। हमारी फ्रिक्वेंसी 90.8 मेगाहर्ट्ज़। लीजिए प्रस्तुत है नगर की सामाजिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों पर आधारित कार्यक्रम परिक्रमा। नमस्कार, मैं हूं आपकी दोस्त सुनीता सिंह। परिक्रमा के आज के सफर पर चलिए मेरे साथ।

श्रोताओं, ट्राइबल म्यूजियम में नृत्य गायन और वादन पर केंद्रित संभावना में इस रविवार की शाम महाभारत के सबसे खास द्रौपदी प्रसंग के नाम रही, जहां पुत्रों की मृत्यु और व्यक्तिगत पीड़ा के बावजूद द्रौपदी धर्म, क्षमा और जीवन की कठिन सच्चाइयों का सामना करती है। भोपाल की प्रियंका शर्मा के निर्देशन में खेली गई नाट्य प्रस्तुति द्रौपदी लीला 1 घंटे 40 मिनट की रही। इसमें 45 से अधिक कलाकारों ने मंच पर द्रौपदी के जन्म से लेकर रणभूमि में पुत्रों की हत्या तक की कहानी बयान की। इस लीला नाट्य को 12 से ज्यादा अलग अलग दृश्यों में पिरोकर पूरी कहानी मंच पर लाई गई। नाट्य प्रस्तुति में दिखाया गया है कि द्रौपदी का जन्म यज्ञ की अग्नि से होता है। पांचाल की राजकुमारी ऐसी स्त्री है जो अपने समय की सामाजिक राजसत्ता की सीमाओं के बीच अस्तित्व और सम्मान की लड़ाई लड़ती है। कहानी द्रौपदी के स्वयंवर से शुरू होती है, फिर उसे पांडवों की पत्नी और हस्तिनापुर के राज परिवार का हिस्सा बना दिया जाता है। इंद्रप्रस्थ की समृद्धि से लेकर द्युतसभा के अपमान तक द्रौपदी का जीवन सत्ता, छल और पुरुष अहंकार के बीच संघर्ष का प्रतीक बन जाता है। सभा में अपमान के समय उसका सवाल, जिसे स्वयं पर अधिकार नहीं वो मुझे कैसे दांव पर लगा सकता है, पूरे राजतंत्र और धर्म व्यवस्था को कटघरे में खड़ा करता है। चीरहरण के समय कृष्ण का संरक्षण उसकी आस्था और शक्ति का आधार बनता है। अपमान की अग्नि से द्रौपदी प्रतिशोध नहीं लेती, वो न्याय का संकल्प लेती है। वनवास, अज्ञातवास और अनेक संघर्षों के बीच वो पांडवों को उनके लक्ष्य और स्वाभिमान की याद दिलाती रहती है। कुरुक्षेत्र का युद्ध केवल हस्तिनापुर के सिंहासन का युद्ध नहीं रह जाता, वो अन्याय के खिलाफ न्याय और अहंकार के विरुद्ध धर्म की स्थापना का युद्ध बन जाता है। युद्ध में विजय मिलने पर भी द्रौपदी का जीवन सुखी नहीं होता। पुत्रों की मृत्यु और व्यक्तिगत पीड़ा के बावजूद वो धर्म, क्षमा और जीवन की जटिल सच्चाइयों का सामना करती है।

श्रोताओं, ख्याल ऑडिटोरियम में जैसे ही सुरों की पहली तान छिड़ी, माहौल गजलों और शायरी की महफिल में बदल गया। रविवार की शाम उन्स दो में कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां संगीत प्रेमी सिर्फ गजलें सुनते नहीं बल्कि उनके साथ गुनगुनाने और महसूस करने पहुंचे थे। इस गजल कार्यक्रम की थीम गजल आपकी हमारी थी। शाम की शुरुआत गायक अभिषेक बरथरे ने गुलों में रंग भरे और रफ्ता रफ्ता जैसी गजलों से की। इसके साथ श्रोता सुरों से जुड़ते चले गए। इसके बाद जगजीत सिंह की कल चौदहवीं की रात थी, गुलाम अली की हमको किसके गम ने मारा और नैना मोरे तरस गए ने माहौल में रोमांस और सूफियाना रंग घोल दिया। फिर बारी आई जगजीत सिंह की मेडली की, जिसमें उन्होंने होठों से छू लो तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, तुमको देखा तो ये ख्याल आया और होश वालों को खबर क्या जैसे गीतों की धुन शुरू होती गई। कई श्रोता उनके साथ साथ गुनगुनाते नजर आए। अभिषेक गाते रहे और सामने बैठे लोग उनकी आवाज में अपनी आवाज मिलाते रहे। मंच और दर्शकों के बीच की साझा महफिल एक तैयार हो गई। करीब दो घंटे चली इस संगीतमय सभा में अभिषेक ने अपनी टीम के साथ दर्शकों की फरमाइशें भी पूरी की। तबले पर स्वप्निल बागुल, कीबोर्ड पर ओजस शिवड़े, एकॉस्टिक गिटार पर प्रफुल्ल खापेकर, फ्लूट पर राकेश साटनकर और ड्रम्स पर आयुष ओझा ने संगत की। दर्शकों की मांग पर पत्ता पत्ता, बूटा बूटा, तू हीरे, रोजा जाने मन और सांवरे जैसे गीतों की प्रस्तुति ने महफिल का रंग और गहरा कर दिया। इसके बाद पंजाबी सूफी संगीत भी सुनाया गया।

एकता मध्य प्रदेश शासकीय कर्मचारी रंगमंच की ओर से 16वां एकता नाट्य समारोह इन दिनों रंगश्री लिटिल बैलेट रूप में आयोजित किया गया है। 5 दिनों के इस समारोह के तहत दूसरे दिन हास्य नाटक दिल की दुकान का मंचन किया गया। डॉक्टर संकल्प कुमार के निर्देशन में तैयार नाटक सिर्फ 16 दिनों की तैयारी में नई कास्ट, अलग क्लाइमैक्स और अलग ढंग के साथ मंच पर उतरा। दिल क्या बदले, जिंदगी का रंग ही बदल गया। राजेंद्र शर्मा का लिखा नाटक दिल की दुकान की शुरुआत 3 परिवारों के साथ होती है जो अपनी अपनी परेशानियों से जिंदगी में नाखुश हैं। धनीराम का परिवार उसकी कंजूसी से परेशान है। शायरा के घर में उसके पति उसके बर्ताव से परेशान हैं क्योंकि वो हर बात पर भड़क जाती हैं। तीसरा परिवार एक सरदार जी का है, प्रीतम सिंह शराबी हैं, जो उनके परिवार के लिए मुश्किल की जड़ है। इसी बात से वो परिवार परेशान है। इसी बीच शहर में एक दिल की दुकान खुलती है जहां दिल बदले जाते हैं और व्यक्ति की पर्सनैलिटी पूरी चेंज हो जाती है। तीनों परिवार अपने अपने सदस्यों को लेकर यहां पहुंचते हैं। धनी राम को यहाँ एक बादशाह का दिल दिया जाता है, शायरा को लगाया जाता है लैला का दिल और प्रीतम सिंह को लगाया गया एक तोतले साधु का दिल। दिल तो बदल गए मगर अब नई मुसीबतें खड़ी हो गईं। सिर्फ 12,000 की नौकरी करने वाला 2-3 दिनों में 25,000 रुपये उड़ा देता है। यहाँ तक कि पैसे खत्म हो जाने पर पत्नी को कहता है कि हम अब तुम्हारी अंगूठी बेचकर तोहफा लाएंगे। शायरा अपने पति को इतना प्यार करती है कि दफ्तर नहीं जाने देना चाहती। वहीं प्रीतम अब सबको उपदेश देता घूमता है। तभी एक पागल की एंट्री होती है जो दुनिया की नज़र में भले ही पागल है मगर सबसे पते की बात कहता है। उस ईश्वर ने हमें जैसा बनाया अच्छा ही बनाया, तो दिल से खुश रहना ही असली सुकून देता है।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे नगर की सामाजिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों पर आधारित कार्यक्रम परिक्रमा। उम्मीद है अपने आसपास की आहटों से आप परिचित होंगे। क्या कुछ आपके शहर में, आपके आसपास आयोजित हो रहा है, कौन कौन सी सांस्कृतिक, साहित्यिक और सामाजिक गतिविधियाँ चल रही हैं, इससे हमने आपको रूबरू कराया। अब इस कार्यक्रम से इजाज़त दें अपनी दोस्त सुनीता सिंह को, नमस्कार। लेकिन आप बने रहिएगा रेडियो आज़ाद हिंद के साथ, क्योंकि आगे बहुत कुछ खास आपके लिए है, तो कहीं जाइएगा नहीं। हम एक छोटा सा अंतराल लेंगे और उसके बाद हाजिर होंगे अगली प्रस्तुति के साथ।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8 देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स।
1: हम सलाम करते हैं उन देश के जवानों को जो सरहदों पर दिन रात तैनात होकर हमारी और हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, और हम उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को नमन करना चाहते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर हमें ये आज़ादी दिलाई।
0: रेडियो आज़ाद हिंद देश का पहला और एकमात्र ऐसा रेडियो चैनल है जो वीर जवानों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की अमर गाथाओं को समर्पित है।
1: तो सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। नमस्कार। पर

0: इस प्रसारण सभा में आज आपके साथ हूं मैं सुनीता सिंह। रेडियो आजाद हिंद से हमारी अगली प्रस्तुति आज की रेडियो रिपोर्ट। इंतजार कीजिए बस जरा सा।
1: नमस्कार, मैं हूं अन्नू कपूर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर। मैं प्रणाम करता हूं, नतमस्तक हूं, सलाम करता हूं देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए हरदम तैनात रहते हैं, तैयार रहते हैं। नतमस्तक हूं साथ ही उन सभी क्रांतिकारियों को प्रणाम करता हूं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें ये आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: अब आपसे मुखातिब हैं डॉक्टर अंबर आबिद।
1: जो पारू ने कल ही तो अपने मंझले बेटे मन्नू के हाथ से लेकर अपने गले का सिहतागा तोड़कर इस बच्चे के लाए हुए टुकड़े को इसके पांव में बांधा था, धूल से सने पैरों में सुनहरा टुकड़ा चमक उठा तो पारू निहाल हो गई। उसने मन्नू को कलेजे से लगा लिया। मन्नू इसका चहीता बेटा था, अगर कहीं से कुछ भी मिलता तो बुला कर माँ के हाथ पे रख देता और माँ की हर बात बड़ी खामोशी से मान लिया करता। बड़े लड़के की आदतें बात जैसी थी, गुस्सीला और जिद्दी, मगर मन्नू तो बड़ा मासूम और फरमाबरदार बच्चा था। पारू को इस बच्चे से बड़ी उम्मीदें थीं कि जब ये बड़ा होगा तो ज़रूर माँ की किस्मत बदलेगा। मन्नू के पाँव और बाकी का जिस्म खून में लथपथ जैसे कोई गोश्त का लोथड़ा कुचला पड़ा हो, वहाँ बस दो मुन्ने से पाँव बचे थे, शायद ये ट्रक के जालिम पहिए की जद से बाहर रह गए थे। बस दो पाँव और एक पाँव में काला तागा और तागे में दिल जैसा पीतल का सुनहरा टुकड़ा जैसे पारो का दिल। पारो दीवानावार आगे बढ़ी और पाँव के आगे मन्नू को टटोलने लगी, मगर वहाँ गोश्त और खून के सिवा कुछ भी तो ना था। पारो के गले से एक दिलखराश चीख निकली, वो दीवानावार चीख रही थी, मन्नू मेरा मन्नू, और फिर इसको कुछ होश ना रहा। हे भगवान, ये तो पारो का मन्नू है, हाय दैया, ट्रक ने हत्यारे को रोन दिया। ये पारो की पड़ोसन की आवाज़ थी। कुछ औरतें खींच खाँच कर पारो को झोपड़ी में ले आईं। दिन गुजरा, रात आ गई, घीसू भी आ गया। इसे कई लोग बार बार हादसे की तफ्तीश के सिलसिले में बाहर बुला रहे थे। बच्चे की लाश पुलिस ने अपने कब्जे में ले ली थी। नींद जान पारो, पारो को किसी ने कुछ खिलाने की कोशिश की, मगर इसे तो सिवाय अपने बच्चे के किसी बात का होश ना था। इसे हर तरफ अपना मन्नू नजर आ रहा था। वो जारो कतार रोती, चुप हो जाती और फिर बेतहाशा रोने लगती। पड़ोसन ने दोनों बच्चों को खिला पिला कर सुला दिया था। 7 साल का बच्चा दीवार से लटकर बिछी मैली दरी पर रौंदा पड़ा सो रहा था, मगर छोटा बच्चा बराबर पारो की छाती से लिपटा था। वो इसके साथ कभी रोता और सोता रहा। मन्नू का क्रिया कर्म कैसे हुआ, किसने किया, पारो को कुछ होश नहीं था। 3 दिन कैसे गुजरे, कमजदा पारो हर बात से बेखबर थी। रात के कोई 12 बजे होंगे कि घीसू घर वापस आया। पारो गम से निढाल और लुटी पिटी सी बैठी थी। घीसू उसके पास आकर बैठ गया। अरे अब कब तक सोग मनाएगी, अब चुपकी हो जा बस, इसने पारो को अपनी तरफ खींचा। पारो ने घीसू की तरफ शाकी नजरों से देखा। खिलाफ मामूल घीसू का लहजा आज नर्म था। वो धीमे लहजे में से समझाने लगा और नजदीक खिसक आया। बोला, देख इधर देख मैं क्या लाया हूँ। पारो की मुतवर आँखें घीसू के हाथों पर मरकूज हो गई। वो एक कपड़े की गिरह खुल रहा था, नोट ही नोट। वो देखती रह गई। इसने अपनी पूरी जिंदगी में इतना रुपया कभी एक साथ नहीं देखा था। घीसू की आंखों में एक शातिराना चमक थी। इसने कहा, हम अब लखपति हैं, पता है ये पूरे 3 लाख रुपए हैं, कम ना ज़्यादा। आज से पहले कभी इतना रुपया देखा भी है तूने, ले छू कर देख ले। अब हम पक्की जुग्गी बनाएंगे, तू बरसात में कितना कष्ट उठाती है ना, अब ना रोइयो, शांत हो जा, सब ईश्वर की मर्जी। पारो को समझ नहीं आया कि वो मन्नू की मौत का मातम मनाए या घीसू की खुशी में इसका साथ दे। वो बैठी ही बैठी रह गई। बच्चों के लिए नए कपड़े बन जाएंगे, बिजली का कटा हुआ कनेक्शन भी जुड़वा लेंगे, जूते भी, और सुन हाँ, ऐसा करते हैं एक लोहे की खटिया भी ले लेंगे, साथ में दरी और बिस्तर की। वो बातें करते करते लेट गया और मुस्तकबिल के सुनहरे ख्वाबों में खो गया। 3 दिन से रोती बिलकती थकी हारी पारो भी वहीं आड़ी हो गई। नोट घीसू के सरहाने कपड़े में रखे थे। इधर घीसू को किसी करवट चैन नहीं था, कभी इधर करवट लेता कभी उधर, आखिर वो उठ बैठा और लालटेन उठा लाया। पारो ने देखा घीसू नोटों पर हाथ फेर रहा है, उन्हें सूंघ रहा है। वो फिर लालटेन की रोशनी में अपने सोए हुए बच्चों को देखने लगा और मुस्कुरा दिया। घीसू ने अचानक पारो को झंझोड़ दिया, अरे उठ पारो। पारो हड़बड़ा कर उठ बैठी।

0: जज्बाए सोजे तलब को बेकरां करते चलो, जज्बाए सोजे तलब को बेकरां करते चलो, खूब बखूब रोशन चराग़े कारवां करते चलो। आपकी पुरजोर तालियों में चंद्रभान राही साहब तशरीफ ला रहे हैं कहानी का उन्वान फूल के पास।
1: मेरी कहानी का शीर्षक है पुल के पास। ची करती ट्रेन पुल पर से अपने गंतव्य की ओर दौड़ी चली जा रही थी। ट्रेन के वेग से पुल, जो ज्यादा बड़ा ना था, कांप उठा। पुल के पास खड़ा बिजली का खंभा हिल सा गया। कुछ क्षण तक ट्रेन के वेग की कंपन को मैं स्वयं महसूस कर रहा था। पुल के पास ट्रेन की पटरी, बहुमंजिली इमारतें बनी थी, जिनमें से चौथे माले पर मेरा भी एक फ्लैट था। आज अवकाश था, मैं ठंड से बचने के लिए बालकनी में धूप सेक रहा था। तभी ट्रेन के गुजरने का वक्त हुआ। ट्रेन तीव्र गति से पटरी पर दौड़ती हुई पुल, खंबा, आसपास के मकान को कपकपाती चली गई। मैंने देखा कि दो चिड़िया, शायद वो बाहर से आई थीं, क्योंकि मैंने वैसी चिड़िया आज से पहले नहीं देखी थी। दोनों चिड़िया खंबे पर बैठी एक दूसरे की चोंच से चोंच मिलाती, फिर पंखों को फड़फड़ाकर सिर को झटकारती। अचानक ही उनके सारे पंख खड़े हो जाते, फिर एक एक करके सारे पंख बदन से चिपक जाते। तभी दूर से ट्रेन के आने की आवाज़ आई। मैं सोचने लगा कि क्या ये चिड़िया खंभे पर बैठी रहेंगी? शायद नहीं। मेरी सोच अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि ट्रेन वेग से आई और पुल थरथराने लगा। खंभा भी कुछ क्षण हिला, खंभे पर बैठी चिड़िया उड़ी और ट्रेन के जाने के बाद पुनः खंभे पर आकर बैठ गई। बिजली के नंगे तार को व्यक्ति छू ले तो शायद ही वह बच पाए, इसलिए भय के मारे वह बिजली के तारों से दूर ही रहने की कोशिश करता है। चिड़ियों के हौसले बुलंद थे, वे बिजली के नंगे तारों पर बैठी थीं। वहीं पास एक चमगादड़ 2 दिन से तार पर उल्टा लटक रहा था, शायद वह

से आंखें खुल जाती हैं। जब मैं नया नया अपनी पत्नी के साथ इस घर में रहने आया था, तब रात में ट्रेन जब पुल पर से गुजरती तो ऐसा लगता कि हमारे सर पर से गुजर रही है। फटाक से रात में आंखें खुल जाती और फिर दूसरी तीसरी ट्रेनें गुजरती रहती और सुबह हो जाती। पत्नी ने इस मकान में रहने से मना कर दिया था। शायद मैंने भी मकान को बेचने का निर्णय कर लिया था, लेकिन जिसे भी इस मकान को खरीदने के लिए कहता या जितने भी मकान के खरीदार आते, सभी ने ट्रेन की पटरी के कारण खरीदने से मना कर दिया था। धीरे धीरे 6 माह बीत गए, अब तो लगभग आदत सी हो गई। अब ट्रेन के गुजरने से समय का पता चल जाता है। ऐसा लगने लगा मानो ट्रेन घड़ी की सुई है, जब जो बजता है तब वह ट्रेन आ जाती है, जिससे सही सही समय का अंदाजा हो जाता है। अब ट्रेन के गुजरने की आवाज़ सुनने की आदत कानों को हो गई थी। पत्नी भी अब नाराज नहीं होती, बल्कि वह ट्रेन के गुजरने से समय का आभास करके मुझे समय पर उठा देती। ठंड में सुबह समय को शायद ट्रेन के पहिए लग जाते हैं, जो अपनी गति से अधिक तीव्र गति से चलने लगते हैं। आज मेरे कार्यालय में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद के लिए इंटरव्यू का आयोजन था। कुछ अच्छे कपड़े पहनकर घर से निकला था। समय था कि भागता जा रहा था। बस स्टॉप पर खड़े प्रत्येक व्यक्ति को मंजिल तक जाने वाली बस का इंतजार था। मैं भी खड़ा बस का इंतजार कर रहा था।

0: हमारी अगली तख्लीकार मोहतरमा निगार अजीम साहिबा का शुमार उर्दू के उन मुमताज और आलमी शोहरत याफ्ता अदीबों में होता है जिन्होंने अपने अफसानों, शायरी, सफरनामे और तनकीदी निगारिशात से उर्दू के फिक्री, फनी और अदबी सरमाए को मालामाल किया है।
1: कहानी का उन्वान है एक्वेरियम। पहली मरतबा इस सुख से आशना हुई तो सरशार हो गई, प्यार, मोहब्बत, दिलजुई, बल्कि उससे भी कुछ ज्यादा जो हमने 25 बरसों में उसे दिया था, शायद वो 25 दिन में ही लौटा देना चाहता था। मुमकिन है कि पिछले 6 माह की जुदाई का असर हो। दरअसल बेटे को एक अच्छी फर्म में मुलाजमत मिली तो उसे दिल्ली छोड़कर मुंबई शिफ्ट होना पड़ा। उसकी जुदाई से ऐसा महसूस हुआ था जैसे जिस्म का कोई हिस्सा कट गया हो। उसके बार बार बुलाने का असरार नाराज़गी में बदलने लगा तो हम दोनों ने फासले ख़त्म किए और बम्बई पहुंच गए। यारी रोड पर एमएनओ सोसाइटी के एक खूबसूरत फ्लैट में वो रिहाइश पजीर था। देखकर यकीन नहीं आया वो कब और कैसे जीने का सलीका सीख गया। मुलाजमत की जिम्मेदारियों के साथ साथ घर के आराम, आसाइश और ज़िबाइश पर उसने पूरी तवज्जो सर्व की थी। उसने बाप और माँ दोनों की ख्वाहिश का पूरा पूरा एहतराम किया था। बाप के लिए कंप्यूटर और नई किताबें, माँ के लिए उसकी बहुत पुरानी ख्वाहिश को उसने पूरा किया था। ड्राइंग रूम में एक बड़ा सा एक्वेरियम, रंग बिरंगी छोटी बड़ी खूबसूरत मछलियाँ उसमें तैर रही थी। माँ, ये आपके लिए। जब मैं ऑफिस रहूँगा तब आप इन मछलियों से बातें कीजिएगा। उसकी मासूमियत पर मैं मुस्कुरा पड़ी। बेटे की मोहब्बत, फरमाबरदारी और उसकी अछूती ख्वाहिशात से दिन और रात पलक झपकते बीतने लगे। उस रोज़ इतवार था। वो सुबह से ही हमारे साथ था। मुझे मछलियों की तरफ मुतवज्जे पाकर खुद ही मेरे करीब आकर बैठ गया। माँ, इन मछलियों से आपकी जान पहचान हुई? कुछ कुछ, मैंने कहा। माँ, ये एंजल फिश है। ओह, मैं हैरान हुई क्योंकि उसमें अपने नाम की तमाम सिफात मौजूद थी। वो दूसरी मछलियों से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। उसकी आदत, मिजाज, यहाँ तक कि तैराकी में भी एक किस्म की सच्चाई, पाकिजगी और भोलपन था। न किसी से लड़ाई न झगड़ा। एंजल फिश के दो जोड़े थे, एक बिल्कुल सियाह और दूसरा काली सफ़ेद धारी वाला। ये वाइट मौली है और ये गोल्डन मौली। लेकिन बेटा, ये गोल्डन मौली जितनी हशाश बशाश, चुस्त और फुर्तीली है, वाइट नहीं, इसकी क्या वजह? हाँ माँ, वो अकेली है ना, उसका मेल मर गया आपके आने से एक रोज़ पहले। ओह, मेरा दिल बुझ सा गया। आपने देखा होगा ये गोल्डन मौली अपने मेल को उसके पास फटकने नहीं देती। अरे, ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। और ये लाल फिश, उसका क्या नाम है? ये तो बहुत ज़बरदस्त रक्स करती है। इस कदर थिरकती है मानो सैकड़ों जल तरंग एक साथ बज उठे हों। ये रेड हेड है। जैसे जैसे बड़ी होती जाएगी इसका सर का हिस्सा बड़ा होता जाएगा, जिस्म से ज़रा बड़ा और रंग गहरा। ये बहुत समझदार होती है, खतरा बहुत जल्दी भांप लेती है। एक्वेरियम की सबसे बड़ी और मुनफरिद मछली सामने से गुजरी। ये फाइटर फिश है। फाइटर फिश? क्या ये लड़ाकी है? लेकिन मैंने इसे लड़ते हुए नहीं देखा। अकेली है ना माँ, इसलिए खुद को शेर समझती है, मैंने कहा। लेकिन वो सब मछली मुस्तकिल उसके पीछे पीछे चलती रहती है, बड़ी खामोश। वो देखो, अभी उसके पीछे पीछे चल रही है। बड़ी मछली घूम कर बार बार उसे पुश करती है, लेकिन वो फिर पीछे चल देती है।

0: श्रोताओं, ये थी आज की रेडियो रिपोर्ट। बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार, मैं हूं गोविंद नामदेव और आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
0: मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम आजाद हिंद।

स्वाधीनता संग्राम स्वराज पर एकाग्र कार्यक्रम आजाद हिंद ज्ञात अज्ञात स्वाधीनता संग्राम सेनानियों रणबांकुरों जननायकों की क्रांति कथाएं और आजादी के यादगार तराने

आजादी की यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्र वंदना के विविध स्वर जन गर्जे। अंग्रेजी राज के दमन, लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति ऑडियो एल्बम का संग्रह जन गर्जे।

0: आजाद हिंद सुनने वाले सभी श्रोताओं को तारीख का प्यार भरा नमस्कार।
1: आजाद हिंद सुनने वाले सभी श्रोताओं को इतिहास का भी प्यार भरा नमस्कार।
0: इतिहास, क्या तुम्हें याद है?
1: क्या?
0: विक्रमपुर के मालखा नगर के बहुविख्यात बसु ठाकुर। बसु ठाकुर के परिवार में मान कुमार का जन्म 28 जून 1920 को हुआ था। उनके पिता का नाम भूपति मोहन बसु ठाकुर और माँ का नाम हेम प्रभा देवी था। उनके 6 भाई और 5 बहनें थी। मान कुमार का घर का नाम श्रीधर था।
1: अरे मुझे अच्छी तरह से याद है तारीख। मान कुमार के पिता वारिचाल में सेटलमेंट कानून को थे। वहीं मान कुमार का बचपन भी था। ढाका के सेंट गैगरी हाई स्कूल में उन्हें 5 वर्ष की उम्र में भर्ती कराया गया, पर खराब स्वास्थ्य के कारण उनकी पढ़ाई में व्यवधान पड़ता रहा।
0: बिल्कुल ठीक, मान कुमार मेधावी छात्र थे। परीक्षा में वे सदैव शीर्ष 4 में एक होते, पर स्वास्थ्य उन्हें परेशान कर रहा था। सो स्वास्थ्य की ओर विशेष ध्यान देते हुए नियमित व्यायाम द्वारा सबल बनना उन्होंने पहला लक्ष्य बनाया। शीघ्र ही उन्होंने अपना लक्ष्य प्राप्त भी कर लिया। सन 1938 में उन्होंने प्रथम श्रेणी में बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ढाका से मैट्रिक की परीक्षा पास की
1: और आईएससी के लिए जगन्नाथ इंटरमीडिएट कॉलेज में भर्ती हुए। और सन 1940 में इसी कॉलेज से 2 अन्य विद्यार्थियों के साथ उन्हें भारतीय उपकुल रक्षी गोलंदाज जत्थे में सहयोग के लिए भेजा गया। परिवार के अन्य सदस्य नहीं चाहते थे कि वे यह काम करें, पर मान कुमार यह काम करते रहे। युद्ध जैसे कठिन कार्य में जुटे रहने के बावजूद उन्होंने 1 के बाद 13 विभागीय परीक्षाएं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। उन्होंने उर्दू शिक्षा की परीक्षा भी प्रथम रहते हुए उत्तीर्ण की।

0: सन 1942 में मान कुमार विमान ध्वंसी विभाग के जिम्मेदार कर्मचारी बन गए थे। उन्हें गोलंदाज दस्ते की ट्रेनिंग के लिए बम्बई भेज दिया गया। बम्बई के कोलाबा स्थित ट्रेनिंग केंद्र में आए परीक्षार्थियों में ब्रिटिश और भारतीय दोनों सैनिकों के जत्थे थे। प्रशिक्षण के अंत में आयोजित परीक्षा में मान कुमार ने भारतीय जत्थे में प्रथम स्थान प्राप्त किया और वे जमादार पद पर नियुक्त कर दिए गए।
1: प्रशिक्षण के दौरान भारतीय जत्थे के बंगाली सैनिकों के अच्छे प्रदर्शन के कारण अंग्रेज सैनिक उनसे ईर्ष्या करने लगे थे और जब तत्कालीन जंगी लॉर्ड अकिनलेक साहब ने चतुर्थ भारतीय उपकूल रक्षी गोलंदाज दस्ते के जमादार मान कुमार और दूसरे बंगाली नौजवानों के साहस और योग्यता की तारीफ की तो इस तारीफ ने अंग्रेज सैनिकों की ईर्ष्या की आग में घी का काम किया।
0: अब तक अंग्रेज सैनिक भारतीय सैनिकों पर रोब जमाते रहते थे, पर अब बंगाली सैनिकों ने अपना सिर उनके सामने बिना झुकाए सैनिकों की तरह व्यवहार करना शुरू कर दिया। अंग्रेज सैनिकों ने इसे चुनौती मानकर उन्हें सबक सिखाने की धमकी तक दे डाली। आखिरकार षड्यंत्र रचा गया। कोचिन में ताड़ के पत्तों से छाए एक घर में आग लगा दी और इस अग्निकांड के बाद कुचक्र रचकर सन 1943 में 18 अप्रैल को ब्रिटिश सम्राट और सरकार के विरुद्ध विद्रोह का आरोप लगा करके 12 बंगाली सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया गया।
1: सुनवाई के दौरान झूठी गवाहियां रची गईं। सन 1946 में केंद्रीय व्यवस्थापिका परिषद में सामरिक विभाग के सेक्रेटरी मैनन साहब ने मान कुमार और उनके सहयोगी बंगाली सैनिकों पर अनेक अपराध कायम किए जिनमें चतुर्थ भारतीय उपकूल रक्षी जत्थे को तोड़ने का षड्यंत्र, इसके लिए अपना आवास जलाना, विस्फोट पदार्थ के गोदाम आग लगाने का प्रयत्न और जत्थे में सांप्रदायिक हंगामा मचाने के आरोप प्रमुख थे।
0: इन अभियोगों के लिए 6 जुलाई से 5 अगस्त के बीच बेंगलोर के सेंट एंड्रयूज चर्च में बैठी फौजी अदालत में गिरफ्तार किए गए तथाकथित विद्रोहियों की सुनवाई हुई। सैनिकों पर विद्रोहियों के विरुद्ध गवाही देने के लिए भारी दबाव डाला गया। जिन्होंने झूठी गवाही देने से इनकार किया उन्हें हथकड़ी पहना करके तंग कोठरी में ठूस दिया गया और भयंकर यातनाएं दी गईं। इस सुनवाई का काला पक्ष यह था कि अपराधियों को अपनी सफाई में बोलने का अवसर ही नहीं दिया गया।
1: अदालत ने मान कुमार बसु ठाकुर उम्र 21 वर्ष सहित 9 व्यक्तियों को मृत्यु दंड की सजा सुनाई, 2 अन्य को द्वीपांतर कारावास और 1 को 7 वर्षों के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। फांसी की सजा पाने वाले बंगाली सैनिक थे मान कुमार बसु ठाकुर, नंद कुमार डे, दुर्गादास राय चौधरी, निरंजन बरुआ, चितरंजन मुखोपाध्याय, फणिभूषण चक्रवर्ती, सुनील कुमार मुखोपाध्याय, कालीपद आईच और नरेंद्र मोहन मुखोपाध्याय। इन सभी युवकों की उम्र 21 से 25 वर्ष के बीच थी।
0: 24 सितंबर को इन कैदियों को फांसी देने के लिए बेंगलोर की जेल में लाया गया। ये सभी काली पोशाकों में और कड़े पहरे में लाए गए थे। बेंगलोर जेल में मौजूद कैदियों को जल्दी ही पता चल गया कि ये सभी फांसी की सजा के लिए लाए गए हैं। जेल में नजरबंद कैदी इस समाचार से अत्यंत उत्तेजित हो उठे। उन्होंने बेंगलोर जेल में इन लोगों को फांसी देने का पुरजोर विरोध करते हुए राज्य सरकार को सम्मिलित रूप से ज्ञापन दिया। आखिर ज्ञापन को उचित मानकर राज्य सरकार ने ब्रिटिश सरकार से आपत्ति प्रकट की और फांसी का स्थान बेंगलोर जेल की जगह मद्रास की जेल कर दिया गया।

0: बैंगलोर जेल से मद्रास जाते जाते दुर्गादास राय चौधरी ने अपने रक्त से वंदे मातरम लिखा एक पत्र बैंगलोर के कैदियों के पास पहुंचा दिया। इस पत्र में लिखा था, प्रिय बंधुगण, सम्राट के विरुद्ध विद्रोह के अपराध में हम 9 लोगों को मृत्यु दंड दिया गया। देश की स्वाधीनता के लिए हम 9 लोग कुर्बानी दे रहे हैं। हम सभी बंगाली नवयुवक हैं। बंधुओं, अब समय आ गया है कि हम हिंदू मुसलमान सभी मिलकर देश की आज़ादी के लिए काम करें। देश की आज़ादी के महायज्ञ में आपकी सेवा और त्याग हमें सांत्वना देता रहेगा। आइए सर उठाइए और मातृभूमि की आज़ादी के लिए संघर्ष करिए। विदेशी शक्ति के विरुद्ध कठोर प्रहार कीजिए। हमारी शुभ इच्छा आपके साथ है। आप अपने प्रण में सफल हों। हमारा मधुर प्यार स्वीकारें। पत्र के अंत में रक्त से हस्ताक्षर किए गए थे, दुर्गादास।
1: फौज के अधिकारियों ने भरसक प्रयत्न किया था कि मान कुमार सरकारी गवाह बन जाए और अपने साथियों के विरुद्ध झूठी गवाही देकर के सिद्ध कर दे कि उन्होंने क्रांति की योजना बनाई थी, पर सत्यवादी और देश प्रेमी मान कुमार मृत्यु दंड का संकट जानते हुए भी झूठी गवाही देने और अपने साथियों के खिलाफत को राजी नहीं हुए। मान कुमार माँ के भक्त थे और सन्यासी बाबा के अनुयायी थे। अभियोग दायर होने के बाद उन्होंने अपनी माँ को पत्र लिखा, माँ मैं बहुत मुश्किल में पड़ गया हूँ। सन्यासी बाबा और माँ को स्मरण करके सभी काम करने वाले कैसे संकट में पड़ सकते हैं? पर ऐसा हुआ है, पर क्यों? मैं तो सदा सन्यासी बाबा और तुम्हारा स्मरण करके ही कुछ करता हूँ। ऐसे अपराध तो मैंने आज तक नहीं किए।
0: 25 सितंबर 1943 को मद्रास किले में 2-2 की संख्या में इन बंगाली युवकों को फांसी दी गई। फांसी का फंदा गले में डालने के पहले वे एक दूसरे से गले मिलते और राष्ट्रीय गीत गाते हुए फांसी के तख्ते पर खड़े हो जाते। मान कुमार की फांसी के बाद उनके एक साथी ढाका पुलिस के एक बड़े अफसर जनाब अब्दुल उदूद ने कहा, सत्य के लिए मान कुमार ने अपनी जिंदगी न्यौछावर कर दी। उनका यह बलिदान निष्फल नहीं जाएगा। जब तक सत्य कायम रहेगा, मान कुमार का नाम अमर रहेगा।
1: फांसी चढ़ने से पहले तक वे गर्व से गाते थे, सत्य की रक्षा के लिए प्राण देकर मान कुमार ने अपने देश की मान मर्यादा की रक्षा की। वे एक सार्थक व्यक्तित्व के रूप में सदा याद किए जाएंगे।

0: जिंदा फिर से हो रहा।
1: जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आजाद हिंद, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय की, और गीत लिए गए थे स्वराज संस्थान संचालनालय द्वारा जारी ऑडियो एल्बम जन गर्जे से।
3: और अब दीजिए हमें इजाजत, कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए अंक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।

0: स्वाधीनता संग्राम स्वराज पर एकाग्र कार्यक्रम आजाद हिंद ज्ञात अज्ञात स्वाधीनता संग्राम सेनानियों रणबांकुरों जननायकों की क्रांति कथाएं और आजादी के यादगार तराने।
1: श्रोताओं, हमारी आजाद जमी आजाद आसमां की दास्तां, हमारे तन और हमारे मन की स्वतंत्रता की कहानी अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आजाद हिंद में।

0: नमस्कार, मैं हूं अभिजीत भट्टाचार्य और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर। देश को आजादी दिलाने वाले हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मेरा शत शत नमन है, जिन्होंने भारत माता को अंग्रेजों के चंगुल से आजाद कराया। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं कार्यक्रम शब्दों के शिल्पकार। जी हाँ, इस कार्यक्रम के लिए आपको इंतजार करना है बस कुछ पलों का। एक छोटे से अंतराल के बाद हम हाजिर होते हैं ये कार्यक्रम लेकर।

0: नमस्कार, मैं हूँ हर्षदीप कौर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। हमें नाज है देश के उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। भारत माता के सभी महान सच्चे सपूतों को हर्षदीप का शत शत नमन।
1: जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी।
0: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूं आपका रेडियो मित्र संदीप शर्मा और मेरे साथ हैं
3: संयुक्ता बैनर्जी।
2: बहुत बहुत स्वागत है आप सभी श्रोताओं का हमारे इस कार्यक्रम शब्दों के शिल्पकार, जिसमें आज हम बात करेंगे आदि विद्रोही धर्मवीर भारती की। कोई ऐसी कथा कहो साधो जो युग युग का इतिहास रचे, जो धर्म और वीर की गाथा हो और भरत भारती गुणगान करे।
3: अभी आपने जो कविता की पंक्तियां सुनी उनमें उपयोग किए गए कुछ विशेष शब्दों से आपको आभास हो गया होगा कि आज इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी कथाकार, नाटककार, कवि, समीक्षक, निबंधकार, पत्रकार और पद्मश्री और अनेक सम्माननीय पुरस्कारों से नवाजे गए लेखक धर्मवीर भारती जी के विषय में और उनके व्यक्तित्व की पूरक पत्रिका धर्मयुग के बारे में।
2: श्रोताओं, धर्मवीर भारती स्वयं में एक संस्थान का पर्याय है जिनके हस्ताक्षर एक सदी के कपोल पर सुरक्षित हैं और आने वाली सदियों तक रहेंगे। भारती जी के लेखन का दायरा इतना विस्तृत है, उनकी लेखन प्रतिभा का स्वरूप इतना व्यापक है कि किसी एक पहलू पर चर्चा करने के लिए भी शब्दों को समेटना सरल नहीं है। इससे पहले कि हम उनकी योगदान, उनके कार्यक्षेत्र और साहित्य में सुरक्षित उनके अनमोल योगदान के विषय में बात करें, थोड़ी बात उस दौर की, उन परिस्थितियों की, उन तेजी से बदलते हालात की जब थकी मांदी एक सदी अपनी उम्र की आखिरी सीढ़ियां चढ़ते हुए लड़खड़ा रही थी
3: और एक नई सदी का सूरज अपनी चमक दमक, अपने पूरे आबोताब के साथ क्षितिज पर छा जाने के लिए बेचैन होकर तेज कदमों से प्रगति की, आजादी की, नवीनता की सीढ़ियां चढ़ने को बेताब था। जरा सोचिए पीछे मुड़कर उस दौर के बारे में जब आज की तरह न तो पत्र पत्रिकाओं का इतना रंगीन बाजार था, न टेलीविजन, न कोई वेब सीरीज, न मोबाइल, न प्रिंटिंग मशीनें, न जीने के लिए सुख साधन, अर्थात मध्य वर्ग के लिए गरीबी का दौर था। आम लोगों के लिए अच्छे शिक्षण संस्थानों की पहुंच दुर्लभ थी। संक्षेप में पूरा देश ही सीमित संसाधनों के साथ अपनी लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था से संघर्षरत था।
2: हम आपको बता दें, धर्मवीर भारती के पूर्वज शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश के खुदागंज कस्बे के जमींदार थे। धर्मवीर भारती का जन्म इलाहाबाद में 1926 25 दिसंबर को हुआ। वो बचपन से ही बहुत संवेदनशील थे। घर की दयनीय स्थिति और पिता की बीमारी ने उनकी संवेदनशीलता को इस सीमा तक बढ़ा दिया कि वो बचपन में ही काम तलाशने लगे थे, कुछ कमाना चाहते थे। उन दिनों वो अपना नाम धर्मवीर वर्मा लिखते थे। स्कूल में शिक्षा के दौरान उन्होंने भारती लगाना शुरू किया। जब वो 8 वर्ष के थे तो उनके पिता का देहांत हो गया और माता का देहांत भी होने के कारण वो बहुत टूट गए।
3: ऐसे धर्मवीर भारती बचपन से लेखक थे, कुशाग्र बुद्धि के थे, तो रामायण महाभारत उनके प्रिय ग्रंथ थे। किसी प्रकार स्कूली शिक्षा के बाद जब बीए में आए तो ट्यूशन पढ़ाकर गुजर बसर करते और साथ में लेखन भी शुरू कर दिया। शुरुआत पत्रकारिता से की। बीए करने के बाद अपने पहले गुरु राम कुमार वर्मा की छत्रछाया में पत्रकारिता की बारीकियां सीखी। इलाहाबाद में ही अभ्युदय दैनिक पत्र का संपादन का कार्य भी किया। भारती जी रामायण, महाभारत और गीता जैसी कालजयी रचनाओं से बहुत प्रभावित थे, तो मार्क्स से भी, लेकिन मार्क्स की अधीरता उन्हें पसंद नहीं थी। वे अंग्रेजी में शैले, कीट्स और ऑस्कर वाइल्ड से बहुत प्रभावित थे।
2: धर्मवीर भारती सृजन को महत्व देते थे। उनका मानना था कि मनुष्य तभी मनुष्य है जब उसमें सृजन की ललक हो। कहते हैं, भूख खुनेजी गरीबी हो मगर आदमी की सृजन शक्ति सबसे ऊपर। उसकी ताकत है। इसलिए अति संघर्षशील जीवन और जीवन में उतार चढ़ाव उन्हें कभी डिगा नहीं पाए। कहते हैं, क्या हुआ दुनिया अगर मरघट बनी, अभी मेरी आखिरी आवाज बाकी है। हो चुकी हैवानियत की इंतहा, आदमियत का अभी आगाज बाकी है। लो, तुम्हें फिर से नया विश्वास देता हूँ, नया इतिहास देता हूँ।
3: धर्मवीर भारती को यात्राएं करने का शौक, टहलने और लोगों से बातें करना पसंद था, और पसंद था किसी की व्यथा सुनकर उसकी मदद करना। इसी आदत के कारण उन्होंने वास्तव में एक इतिहास रचा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने उन्हें संबल दिया। उनकी सादी सरल भाषा, सहजता, आत्मीयता उनके व्यक्तित्व के सुनहरे गुण थे, जिसको तराशने सवारने में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के साहित्यिक माहौल और वहां के ज्ञानी एवं समर्पित शिक्षकों और पठन पाठन के शौकीन सहपाठियों और दोस्तों ने सहयोग किया। उन्होंने लेखन शुरू किया और साथ ही डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के अधीन सिद्ध साहित्य में PhD भी प्रारंभ की।
2: जिंदगी ने करवट ली। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में लेक्चरर के रूप में धर्मवीर भारती ने नौकरी शुरू की। इसी दौरान अपनी लेखन प्रतिभा के परिणाम स्वरूप कहानियां, नाटक और निबंध लिखने लगे। ये सब पसंद किए जाने लगे और वो प्रख्यात होने लगे। उन्हें प्रेम की सौगात भी मिली। उन्हें लगा कि प्रेम ने उन्हें वो खुशी का खजाना दिया जिसकी उन्हें तलाश थी, और ललक भी। लेकिन इस पहले असफल प्रेम ने उन्हें अंदर तक हिला दिया। इस त्रासदी का जिक्र उन्होंने कहीं नहीं किया और ना ही किसी झूठी तसल्ली के सहारे तलाश किए। दिल टूटने नहीं दिया और साहित्यिक गतिविधियों में और अधिक रुचि लेने लगे। लेखन को कर्मस्थली बनाया और कविताओं से ख्याति प्राप्त करने के साथ महाभारत युद्ध के अंतिम दिन पर केंद्रित उनका काव्य नाटक अंधा युग उनकी कालजयी रचना बनी। अब धर्मवीर भारती ख्याति के शिखर पर पहुंच चुके थे। वो आदि विद्रोही के नाम से प्रसिद्ध होने लगे।
3: श्रोताओं, जैसा कि हमने पहले इस संदर्भ में बात की कि देश सामाजिक और आर्थिक मंच पर जबरदस्त बदलाव की तरफ बढ़ रहा था। मध्यम वर्गीय समाज में पठन पाठन की प्रवृत्ति बढ़ रही थी, मगर साधन सीमित थे। ऐसे वातावरण में खुशवंत सिंह जी ने बंबई में कुर्तुल एन हैदर जैसी महान लेखिका के साथ टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के सौजन्य से एक अंग्रेजी पत्रिका इलस्ट्रेटेड वीकली का प्रकाशन शुरू किया। लेखक अपना योगदान दे रहे थे, लेकिन पाठक वर्ग सीमित था। वीकली संभ्रांत पाठकों में तो लोकप्रिय थी, मगर मध्यम वर्ग को उनकी भाषा शैली में उनकी रुचि की पत्रिका की आवश्यकता थी। भारती जी की ख्याति चरम पर थी, इसीलिए इलस्ट्रेटेड वीकली के साथ साथ टाइम्स ग्रुप ने हिंदी की साप्ताहिक पत्रिका धर्म युग का प्रकाशन शुरू किया और धर्मवीर भारती को पत्रिका के संपादक के रूप में चयनित किया। भारती जी के लिए धर्मयुग एक मील का पत्थर बनी और मध्यवर्गीय और हिंदी भाषी पाठकों के लिए एक मशाल।
2: श्रोताओं, धर्मयुग के रंग रूप को संवारने, पठन सामग्री का चयन करने, गंभीर विषयों पर सामाजिक स्तर पर हर वर्ग द्वारा पढ़ने योग्य बनाने के लिए धर्मवीर भारती ने अथक मेहनत की। एक स्तरीय साप्ताहिक पत्रिका ने हर उम्र, हर वर्ग, हर परिवार के लिए सामग्री जुटाकर छापना बहुत कठिन काम था। धर्मयुग में शुरू से ही मृणाल पांडे एवं राजेश जोशी जैसे लोगों की रचनाएं प्रकाशित हुईं। अब आप पत्रिका के स्तर का अंदाजा लगा सकते हैं। धर्मयुग के स्वरूप को भारती जी ने इस प्रकार निखारा कि उसमें साहित्य के अतिरिक्त विज्ञान कथा, कॉमिक्स और वो भी रंगीन चित्रों से सुसज्जित, यात्रा वृतांत, डब्बू जी का कार्टून कॉलम, फैशन की दुनिया से लेकर नितांत घरेलू कलेवर के साथ साथ ही पत्रिका हर घर की आवश्यक सामग्री का हिस्सा बन गई।
3: सप्ताहांत धर्मयुग का इंतजार परिवार के हर सदस्य को रहता था। उसके कवर पेज का तो कहना ही क्या था, वो बोलता कवर पेज होता था। ये मानिए, अगर आपको उस दौर का कोई पाठक मिल जाए तो वो जरूर बताएगा कि कैसे एक बार दिवाली के आसपास प्रकाशित इस पत्रिका के कवर पेज पर लक्ष्मी जी की इतनी सुंदर और जीवंत फोटो थी जो लोगों ने फ्रेम करवा के अपने घरों में अब तक संजो कर रखी है। और इसी प्रकार कई घरों में धर्मयुग की सालाना प्रतियां, वो भी जिल्दों में, सुरक्षित अब भी देखने को मिल जाएंगी। सोचिए उन दिनों भी धर्मयुग की लगभग 4-5 लाख प्रतियों का प्रकाशन आम बात थी, मगर महंगी होती प्रिंटिंग ने इसके प्रकाशन के सामने आर्थिक संकट पैदा कर दिया।
2: भारती जी पत्रिका का स्तर गिराना नहीं चाहते थे, मुनाफा था नहीं, अतः उन्होंने दुखी मन से पत्रिका के प्रकाशन से स्वयं को अलग कर लिया। इस प्रकार धर्मयुग के साथ भारती जी का 1960 से शुरू किया गया सफर समाप्त हो गया और इस पत्रिका से जुड़े और लगातार अपने साहित्यिक योगदान के लिए प्रसिद्ध मोहन राकेश, शिवानी, कमलेश्वर, रविंद्र कालिया और अनेक प्रसिद्ध लेखक बहुत प्रयासों के बाद भी उसे आर्थिक संकट से नहीं उबार पाए। धर्मवीर भारती का सृजन कार्य अपने चरम पर था। अपने समय के सबसे प्रतिष्ठित प्रकाशन की जिम्मेदारी से अलग होना, उसे बंद होते देखना एक दुखद अनुभव था, परंतु इसी काल में लिखी गई अपनी कालजयी रचनाओं के कारण वो एक महान कहानीकार, कवि और नाटककार के रूप में स्वयं को स्थापित कर सके।
3: गुनाहों का देवता, अंधा युग, सूरज का सातवा घोड़ा धर्मवीर भारती के महान लेखक होने का एक दस्तावेजी प्रमाण बन गए। इन्हीं दिनों एक फील्ड रिपोर्टर के रूप में भारत पाक के उस युद्ध की रिपोर्टिंग की जिसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश बना। भारती जी का व्यक्तिगत जीवन बिना किसी उथल पुथल सीधा सपाट गुजर रहा था कि 1954 में उनके जीवन में साथी के रूप में कांता भारती का पदार्पण हुआ। एक पुत्री परमिता के पिता भी बने, लेकिन ये शादी लंबे समय तक नहीं चल सकी और बाद में उन्होंने पुष्पा भारती से विवाह किया और एक बेटे किंशुक और बेटी प्रज्ञा के पिता होने का गौरव प्राप्त किया।
2: बहुमुखी प्रतिभा के धनी धर्मवीर भारती कविता में साहित्यिक रंग ज्यादा खोजते थे। फिराक गोरखपुरी, जो स्वयं एक महान शायर थे, लेखक थे, उन्होंने धर्मवीर भारती की लोकप्रियता का आकलन करके रोमांटिक कविताएं लिखने के लिए प्रोत्साहित किया, मगर वो कहां समझौता करना चाहते थे। एक तो उन्हें साहित्यकारों द्वारा बनाया गया कोई संगठन पसंद नहीं था, दूसरा कविता में रोमांस उनको अपने नजरिए से पसंद था। कविता अर्थात जो दिल को तसल्ली दे और रूह को तड़पा दे, जो दूसरे के दर्द को आत्मसात करने की शक्ति दे। वो एक जीवट व्यक्ति ही नहीं, एक जीवट कवि, लेखक और नाटककार भी थे। जो भी लिखते दिल की गहराइयों से लिखते और रूह के सारे रंगों से सजाते। डूब कर लिखते, दुखांत लिखते, तो उसे अपने आंसुओं और दिल की धड़कनों से इतना जीवंत बना देते कि पाठक को अपनी व्यक्तिगत व्यथा के चित्रण का आभास होता। सहजता, सरलता, आत्मीयता और सजीवता उनके लेखन को अलग कलेवर के रूप में प्रस्तुत करते।
3: धर्मवीर भारती को 1972 में पद्मश्री और संगीत नाटक अकादमी द्वारा सर्वश्रेष्ठ नाटककार होने का भारत भारती पुरस्कार प्राप्त हुआ। व्यास सम्मान और महाराष्ट्र गौरव सम्मान से भी आप नवाजे गए। देश विदेश और स्थानीय संस्थाओं से अनेक पुरस्कारों से उनका इतना सम्मान हुआ कि उसकी गाथा यहाँ आपको सुनाना संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि महत्वपूर्ण ये है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पीएचडी पूरी करने के बाद जब प्राध्यापक नियुक्त हुए तो बहुत कम समय में उनकी मशहूर दो कृतियां नदी प्यासी थी, एकांकी नाटक संग्रह, और प्रख्यात कृति चांद और टूटे हुए लोग प्रकाशित हुई। मुर्दा गांव तो इसी दौरान कनुप्रिया और देशांतर के प्रकाशन से थोड़ा पहले बाजार में आ चुके थे। इसी तारतम्य में कविता संग्रह में ठंडा लोहा, सात गीत वर्ष, आघन और अनेक कविता संग्रह छप चुके थे। इन सब कृतियों में कनुप्रिया, जो एक प्रबंध काव्य है, बहुत प्रसिद्ध हुआ, बहुत सराहा गया।
2: श्रोताओं, धर्मवीर भारती की दो कृतियां गुनाहों का देवता और सूरज का सातवां घोड़ा हर वर्ग, हर उम्र के लोगों की पहली पसंद थी और अब भी हैं। युवा वर्ग में गुनाहों का देवता की लोकप्रियता सुधा और चंदर के प्रेम की एक दुखांत प्रेम कथा होने के कारण बहुत सराही गई। इसके अतिरिक्त उनकी ना भूलने वाली कृतियों में 1969 में गली का आखिरी मकान कला प्रियता का अद्भुत नमूना है। इसी प्रकार उनकी बेहद प्रसिद्ध कृति अंधा युग का जिक्र इसलिए आवश्यक है कि अंधा युग देश की स्वतंत्रता के बाद आई मूल्यहीनता के प्रति चिंता और पाश्चात्य मूल्यों का आम जनमानस की मानसिकता के संतुलन में जीवंत चित्रण है। ये वो नाटक था जिसने हिंदी रंगमंच पर धूम मचा दी थी और धर्मवीर भारती को साहित्य जगत में उच्चतम स्थान प्राप्त करने के अवसर प्रदान कर दिए थे।
3: जैसा कि पहले भी संदर्भ आया है कि भारती जी पाश्चात्य साहित्य के और रूसी साहित्य के प्रति रुचि रखते थे। गोर्की, डिकेंस, बाल्जक, विक्टर ह्यूगो, शैली और कीट्स उनके प्रिय लेखक थे। इन लेखकों की कृतियों के उनके द्वारा किए गए अनुवाद बहुत सराहे गए। उनकी कृतियों पर, कविताओं पर एज़रा पाउंड, एलिजाबेथ जेनिंग और ऑडन का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। ऑस्कर वाइल्ड की कहानियों का उनके द्वारा किया गया अनुवाद भी हिंदी साहित्य में विशेष स्थान रखता है। धर्मवीर भारती जी की असंख्य कृतियों में संगमरमर की एक रात, सृष्टि का आखिरी आदमी, ठेले पर हिमालय और पश्यंती मध्यम वर्गीय पाठकों के लिए सहजता से उपलब्ध साहित्यिक खजाने थे। एक ऐसा पाठक वर्ग दीवानगी की सीमा तक उनके द्वारा लिखित नाटक, कविताओं, निबंध, वृत्तांत आदि को पसंद करने वाला बन गया कि सामाजिक और आर्थिक जीवन में उसका स्पष्ट प्रभाव दिखाई देने लगा। आम जनमानस की सोच, दृष्टिकोण और मानसिकता पर सकारात्मक प्रभाव ऐसा कोई साहित्यकार नहीं डाल पाया था जैसा सरल भाषा में उपलब्ध उनकी साहित्यिक धरोहर ने किया। उनकी कहानियों में, कविताओं में पाठक कहीं अपने मन की भावनाओं की प्रतिछाया देख पाते हैं।
2: बेहद जीवट और घुमक्कड़ स्वभाव के धर्मवीर भारती का व्यक्तित्व, उनकी सादगी और चेहरे पर ज्ञान के तेज के कारण सहसा ही आम आदमी को अपनी ओर आकर्षित कर लेता। वो राह चलते साधारण से साधारण व्यक्ति से बहुत आत्मीयता से बात करते। महान साहित्यकार होने का कोई आडंबर उन्हें छू तक नहीं पाया था। यात्राएं उन्हें बहुत पसंद थी। उन्होंने देश विदेश की यात्राएं की। सन 1961 में कॉमनवेल्थ रिलेशन कमेटी के निमंत्रण पर वो इंग्लैंड और अन्य यूरोपीय देशों की यात्रा पर गए। 1962 में जर्मनी और भारतीय दूतावास के अतिथि के रूप में इंडोनेशिया और थाईलैंड की यात्रा की। मॉरिशस में वहां की जनता के बीच दोस्ताना अंदाज में उनसे बातचीत की। संवाद के द्वारा उनकी समस्याओं को लगभग भारत की समस्याओं के ही समान जानकर उनके निराकरण पर बात की।
3: अनेक विदेश यात्राओं के बाद अपनी जीवटता के बल पर बीमार होते हुए भी बीमारी का कोई लक्षण चेहरे पर दिखाई नहीं देता था। जब वो बहुत बीमार थे तो 3 हार्ट अटैक आने के बाद भी स्वयं को सामान्य रखने की कोशिश कर रहे थे, मगर जिंदगी हथेलियों से फिसल रही थी। और इस प्रकार 1990 में धर्म युग की ये मशाल बुझ गई। मगर धर्मवीर भारती को, जो स्वयं को आदि विद्रोही कहते थे, उन्हें हिंदी साहित्य के लेखक के सीमित दायरे से निकालकर एक महान साहित्यकार के रूप में संसार के साहित्यिक पटल पर स्थापित कर गई।
2: उन्हें न कोई भूल सकता है न भूलेगा। वो जिंदा है हर घर में, जहां धर्म युग की प्रतियां एक बेशकीमती खजाने की तरह सुरक्षित हैं, बिल्कुल उसी प्रकार उनकी यादें सुरक्षित हैं। वो जिंदा हैं अपनी कृतियों में। वो आदि विद्रोही थे जो कभी नहीं मर सकते। श्रोताओं, अजीब इत्तेफाक है कि वो जिस पत्रिका से जुड़े उसका नाम धर्मयुग था। उनकी लिखी जो सबसे अधिक कृति प्रसिद्ध हुई उसका नाम अंधायुग था। वाकई वो एक युग प्रवर्तक थे। वो एक ऐसे लेखक थे जिनका यशोगान युगों युगों तक तो किया जाता रहेगा। हम आज उनके जाने के इतने साल बाद भी उन्हें इस तरह याद कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे शब्दों के शिल्पकार कभी कहीं नहीं जाते। अपनी कृतियों के जरिए हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहते हैं। तो शब्दों के शिल्पकार में आज समय यहीं समाप्त होता है। इजाजत दीजिए मुझे, यानी अपने रेडियो मित्र संदीप शर्मा,
3: और मुझे संयुक्ता बैनर्जी को।
2: तो श्रोताओं, अगली बार मिलेंगे फिर किसी और शब्द शिल्पी के साथ, बहुत सारी जानकारियों के साथ। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि इस कार्यक्रम की परिकल्पना और निर्देशन का श्रेय जाता है सुश्री अदिति गौड़ को। आलेख था डॉक्टर शमा न्याजी का। इस कार्यक्रम का ध्वनि अंकन और ध्वनि संपादन किया अमित कुंदानी ने। तो मुझे और संयुक्ता को दीजिए इजाजत।
3: नमस्कार।
2: सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद।
3: देश का चैनल देश के लिए।

शब्दों के शिल्पकार। अभी आप ये कार्यक्रम सुन रहे थे रेडियो आजाद हिंद से, देश का चैनल देश के लिए। हमारी फ्रिक्वेंसी 90.8 मेगाहर्ट्ज़। बने रहिए हमारे साथ, आगे बहुत कुछ है खास आपके लिए।

आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8, देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। हम सलाम करते हैं उन देश के जवानों को जो सरहदों पर दिन रात तैनात होकर हमारी और हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, और हम उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को नमन करना चाहते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर हमें ये आज़ादी दिलाई। रेडियो आज़ाद हिंद देश का पहला और एकमात्र ऐसा रेडियो चैनल है जो वीर जवानों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की अमर गाथाओं को समर्पित है। तो सुनते रहिए रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। नमस्कार।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद पर। मैं हूँ कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। रेडियो आजाद हिंद के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
1: ये मेरा इंडिया।
0: देश के अमर शहीदों को मेरा नमन है जिन्होंने आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। जय हिंद। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

इस वक्त आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ, सुन रहे हैं देश का चैनल देश के लिए। हमारी फ्रिक्वेंसी 90.8 मेगाहर्ट्ज। श्रोताओं, अब से थोड़ी ही देर बाद आप सुनेंगे धारावाहिक युग प्रवर्तक विवेकानंद।

स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और उनके विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: धर्म महासभा में कामयाबी के पश्चात स्वामी जी शिकागो ही नहीं बल्कि पूरे देश में परिचित हो गए। उन्हें दूर दराज के क्षेत्रों से भी व्याख्यान देने के निमंत्रण मिलने लगे। महासभा के बाद स्वामी जी शिकागो में कितने दिन रहे या कहां कहां व्याख्यान दिया इसका ठीक ठीक पता नहीं चलता, फिर भी अनुमान है कि वे कम से कम 2 महीने वहां रहे। व्याख्यान देने के साथ ही साथ वे अमरीकी समाज व्यवस्था का अध्ययन भी करते थे और उनकी तरक्की के कारण भी पता करते थे ताकि उनमें से अच्छी चीजें भारत में चलाई जा सके। महासभा के एक वर्ष बाद सितंबर 1894 के शिकागो इंटर ओशन नामक पत्रिका में स्वामी जी के बारे में प्रकाशित एक लेख में ऐसी ही बातें थी।
1: विराट महासभा के बाद भी स्वामी विवेकानंद कुछ महीनों शिकागो में ही रह गए। जिस प्रकार वे अपने देशवासियों की नैतिकता एवं आध्यात्मिकता के बारे में अकाट प्रमाण देश में लाए थे, उसी प्रकार वहां लौटकर भी अमेरिका के बारे में अकाट युक्तियां प्रस्तुत कर सके। इस उद्देश्य से वे विद्याभास तथा सभ्यता की भौतिक उन्नति विषय अनेक तत्वों की खोज में लगे हुए थे।
2: उन दिनों वे अपनी योजनाओं के लिए क्यों प्रत्यक्ष रूप से धन नहीं मांगते थे, इसका एक कारण सुशील लूसी मनरो के लेख में मिलता है। वे कवित्री हैरियट मनरो की बहन तथा खुद भी अच्छी लेखिका थी। उन्होंने लिखा है,
3: विवेकानंद अब भी इस नगर में हैं। उनका इस देश में आने का मूल उद्देश्य हिंदुओं के बीच गए उद्योग स्थापित करने के लिए अमेरिका वासियों को प्रेरित करना था, परंतु फिलहाल उन्होंने उसे छोड़ दिया क्योंकि उन्होंने देखा कि अमेरिका वासी जगत में सर्वाधिक परोपकारी लोग हैं। अतः हर कोई अपनी योजना लेकर यहाँ सहायता पाने चला आता है। उनकी सुसंस्कृत रुचि, वाग्मिता तथा आकर्षक व्यक्तित्व ने हमें हिंदू सभ्यता के बारे में एक नई धारणा प्रदान की है।
0: स्वामी जी के व्याख्यानों का दौर चलता रहा। श्रोतागण उनके ज्ञान से मुग्ध थे। उनका व्याख्यान विभिन्न विषयों और विभिन्न स्तरों पर होता था। कभी भारतीयों की पर धर्म श्रद्धा, तो कभी अद्वैतवाद, कभी पुनर्जन्म, तो कभी भारतीय नारी। हर व्याख्यान के लिए उन्हें धन मिल रहा था। $50 से $100 उन्हें मिल जाया करते थे।
2: शिकागो में रहते समय स्वामी जी के जीवन में कई घटनाएं घटित हुई थी। स्वामी जी के शिष्य श्री शरद चंद्र चक्रवर्ती पत्र में एक घटना का उल्लेख करते हैं।
4: स्वामी जी ने एक बार मुझे बताया कि एक दिन चांदनी रात में जब वे मिशिगन झील के किनारे बैठे हुए थे, तो उनका मन ब्रह्म में लीन होने लगा। अचानक ही उन्हें श्री राम कृष्ण का दर्शन हुआ और स्मरण हो आया कि वे एक विशेष कार्य हेतु जगत में अवतीर्ण हुए हैं। इस विचार के उठते ही उनका मन नीचे उतर आया और अपने जीवन वृत्त की ओर धावित होने लगा। ये घटना मैंने अपनी दैनंदिनी में लिख रखी थी, पर उसे प्रकट करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई, केवल आपको ही बता रहा हूं।
0: शिकागो में जब स्वामी जी श्री हेल के मकान में रहते थे, तो रोज ही पास वाले लिंकन पार्क में घूमने जाते थे। एक महिला रोज अपनी 6 वर्ष की बेटी के साथ उस पार्क में से होकर के गुजरती थी। बच्ची के साथ उन्हें बाजार में तकलीफ होती होगी और स्वामी जी रोज वहां ही बैठे मिलते थे, इसलिए एक दिन वह महिला स्वामी जी के पास आई और बोली,
5: सुनिए
6: जी, कहिए।
5: आप यहाँ रोज ही बैठे रहते हैं, यहीं पास में कहीं रहते हैं क्या?
6: जी हाँ, मैं उस लाल वाले घर में रहता हूँ।
5: पर आप तो विदेशी दिखते हैं।
6: जी हाँ, मैं भारतीय हूँ, यहाँ मिस्टर हेल के घर में मेहमान हूँ।
5: अच्छा, पर आपका पहनावा कुछ अलग सा है।
6: मैं सन्यासी हूँ, भारत में सन्यासी इसी रंग का चोगा पहनते हैं।
5: यहाँ घूमने आए हैं?
6: नहीं नहीं नहीं, मैं धर्म महासभा में भाग लेने आया हूँ। ये आपकी बेटी है, बड़ी प्यारी बच्ची है।
5: इसी बच्ची के लिए आपके पास आई हूँ, क्या आप इसे थोड़ी देर के लिए अपने पास रख पाएंगे? मैं अभी बाजार से होकर आती हूँ।
6: हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं इसे संभालता हूँ, आप निश्चिंत होकर जाइए।
2: ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। दोनों की गहरी दोस्ती हो गई। दोनों उसी पार्क में खेलते, स्वामी जी उसे कहानी सुनाते।
0: कई वर्ष बाद बच्ची बड़ी हो गई। लगभग 10 वर्ष बाद बच्ची ने किसी पत्रिका में स्वामी जी के चित्र को देख करके पहचान ली। जिसने स्वामी जी को एक बार देख लिया उसके लिए 9-10 वर्ष बाद भी उन्हें भूल पाना कठिन था। बाद में बालिका विवाहित होकर के शिकागो से दूर फिलाडेल्फिया में बस गई और कहते हैं कि उसने रामकृष्ण संघ के एक सन्यासी से दीक्षा ग्रहण की थी।
2: स्वामी जी की आध्यात्मिक शक्ति की बात दूर दूर तक फैले जाने के फलस्वरूप बहुत सारे लोग साक्षात्कार अथवा आशीर्वाद लेने आया करते थे। सुप्रसिद्ध फ्रांसीसी गायिका मदाम एम्मा काल्वे भी इसी प्रकार उनके पास आकर लाभान्वित हुई थी। मदाम काल्वे की आत्मकथा से इसका पता चलता है और काल्वे से सुनकर मदाम पॉल वर्डियर ने अपनी डायरी में इसे दर्ज किया।
7: सन 1894 के मार्च में काल्वे जब मेट्रोपॉलिन ओपेरा कंपनी के साथ शिकागो आईं, तब वे अपनी कीर्ति के सर्वोच्च शिखर पर आरूढ़ थी, परंतु हठी तथा भोग परायण स्वभाव की होने के कारण उनके जीवन में शांति का अभाव था। इन्हीं दिनों शिकागो में उनकी इकलौती कन्या आग में जलकर मर गई थी। काल्वे के मन में तब आत्महत्या कर लेने का विचार आने लगा और एक मित्र द्वारा स्वामी जी के पास ले जाने का प्रस्ताव भी उन्होंने प्रारंभ में अस्वीकार कर दिया। चार बार आत्महत्या के प्रयास में विफल होने के बाद पांचवी बार वे मानो दीप जलित के समान अपनी उस सहेली के घर पहुंच गए जहां स्वामी जी ठहरे थे। बटलर ने उन्हें बैठक खाने में ले जाकर बिठा दिया। शुद्ध बुद्ध खोकर काल्वे वहां एक कुर्सी पर बैठी हुई थी कि बगल के कमरे में से किसी ने उन्हें पुकारा,
6: भीतर आओ बेटी, डरने की कोई बात नहीं।
7: स्वचलित यंत्र के समान काल्वे उस कमरे में गईं। वो स्वामी जी का अध्ययन कक्ष था। वे एक बड़ी मेज के दूसरी ओर बैठे थे।
3: अंदर जाने के पूर्व मुझसे कहा गया था कि उनके पूछने के पहले मैं कुछ भी न कहूं। अतः कमरे में पहुंचकर मैं क्षण भर चुपचाप खड़ी रही। वे उस समय शांत भाव से ध्यान की मुद्रा में बैठे थे और उनका गैरिक वस्त्र सीधा फर्श तक लटक रहा था। सिर पर पगड़ी सामने की ओर थोड़ी झुकी हुई थी तथा दृष्टि जमीन की ओर थी। थोड़ी देर बाद दृष्टि को बिना उठाए ही वे कहने लगे,
6: बेटी तुम क्यों अशांत परिवेश से घिरी हुई हो, शांत हो जाओ, ये बहुत जरूरी है।
3: इसके पश्चात उन व्यक्ति ने जो मेरा नाम तक नहीं जानते थे शांत स्वर में मेरे जीवन के गोपनीय समस्याओं तथा चिंताओं के बारे में अनेक बातें कही। उन्होंने ऐसी बातें भी बताई जो शायद मेरे परम अंतरंग मित्रों को भी ज्ञात नहीं थी। लगा कि ये कुछ अलौकिक है, अप्राकृतिक है। आखिरकार मैंने पूछा, आपको ये सब कैसे विदित हुआ, किसने आपको मेरे बारे में बताया है। मृदु हास्य के साथ आंखें उठाकर उन्होंने मेरी ओर देखा, मानो मैं एक शिशु के समान कोई निरर्थक प्रश्न कर बैठी हूँ। सौम्यता के साथ वे बोले,
6: किसी ने मुझे नहीं बताया है और बताने की आवश्यकता भी क्या है। मैं खुली किताब के समान तुम्हारे अंतर मन को पढ़ सकता हूँ।
3: आखिरकार मेरे लौटने का समय हो गया। मेरे उठकर खड़े होने पर वे बोले,
6: बीती बातों को भूल जाओ, पुनः आनंद और उत्साह का जीवन यापन करो। एकांत में बैठकर अपने दुखद प्रसंगों का चिंतन मत करो, अपनी भावनाओं को उदार करके उन्हें विविध प्रकार से व्यक्त करो। तुम्हारे आध्यात्मिक जीवन के लिए इसकी आवश्यकता है और तुम्हारी कला के लिए भी ये जरूरी है।
3: उनके शब्दों तथा व्यक्तित्व पर अत्यंत मुग्ध होकर मैं वापस लौटी। ऐसा लगता था मानो उन्होंने मेरे व्याधिग्रस्त मन की सारी कुंठाओं को दूर कर उसे पवित्र और शांतिमय भावों से परिपूर्ण कर दिया हो। उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति के प्रभाव से मेरा मन विश्वास और आनंद से भर गया। उन्होंने किसी सम्मोहक शक्ति का मुझ पर प्रयोग नहीं किया था। उनके चरित्र की दृढ़ता और उनकी सच्चाई ने मेरे मन में श्रद्धा जगा दी थी। उनके साथ अच्छा परिचय हो जाने पर मैंने देखा कि वे लोगों के बिखरे तथा चंचल विचारधाराओं को शांत कर धैर्य पूर्वक उसे अपने भावों में रंग देते थे, जिसके फलस्वरूप लोग उनकी बातों को मान लेते थे। उपदेश देते समय अक्सर वे उदाहरणों का सहारा लेते और हमारे प्रश्नों के उत्तर में अपनी बातों को सरल बना देते थे। एक दिन हम लोग आत्मा के अमरत्व पर चर्चा कर रहे थे, वे पुनर्जन्मवाद की व्याख्या करने लगे। मैं कह उठी, ये बात मैं बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकती। तुच्छ हो तो भी अपना मैंपन मुझे चाहिए। मैं एक शाश्वत के साथ लीन होना नहीं चाहती। ऐसी कल्पना तक मेरे लिए भयावह है।
6: एक दिन पानी की एक बूंद महासागर में गिर पड़ी। अपने को ऐसी अवस्था में देखकर वो तुम्हारी ही भांति रोने और शिकायत करने लगी। महासागर उस जल बिंदु की ओर देखकर हंसने लगा और बोला, तू रो क्यों नहीं है? जब तू मुझमें मिल गई तो जिन जल बिंदुओं से मैं बना हूं अपने उन भाई बहनों से भी मिल गई है। तू स्वयं समुद्र ही बन गई है। यदि तू मुझसे अलग ही होना चाहती है तो सूर्य किरणों के सहारे बादलों में चली जा और पुनः बूंद के रूप में बरस कर प्यासी धरती का कल्याण कर।
0: अमेरिका के धन कुबेर जॉन डी रॉकफेलर से संबंधित एक घटना मदाम काल्वे से सुनकर के मदाम वार्नियर ने अपनी डायरी में लिख ली थी। श्रीमती बर्क ने उसे अपनी पुस्तक में भी लिखा है।
8: जिन सज्जन के घर में स्वामी जी रहते थे वे रॉकफेलर के किसी व्यवसाय से जुड़े हुए थे। रॉकफेलर को अनेकों बार अपने मित्र के मुख से उनके अतिथि एवं अद्भुत व असाधारण हिंदू सन्यासी के बारे में सुनने को मिला था और आकर स्वामी जी से मिलने का आमंत्रण भी प्राप्त हुआ था, परंतु किसी न किसी बहाने वे बारंबार टाल जाते थे। रॉकफेलर तब भी समृद्धि के चरम शिखर तक नहीं पहुँचे थे, तथापि वे बड़े ही सशक्त व दृढ़ इच्छा शक्ति के धनी थे और उन्हें प्रभावित करना या कोई सलाह देना अत्यंत कठिन कार्य था। स्वामी जी के साथ मिलने का आग्रह न होने के बावजूद एक दिन वे सीधे उन मित्र के घर पहुँचे। बटलर के दरवाजा खोलने पर वे बोले कि हिंदू सन्यासी से मिलना चाहते हैं। बटलर उन्हें शयन कक्ष में ले गया। स्वामी जी को सूचना देने की परवाह किए बिना ही वे बगल के अध्ययन कक्ष में प्रविष्ट हुए। ये देखकर अत्यंत विस्मित हुए कि मेज की दूसरी ओर बैठे स्वामी जी ने ये जानने की दृष्टि तक नहीं उठाई कि कमरे में कौन आया है। थोड़ी देर बाद स्वामी जी मैडम काल्वे के समान ही रॉकफेलर के अतीत की भी ऐसी घटनाएं बतलाने लगे जिन्हें उनके अतिरिक्त और कोई नहीं जानता था। स्वामी जी ने उन्हें समझाया कि उसके द्वारा संचित धन उनका अपना नहीं है, बल्कि वे उसके संरक्षक मात्र हैं और उनका कर्तव्य है कि दुनिया की भलाई करना। भगवान ने इसलिए उन्हें धन दौलत दिया है कि वे उसके द्वारा लोगों की सहायता व भलाई करके धन्य हो सके। रॉकफेलर के सामने कोई इस प्रकार बोले और कर्तव्य के बारे में निर्देश देने का साहस करे, ऐसा विचार तक उन्हें सहन नहीं होता था। नाराज होकर वे बिना विदा लिए ही कमरे से बाहर निकल आए, परंतु एक सप्ताह बाद पुनः उसी प्रकार बिना सूचना दिए उन्होंने स्वामी जी के अध्ययन कक्ष में प्रवेश किया और पिछली बार के समान ही उन्हें अध्ययन में तल्लीन पाया। स्वामी जी की मेज पर उन्होंने एक कागज फेंक दिया जिसमें विपुल धन व्यय करके एक जन उपयोगी संस्था प्रारंभ करने की योजना थी। तदुपरांत वे बोले, लीजिए महाशय, अब तो आपको संतोष हुआ, इसके लिए मुझे आप धन्यवाद दे सकते हैं। स्वामी जी ने अपनी आंखें तक नहीं उठाई, फिर कागज को उठाकर धैर्य पूर्वक पढ़ते हुए बोले, धन्यवाद तो आपको ही मुझे देना चाहिए। यही था रॉकफेलर का सार्वजनिक कल्याण हेतु पहला बड़ा दान।
0: इन्हीं दिनों स्वामी जी ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। उसी के तहत अगले 3 वर्षों के लिए एक लेक्चर ब्यूरो के तत्वाधान में अमेरिका के विभिन्न अंचलों का दौरा करते हुए व्याख्यान देने का अनुबंध हो गया। इसी दौरान उन्होंने आला सिंगा को लिखा था,
6: मैं यहाँ देश देखने, तमाशा देखने या नाम कमाने नहीं आया, बल्कि भारत के गरीबों के लिए उपाय ढूंढने आया हूँ। यदि परमात्मा सहायक हुए तो बाद में तुम वे उपाय जान सकोगे।
0: नवंबर के महीने में अनुबंध हो जाने के बाद भी उन्होंने भारतीय मित्रों को सूचित नहीं किया या सूचित करने की आवश्यकता ही नहीं समझी। शायद उन्होंने सोचा हो कि सन्यासी के लिए धन उपार्जन हेतु इस प्रकार अनुबंध होना तत्कालीन भारतीय समाज को पसंद ना। और जब इस नए काम की सफलता अनिश्चित है तो लोगों को सूचित करने की क्या जरूरत है। अब प्रश्न यह उठता है कि उन्होंने इस प्रकार अनुबंध क्यों किया। लोग सोचते हैं कि उनका अपना व्यय चलाने के लिए और भारत में सेवा कार्य चलाने हेतु धन संग्रह करने के लिए ही वे अनुबंधित हुए थे। श्रीमती बर्क का कहना है कि
8: जैसे आजकल वैसे ही स्वामी जी के दिनों में भी संपूर्ण अमेरिका के विभिन्न नगरों में सुव्यवस्थित ढंग से कार्य करने के लिए एक लेक्चर ब्यूरो की सहायता लेना आवश्यक था, परंतु वे 3 वर्षों के लिए अनुबंधित क्यों नहीं हुए, और वो भी एक ऐसा व्यवसायिक संस्था की बातों में आकर जो उन्हें ठग कर अथवा अनुचित रूप से परिश्रम कराकर अधिक से अधिक लाभ कमाने का प्रयास करते। ये समझ पाना कठिन है कि इन बातों पर उन्होंने गौर किया था या नहीं, अथवा इस विषय में उन्हें अपने मित्रों से उचित परामर्श मिला था या नहीं, पर हम शीघ्र ही देखेंगे कि इसका फल अच्छा नहीं हुआ।
2: इस व्याख्यान कंपनी के सहयोग से स्वामी जी एक अत्यंत मेहनत वाले काम में लग गए और तूफान की तरह अमेरिका के हर प्रांत का दौरा करते रहे। मोटे तौर पर इन व्याख्यानों का काल 20 नवंबर 1893 से अप्रैल 1894 तक माना जा सकता है। मेडिसन सिटी के व्याख्यान के संबंध में 21 नवंबर को अखबार में छपा,
9: विवेकानंद का व्याख्यान अत्यंत रोचक तथा उसमें काफी मात्रा में प्रकृत धर्म तथा दर्शन की बातें थीं। भले ही वे ईसाई नहीं हैं, पर ईसाई धर्म उनकी शिक्षाओं को ग्रहण कर सकता है। उनका धर्म ब्राह्मण की भांति ही व्यापक है, जिसमें सभी धर्मों का समावेश है और हर जगह प्रकट होने वाले सत्यों के लिए उसमें स्थान है। उन्होंने बताया कि भारतीय धर्म में कट्टरता, अंधविश्वास तथा सारहीन अनुष्ठानों के लिए कोई स्थान नहीं है।
0: एक दिन भी विश्राम किए बगैर वे 250 मील दूर डिमोइंस नगर पहुंचे। व्याख्यान का विवरण वहां भी छपा। स्वामी जी वहां बोले,
6: सच्चा ईसाई होने के लिए सभी धर्मों को मानना उचित है। एक धर्म में जिस तत्व का भाव है वो अन्य धर्मों में मिल सकता है और अच्छे ईसाई के लिए सब स्वीकार्य है। धर्मांतरण का भाव मुझे पसंद नहीं। हमारे देश में 2 शब्द हैं, धर्म और संप्रदाय, जिसका अर्थ तुम लोग जैसा समझते हो उससे भिन्न है। हमारे यहां धर्म का मतलब है सभी धर्म। हम लोग परमत असहिष्णुता के अतिरिक्त बाकी सब सहन कर लेते हैं, और संप्रदाय से तात्पर्य उन लोगों से है जो कहते हैं हम लोग ठीक हैं, तुम लोग गलत हो।
0: इतना कहने के बाद उन्होंने कूप मंडूक की कहानी सुनाई। डिमोइंस में 28 नवंबर को उनका एक और भाषण हुआ। विषय था पुनर्जन्म। स्वामी जी डिमोइंस में थोड़े ही दिन रहे, पर इसी दौरान उन्होंने पूरे शहर में मानो एक विद्युत प्रवाह संचारित कर दी थी।
2: इन दिनों स्वामी जी के लिखे हुए 5 पत्रों की जानकारी मिलती है, जिसमें उन्होंने अमेरिकी समाज के बारे में लिखा है। पहला पत्र शिष्य श्री हरिपद मित्र को लिखा गया है।
6: इस देश में अद्भुत बातें अनेक हैं। इस देश में निर्धनता प्रायः नहीं के समान है, और इस देश के समान नारियां अन्यत्र कहीं भी मेरे देखने में नहीं आई। सुशिक्षित पुरुष हमारे देश में भी बहुत हैं, परंतु इस देश जैसी नारियां शायद ही अन्यत्र दिखाई दें। और ये कैसी पवित्र हैं। 25-30 की आयु के पहले किसी का भी विवाह नहीं होता, और ये गगनचारी पक्षी की भांति स्वाधीन है। क्या तुम अपने देश की नारियों की अवस्था सुधार सकते हो? तभी आशा है, नहीं तो ऐसे ही पिछड़े रहोगे। इसके बाद है निर्धन लोग। हमारे देश में यदि किसी का जन्म नीच कुल में होता है तो वो सदा के लिए गया, उसके लिए कोई आशा भरोसा नहीं। क्या भाई, ये कैसा अत्याचार है। हे भगवान, हम भी क्या मनुष्य हैं? ऐसे सनातन धर्म की क्या हालत हो गई है। अब धर्म कहाँ है, केवल छुआछूत में। मुझे मत छुओ। अमेरिका वासियों में अनेक दोष भी है। आध्यात्मिकता में ये हमसे काफी नीचे हैं और सामाजिकता में काफी ऊंचे। हम इनका सामाजिक भाव ग्रहण करेंगे और इन्हें अपने अद्भुत धर्म की शिक्षा देंगे।
2: दूसरा पत्र रामकृष्णानंद जी को लिखा गया था। उसमें भी अमेरिकी स्त्रियों की प्रशंसा की है और भारत की सर्वहारा वर्ग के उत्थान की बातें कही हैं। तीसरे पत्र में मद्रास के भक्तों से कहा,
6: मेरा विचार है कि भारत में और अन्यत्र मानव जाति में जिन महान भावों का विकास हुआ, उन्हें गरीब से गरीब और हीन से हीन लोगों के द्वार तक पहुंचा दिया जाए, और तब वे स्वयं ही विचार करें जाति भेद रहे या नहीं, महिलाओं को पूर्ण स्वाधीनता मिले या नहीं, इस विषय में मुझे सिर खपाने की आवश्यकता नहीं।
0: चौथा पत्र जूनागढ़ के दीवान जी के नाम था। उसमें उन्होंने लिखा था,
6: भारत के असंख्य नरनारी मुझे नहीं समझ सके, और समझते भी कैसे, क्योंकि खाने पहनने की दैनंदिन क्रिया को छोड़कर उन बेचारों का मन कभी ऊपर ही नहीं उठा। केवल आप जैसे कुछ महामना लोग ही मेरे गुण ग्राही हैं। क्या कारण है कि अपनी अद्भुत बुद्धि तथा अन्य गुणों के रहते हुए भी हिंदू राष्ट्र छिन्न भिन्न हो गया? मेरा कहना है ईर्ष्या। इस अभागी हिंदू जाति के समान शुद्र भाव, ईर्ष्या परायणता तथा दूसरे के यश से दाह करने वाली दूसरी कोई भी जाति कभी देखने में नहीं आई। यदि कभी आप पाश्चात्य देशों में आए तो यहाँ के निवासियों में ईर्ष्या का अभाव ही सबसे पहले आपकी निगाह में आएगा।
0: पांचवा पत्र खेतड़ी के महाराजा के लिए था, जिसमें उन्होंने अमरीकी स्त्रियों के सहृदय व्यवहार तथा अतिथि परायणता के बारे में लिखा था। उन महिलाओं के प्रति कृतज्ञता प्रकाशित की गई थी एवं उनके नाना प्रकार के गुणों का वर्णन भी किया था।
2: इस तरह स्वामी जी व्याख्यानों के लिए अनुबंधित होकर समूचे देश में घूमते रहे और अपने समाचार स्वदेश के मित्रों को भेजते रहे। स्वामी जी के अमेरिका भ्रमण के बारे में हम अगली कड़ी में चर्चा करेंगे।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

0: जिंदा फिर से हो रहा।
1: जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।
2: युग प्रवर्तक विवेकानंद। अभी आप ये धारावाहिक सुन रहे थे 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद से, देश का चैनल देश के लिए।

नमस्कार, मैं हूं अन्नू कपूर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर। मैं प्रणाम करता हूं, नतमस्तक हूं, सलाम करता हूं देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए हरदम तैनात रहते हैं, तैयार रहते हैं। नतमस्तक हूं साथ ही उन सभी क्रांतिकारियों को प्रणाम करता हूं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें ये आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, आज की प्रातःकालीन प्रसारण सभा में आपके साथ थी मैं सुनीता सिंह। आपसे विदा लूं उसके पहले आज शाम प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों से आपको परिचित करवाना चाहती हूं। शाम 5 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम अक्षय निधि। भक्ति संगीत का प्रसारण होगा 5:10 पर। शाम 6 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम वतन का राग। इसमें आज हम बात करेंगे गोपीनाथ कविराज की। सुनो कहानी, ये कार्यक्रम शाम 6:30 प्रसारित होगा। इसमें आज सुनिएगा मुंशी प्रेमचंद की कहानी सेवा मार्ग। शाम 7 बजे कला कल्लोलिनी कार्यक्रम में हम बात करेंगे विष्णु नारायण भातखंडे की। शाम 7:30 हमारा विशेष कार्यक्रम होगा। इसमें आज आप सुन सकते हैं माच शैली में नाटक शहीद भगत सिंह का पहला भाग। रेडियो रिपोर्ट का वक्त होगा रात 8 बजे। 8:30 आजाद हिंद कार्यक्रम में हम बात करेंगे मान कुमार बसु ठाकुर की। शब्दों के शिल्पकार, इस कार्यक्रम में रात 9:30 चर्चा होगी धर्मवीर भारती की। और रात 9:30 आप सुन सकते हैं धारावाहिक युग प्रवर्तक विवेकानंद की 38वीं कड़ी। तो श्रोताओं, ये था एक संक्षिप्त सा परिचय आज शाम प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का। आज की प्रातःकालीन प्रसारण सभा से अब अनुमति दें अपनी दोस्त सुनीता सिंह को। नमस्कार, आप सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद पर मैं हूँ कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। रेडियो आजाद हिंद के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
2: ये मेरा इंडिया।
1: देश के अमर शहीदों को मेरा नमन है जिन्होंने आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। जय हिंद। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
0: श्रोताओं नमस्कार। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर इस वक्त आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। तराने आजादी के ये कार्यक्रम लेकर उपस्थित हूँ मैं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह। आइए शुरू करें सिलसिला देशभक्ति गीतों का।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए प्रस्तुत है ये देशभक्ति गीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम तराने आजादी के। इस प्रसारण सभा में आज आपके साथ हूँ मैं सुनीता सिंह। अगली प्रस्तुति के साथ हाजिर होती हूँ, बस एक छोटा सा अंतराल। आप बने रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद के साथ। सुनते रहिए देश का चैनल, देश के लिए।

0: नमस्कार, मैं हूं अभिजीत दा, अभिजीत भट्टाचार्य, और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर। देश को आजादी दिलाने वाले हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मेरा शत शत नमन है, जिन्होंने भारत माता को अंग्रेजों के चंगुल से आजाद कराया। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम भारत भारती।
2: हिंदुस्तान के विभिन्न प्रांतों के संगीत पर केंद्रित कार्यक्रम भारत भारती। भारत भारती

इस कार्यक्रम के सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, मैं सुनीता सिंह। श्रोताओं, हमारे देश में संगीत की एक समृद्ध परंपरा रही है और संगीत दायरों को नहीं मानता। इतना बड़ा हमारा देश, अलग अलग बोली भाषा के लोग, अलग जाति धर्म के लोग, अलग रीति रिवाज को मानने वाले लोग, अलग जाति धर्म, अलग बोली भाषा और अलग रीति रिवाजों से उत्पन्न कितनी ही स्वर लहरियां संगीत की अलग अलग शैलियों के रूप में आज विख्यात हैं। ऐसी ही एक संगीत शैली है अभंग। आज भारत भारती कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं महाराष्ट्र की इसी संगीत परंपरा की वानगी। और विशेष बात ये कि इसे प्रस्तुत करने वाली दो कलाकार चेन्नई से संबद्ध हैं। जी हाँ, कर्नाटक शैली में पारंगत रंजनी और गायत्री। इनके युगल स्वरों में आइए सुनते हैं अभंग गायन।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे रंजनी और गायत्री का अभंग गायन। उम्मीद है आज का ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। बहुत जल्द भारत भारती के एक और अंक के साथ हम फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए इजाजत दें अपनी दोस्त सुनीता सिंह को। नमस्कार, आप बने रहिएगा 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद के साथ। सुनते रहिए देश का चैनल, देश के लिए।
1: हिंदुस्तान के विभिन्न प्रांतों के संगीत पर केंद्रित कार्यक्रम भारत भारती। भारत भारती।

0: नमस्कार, मैं हूँ हर्षदीप कौर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमें नाज है देश के उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। भारत माता के सभी महान सच्चे सपूतों को हर्षदीप का शत शत नमन।
1: जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी।
0: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: नाइन्टी पॉइंट एट मेगाहर्ट्ज़ पर इस वक्त आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण। श्रोताओं, हमारा अगला कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में, बने रहिए हमारे साथ। सुनते रहिए देश का चैनल देश के लिए।

0: देवे।
1: नमस्कार, मैं हूँ रेखा भारद्वाज
0: ससुराल गेंदा फूल
1: और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम

0: हाँ, घूमना किसे पसंद नहीं। नई नई जगहें देखना, नए नए लोगों से मिलना, एक अलग तरह की संस्कृति और एक अलग तरह का नजारा।
1: हाँ बिल्कुल ठीक कहा तुमने भाई, मैं तो हमेशा तैयार रहता हूँ घूमने फिरने के लिए।
0: और इन सब का अपना एक अलग ही आनंद होता है।
1: हो भी क्यों ना,
0: एक अलग ही रोमांच है। इस रोमांच की तमन्ना हमें मजबूर करती है कि हम अपने खोल से बाहर निकले और देखें कि दुनिया कितनी बड़ी और कितनी विविध है।
1: बिल्कुल ठीक कहा कंचन तुमने, वरना हमारी जिंदगी तो ऐसी हो जाएगी जैसे कुएं के अंदर एक मेंढक अगर हम घूमने नहीं निकले। एक बात बताऊं तुम्हें?
0: हाँ?
1: प्रसंग बस हमें 14वीं सदी के एक यात्री इब्न बतूता की याद आती है। मोरक्को के टेंजियर शहर का वो रहने वाला था।
0: हाँ?
1: और पैदाइशी तौर पर उसे घूमने का जबरदस्त जज्बा था। वह कहता था कि मुझे वो ज्ञान बिल्कुल नहीं चाहिए जो किताबों में लिखा है भाई, मैं तो चीजों को अपनी आंखों से देखना, उन्हें महसूस करने में ज्यादा विश्वास रखता हूँ।
0: हाँ, मैंने भी सुना है उनके बारे में।
1: अच्छा?
0: वो कहते थे कि मैं दुनिया देखने के लिए उतावला हो रहा हूँ, और घुमक्कड़पन के इसी उन्माद में 22 साल का ये युवक अकेले ही अपने घर से निकल पड़ा, ऐसे जैसे चिड़िया का बच्चा अपना घोंसला छोड़कर निकल पड़ता है।
1: बिल्कुल ठीक।
0: 14वीं सदी का माहौल आज जैसा तो नहीं होगा तब। उस जमाने में अकेले तो क्या, कारवा के साथ चलने पर भी जान की कोई गारंटी नहीं होती थी।
1: हाँ, आपको घर बैठे घुमाने का रोमांच अनुभव कराने के लिए चलो आज हम आपको सैर पर ले चलते हैं, एक रेडियो यात्रा पर। इस कड़ी में सबसे पहले हम चलते हैं बाबा भोलेनाथ की नगरी वाराणसी में।
0: वाह, वाराणसी से मुझे कहावत याद आ गई।
1: कौन सी?
0: शामे अवध सुबह काशी, यानी अवध की शाम और काशी की सुबह बड़ी ही सुहानी होती है।
1: ये तो ठीक है।
0: सच बात है, काशी यानी कि वाराणसी में सुबह मुंह अंधेरे ही हर हर गंगे हर हर महादेव करती टोलियां जब गंगा तट की तरफ बढ़ती हैं, तो मन एक बार की भक्तिमय हो उठता है। सूरज के जगने से पहले ही ये शहर जग पड़ता है, मंदिरों की घंटियां बजने लगती हैं और गंगा का घाट चहल पहल से भर जाता है।
1: काशी नगरी पूरी दुनिया में सबसे निराली है। भगवान शिव ने इसे अपने त्रिशूल पर धारण किया हुआ है, और मानता तो यह भी है कि यह शहर दुनिया में होकर भी मानो दुनिया में नहीं है, और इसलिए जब पूरा विश्व प्रलय में डूब जाएगा तो कहते हैं तब काशी ही अपनी जगह पर कायम रहेगी, ऐसी मान्यता लोगों में आदि काल से चली आ रही।
0: और काशी को वाराणसी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वरुणा और असी नदियों के बीच बसा हुआ है। श्रोताओं, यहाँ पर हम आपको बता दें कि ये दोनों ही नदियाँ गंगा की सहायक नदियाँ हैं। इन नदियों ने अपने प्यार भरे आलिंगन में इस शहर को ऐसे पाला है जैसे दो माताएं किसी बच्चे को पालती हैं।
1: वाह वाह, क्या कल्पना करी है तुमने। दुनिया के इतिहास में अनेक नगरों का उत्थान और पतन होता रहा है। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो व हड़प्पा को ही ले लो। आज से 5000 साल पहले बसे इन शहरों में अब केवल मलबे ही मलबे बचे हैं, लेकिन वाराणसी शायद पूरी दुनिया का ऐसा सबसे पुराना शहर है जो लगातार जिंदा है, अनवरत धड़क रहा है। और हो भी क्यों ना, शिव जी की खास पसंद जो है ये काशी।
0: हाँ, और इसके बारे में मार्क ट्वेन ने तो ये भी कहा था कि ये शहर ओल्डर देन हिस्ट्री है। वे लिखते हैं कि ये शहर इतिहास से भी पुराना है, परंपरा से भी पुराना है, पुराणों से भी पुराना है, और इन सब की आयु को अगर एक साथ जोड़ लिया जाए तो ये शहर इससे भी दुगना पुराना है।
1: वाराणसी शहर इतना पुराना है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि विश्व के सबसे पुराने ग्रंथ ऋग्वेद में भी इसका उल्लेख है। इस ग्रंथ में इसे काशी कहकर के पुकारा गया है। काशी शब्द का अर्थ होता है सिटी ऑफ लाइट, प्रकाश का शहर या ज्योति का शहर।
0: और प्रकाश ज्ञान का भी प्रतीक होता है, धर्म का भी और जागरण का भी।
1: बिल्कुल,
0: ये हम नहीं कहते, हमारे पुराने श्लोक कहते हैं।
1: कौन से श्लोक?
0: अस्तो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय, यानी हे ईश्वर, हमें असत्य से सत्य की ओर, और अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। आपको बता दें कि ये पंक्तियां वृदारण्यक उपनिषद के नवरस मंत्र से ली गई हैं।
1: बिल्कुल, लेकिन वाराणसी के संदर्भ में प्रकाश का अर्थ ज्ञान नहीं, जागरण नहीं, बल्कि कुछ और ही है, और वो क्या है ये हम आपको बताएंगे थोड़ी देर में। अभी आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़। आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
0: ऋग्वेद के बाद अगला महत्वपूर्ण ग्रंथ स्कंद पुराण है, जिसमें पूरा का पूरा एक काशी खंड ही है।
1: अच्छा।
0: और इस खंड में 15,000 श्लोक हैं। इनमें से एक श्लोक में भगवान शंकर कहते हैं,
1: क्या?
0: अखिल विश्व के तीनों लोकों में केवल एक ही शहर मेरा है और वो है काशी।
1: भाई वाह, क्या बात है।
0: और इसी शहर में मेरा शाही महल भी है।
1: श्रोता, अगर आप भूल रहे हो तो हम आपको याद दिला दें कि गंगा भी शिव की जटा से ही निकली है, यानी हर तरह से वाराणसी शिव में है। तभी तो हर हर गंगे यहाँ का सबसे बड़ा मंत्र है।
0: और रामायण व महाभारत ग्रंथों में भी वाराणसी की चर्चा बारंबार मिलती है। गौतम बुद्ध की बात करें तो उनका समय भी आज से लगभग 2,500 साल पहले का है।
1: बिल्कुल।
0: ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने अपना पहला उपनिषद ऋषिपत्तन में दिया था। ये ऋषिपत्तन ही आज सारनाथ है, जो वाराणसी से ही लगा हुआ है, जैसे कि भोपाल और बैरागढ़।
1: हाँ, गौतम बुद्ध बोध गया से ज्ञान प्राप्ति के बाद जब यहाँ आए, तब यहाँ पर एक बगीचा हुआ करता था जिसे मृगाड़दव कहा जाता था। इस शब्द का मतलब होता है कि ऐसा बगीचा जिसमें हिरण रहते हों। आज भी यह बगीचा है जिसे डेयर पार्क कहा जाता है, और आज भी यहाँ पे हिरण रहते हैं।
0: और इस बगीचे में ही गौतम बुद्ध जी ने 5 ब्राह्मणों को अपना पहला धर्म उपदेश दिया था। बौद्ध परंपरा में ये घटना धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाती है, जिसका मतलब होता है धर्म के पहिए का गतिशील होना।
1: हाँ, बुद्ध के निर्वाण के बाद सारनाथ में धमेक स्तूप बनाया गया, जिसके आज केवल अवशेष ही मिलते हैं। यहाँ मुलागन गुटी नाम का एक विहार भी हुआ करता था। कहा जाता है कि बुद्ध ने अपना पहला वर्षाकाल यहीं व्यतीत किया था, और अब इस विहार को श्रीलंका की महाबोधि सोसाइटी द्वारा पुनर्निर्मित किया गया है।
0: इस तरह बुद्ध से संबंधित होने के कारण सारनाथ आज दुनिया भर के बौद्ध लोगों के लिए एक पवित्र स्थान है। और यहाँ हर समय पर जापान, थाईलैंड, तिब्बत, श्रीलंका और म्यांमार देशों के तीर्थ यात्रियों का मेला लगा रहता है।
1: बिल्कुल ठीक कहा तुमने। सारनाथ का एक और महत्व है, और वह यह है कि यहाँ से प्राप्त अशोक की लाट से भारत सरकार का राज्य चिन्ह लिया गया है, जिसमें 4 सिंह एक दूसरे की ओर पीठ करके बैठे हुए हैं।
0: बौद्ध धर्म के समान ही जैन धर्म से भी वाराणसी का गहरा रिश्ता रहा है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म भी यहीं हुआ था। उनके पिता अश्वसेन काशी के राजा थे।
1: वाराणसी अपने खूबसूरत घाटों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यूं तो गंगा हर जगह मनोहारी है, पर काशी में तो इसकी छटा निराली है। मॉडर्न एज के जाने माने पेंटर मकबूल फिदा हुसैन को तो बनारस व यहाँ का गंगा तट इतना भाया कि उनकी पेंटिंग में अनेकों रंग इसमें बिखरे हुए हैं।
0: यहाँ इसके किनारों पर कुल 80 घाट बने हुए हैं, जो राजघाट से शुरू होकर 80 घाट तक फैले हैं। इनमें से एक घाट का नाम मणिकर्णिका घाट है। राम जी के पूर्वज राजा हरिश्चंद्र ने जब अपने सपने में अपना राज्य दान दे दिया था, तब वे यहीं आकर एक डोम के दास बने थे।
1: लाइफ का कंट्रास्ट अगर देखना हो तो मणिका घाट और दशाश्वमेध घाट देखें। एक मृत्यु का प्रतीक है तो दूसरा जीवन का। एक पर दाह संस्कार के लिए शवों की लाइन लगी रहती है तो दूसरी तरफ शादी विवाह की मन्नतें पूरी करने वालों से अटा पड़ा रहता है। पूरा का पूरा वातावरण जीवन की किलकारियों से भरा रहता है।
0: उस क्षेत्र के वरवधू शादी के बाद दशाश्वमेघ अवश्य आते हैं। गंगा माँ को चुनर चढ़ाई जाती है। दीपदान चलता रहता है। मंदिरों के घंटे जीवन का उद्घोष करते रहते हैं। घाट क्या है? पूरा एक शहर है। विदेशी यात्रियों का सबसे ज्यादा जमावड़ा भी यहीं दिखाई देता है। घाट की सीढ़ियों पर वे ऐसे शांति से बैठे रहते हैं जैसे यहाँ विद्यमान आध्यात्मिक ऊर्जा को चुपचाप आत्मसात कर रहे हो।
1: हाँ, और दूसरी ओर मणिकर्णिका कुछ और नहीं, बस मौत का सन्नाटा है यहाँ। यहाँ आकर के कबीर का दोहा याद आता है।
0: कौन सा?
1: पानी केरा बुलबुला असमानस की जात, देखत ही छुप जाएगा जो तारा प्रभात।
0: यानी मनुष्य का शरीर और क्या है, बस पानी का एक बुलबुला ही तो है। यहाँ से लौटने के बाद हफ्तों तक जीवन की निसारता पीछा करती रहती है। वैराग्य अनुराग पर चोट करता रहता है, पर अंत में जीत अनुराग की ही होती है। ऐसा ना हो तो सब सन्यासी ही हो जाए।
1: बिल्कुल ठीक कहा तुमने। जब काशी की बात चले तो काशी विश्वनाथ मंदिर की चर्चा भला कैसे ना हो। यह मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। आपको बता दे कि इनमें से 2 ज्योतिर्लिंग हमारे मध्य प्रदेश में भी है, महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर। श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें कि वाराणसी को सिटी ऑफ लाइट्स भी कहते हैं, और यह लाइट कुछ और नहीं ज्योतिर्लिंग ही है।
0: दरअसल ज्योतिर्लिंग उस देव स्थान को कहते हैं जहाँ शिव मूर्ति की नहीं बल्कि शिवलिंग की उपासना होती है।
1: श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें कि शिव सनातन हैं, निराकार हैं। सबसे पहले उन्होंने स्वयं को अरिद्र नक्षत्र की एक रात्रि में एक अग्नि शिखा के रूप में प्रकट किया जो धरती को फाड़ करके बाहर निकल रही थी। इस अग्नि शिखा को ही प्रतीकात्मक रूप से शिवलिंग के रूप में प्रकट किया जाता है।
0: श्रोताओं, 3 ज्योतिर्लिंग के नाम तो आपने सुन ही लिए, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर और काशी विश्वनाथ। चलिए अब आपको शेष 9 नाम भी बताए देते हैं। केदारनाथ, वैद्यनाथ, सोमनाथ, नागेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, घुश्मेश्वर, भीमाशंकर, मल्लिकार्जुन और रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग।
1: श्रोताओं, काशी के विश्वनाथ मंदिर को कभी कभी गोल्डन टेम्पल भी कहा जाता था। वजह यह थी कि इस मंदिर के शिखर पर 50 फीट ऊंचा सोने का पत्थर चढ़ा हुआ था। क्या आप जानते हैं कि यह पत्थर किसने चढ़ाया था? पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह ने।
0: इस मंदिर का कुछ रिश्ता हमारे मध्य प्रदेश से भी है।
1: हाँ।
0: राजमाता अहिल्याबाई होलकर कितनी शिव भक्त थी ये तो सभी जानते हैं।
1: बिल्कुल।
0: उन्होंने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया और गंगा के कुछ घाटों को भी पक्का करवाया था। कहते हैं कि कोई व्यक्ति यदि गंगा में डुबकी लगाकर बाबा विश्वनाथ का दर्शन कर ले तो मोक्ष का द्वार उसके लिए स्वयमेव खुल जाता है।
1: और शायद यही वजह है कि आदि शंकराचार्य से लेकर के गुरु नानक, तुलसीदास, स्वामी विवेकानंद आदि कितने ही महापुरुषों ने इस मंदिर के दर्शन किए, स्वयं को धन्य किया। इतिहास के लंबे दौर में अनेक बार इस मंदिर को हमलों का सामना करना पड़ा, लेकिन हर बार दुगनी शान शौकत के साथ इसका पुनर्निर्माण किया गया।
0: श्रोताओं, वाराणसी शहर धर्म और आध्यात्म की एक गंगा है। तभी तो यहाँ एक से बढ़कर एक पवित्र स्थल है। अब संकट मोचन को ही ले लीजिए। उल्लेख मिलता है कि वाराणसी में असी नदी के पास एक जगह पर हनुमान जी ने गोस्वामी तुलसीदास को साक्षात दर्शन दिए थे। सो उन्होंने उस जगह पर संकट मोचन हनुमान मंदिर की स्थापना की।
1: लेकिन आज जो मंदिर का ढांचा है उसका निर्माण पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा करवाया गया था। इस मंदिर में बंदरों के झुंड मिलते हैं, इतने कि आप हैरान हो जाएं। ऐसा लगता है कि हम वानर लोक में आ गए हैं। पता नहीं जाने कैसे मालूम पड़ जाता है कि ये उनके राजा का मंदिर है।
0: जरा याद करें यहाँ पर हनुमान चालीसा की पंक्तियाँ।
1: कौन सी?
0: जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। यानी यहाँ हनुमान जी को कपीश कहा गया है।
1: बिल्कुल।
0: इसका अर्थ है कपि, यानी बंदरों के ईश और लौकिक अर्थ में राजा। प्रसंगवश आपको बता दें कि हनुमान चालीसा की रचना भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने ही की है और उसकी भाषा भी अवधी है।
1: हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि संकट मोचन मंदिर के बंदर भी बड़े नटखट और शरारती होते हैं। हो सकता है कि ये आपकी कोई कीमती चीज उठा ले जाएं, लेकिन केवल बार्गेनिंग के लिए नहीं, आप उनसे अपनी चीज को वापस लेना चाहते हैं तो आपको कुछ ना कुछ चीज उनको देनी पड़ेगी अदला बदली के लिए। बंदरों को आप कुछ खाने पीने की चीज दे दीजिए, वापस बदले में वो आपकी चीज आपको वापस लौटा देंगे।
0: संकट मोचन का रुतबा अगर आपको देखना हो तो जरा कभी मंगलवार या शनिवार को पधार कर देखिए। घंटों के पहले अगर दर्शन करने की आपकी बारी आ जाए तो कहिएगा। कहते हैं अगर किसी की कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी ना हो तो उसका सबसे प्रभावशाली उपाय है संकट मोचन के दर्शन करना।
1: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद। कार्यक्रम है अतुल्य भारत। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़। आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, हम वाराणसी की बात करें और वाराणसी के शिल्प की बात ना करें ये तो हो ही नहीं सकता। वाराणसी का शिल्प बहुत मशहूर है पूरी दुनिया में, खासकर यहाँ की बनी हुई बनारसी साड़ियाँ। इन साड़ियों का भारतीय लोगों के लिए क्या दर्जा है, इसका अनुमान आप इसी बात से लगा सकते हैं कि हर दुल्हन की यह अभिलाषा होती है कि वह अपने विवाह के अवसर पर बनारसी साड़ी जरूर पहने।
0: ये साड़ियाँ होती तो सिल्क की हैं, पर इन पर सोने और चांदी की जरी की जाती है। एम्ब्रॉयडरी इतनी जबरदस्त होती है कि साड़ियाँ भारी भरकम हो जाती हैं, इसलिए ये केवल खास अवसरों पर ही पहनी जाती हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में इन्हें पहनना संभव ही नहीं।
1: भारत की बात छोड़ दें तो विदेशों में भी इन साड़ियों के प्रति भारी दीवानगी देखने को मिलती है। अगर आपने अपने किसी एनआरआई दोस्त की पत्नी को बनारसी साड़ी भेंट कर दी तो समझ लीजिए कि जिंदगी भर के लिए वह आपका हो गया। वास्तव में शादी विवाह के मौके पर इस साड़ी का तोहफा देना एक बड़ी ही महानता मानी जाती है।
0: यहाँ आपको बता दें कि सिल्क की बनी बनारसी साड़ियाँ बनारस की प्राचीन संस्कृति का अंग नहीं रही हैं। लंदन का एक व्यापारी रॉल्फ फिच 16वीं शताब्दी में भारत आया। उस समय भारत पर सम्राट अकबर की हुकूमत थी। फिच ने भारत के अनेक शहर घूमे जिनमें वाराणसी भी था। उसने लिखा है कि वाराणसी सूती कपड़ों का एक प्रमुख केंद्र था।
1: श्रोताओं, एक बात हम आपको बता दें, सम्राट अकबर के काल तक वाराणसी सिल्क टेक्सटाइल के लिए नहीं जाना जाता था। वास्तव में बनारस की साड़ियां तो गुजरात के बुनकरों की देन है। 17वीं शताब्दी के बाद गुजरात में भयानक अकाल पड़ा और वहां से बहुत सारे बुनकर पलायन करके बनारस में आ गए और इन्हीं लोगों ने बनारसी साड़ियों की नींव डाली।
0: बनारस की बात चले तो यहाँ की गलियां कैसे छूट सकती हैं? पूरी दुनिया में मशहूर हैं यहाँ की गलियां।
1: बिल्कुल ठीक कहा आपने, मैं तो कई बार भटक चुका हूँ इन गलियों में।
0: बाहर वालों के लिए तो भूल भुलैया ही है, तो यहाँ वालों के लिए तोहफा, सड़क पर जाम लगा है कोई बात नहीं, भीतर ही भीतर गलियों से निकल जाइए।
1: आप पूरा का पूरा शहर इन गलियों के सहारे नाप सकते हैं। करोड़ों का व्यापार इन गलियों में होता है। बनारसी साड़ियों की अच्छी से अच्छी दुकानें इन्हीं गलियों में हैं। बनारस के नायाब हैंडीक्राफ्ट आइटम्स भी इन्हीं गलियों में मिलते हैं।
0: श्रोताओं, विश्वनाथ मंदिर की चर्चा तो हो ही चुकी है। दशाश्वमेध घाट की सड़क से इस मंदिर को जोड़ने का काम भी एक गली ही करती है।
1: बिल्कुल।
0: जिसे विश्वनाथ गली कहा जाता है। गली क्या है, पूरा एक शहर है, मिनी वाराणसी आप देख सकते हैं यहाँ पर।
1: हाँ, एक से बढ़कर एक हैंडीक्राफ्ट के सामान, भगवान की अद्भुत मूर्तियाँ, राजा और सिपाही, पर्स, साड़ियाँ, गहने, ऐसा लगता है कि सपनों की गलियों में तैर रहे हैं आप। विदेशी पर्यटकों की तो भरमार रहती है इस गली में, लेकिन बार्गेनिंग बड़ी जबरदस्त होती है। कुछ खरीदना हो तो होशियार रहिएगा आप।
0: अरे हाँ, बनारस जाइएगा तो बनारसी लस्सी पीना मत भूलिएगा।
1: अच्छा,
0: वो स्वाद, वो सुगंध, आहा, वो स्टाइल आप कहीं और पा ही नहीं सकते। ताजी मलाईदार दही आपके सामने ही फेंटी जाएगी और बर्फ का चूरा मिलाया जाएगा, शक्कर मिलाई जाएगी और ऊपर से गुलाब जल डालकर आपको सर्व की जाएगी मलाई की परत के साथ
1: जी।
0: मिट्टी के ये बड़े बड़े कुल्हड़ में देखते ही बस मुंह में पानी आ जाएगा।
1: अरे मुझे तो सोच कर ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है। लस्सी बनाने की परंपरागत कला और पूरी तरह से हैंडमेड काम, ना मिक्सी ना फ्रिज और लस्सी की लस्सी।
0: लस्सी के अलावा एक और भी चीज मशहूर है बनारस की।
1: मुझे पता है आपका इशारा क्या है, बनारसी पान की तरफ ना।
0: हाँ बनारसी पान भी बनारस की एक पहचान है। यूं तो कलकतिया पान भी मशहूर है।
1: हाँ।
0: पर बनारसी पान की बात ही कुछ और है। क्या आप जानते हैं कि इन दोनों में बेसिकली क्या अंतर है?
1: भाई कलकतिया पान बिल्कुल पक्का हरा होता है और बनारसी पान हल्का सा पीलापन लिए हुए होता है। मुझे तो इतना ही पता है और इसीलिए इस कलकतिया पान की तुलना में इनमें कड़वापन कम होता है। बनारस के लोगों की कमजोरी है यह पान और शायद बनारस के बाहर के लोगों की भी। तभी तो डॉन फिल्म का यह गाना कि खाई के पान बनारस वाला आज भी जब बजता है ना तो लोग झूम उठते हैं। श्रोता बनारसी पान के बाद आपको याद दिला दे कि भारतीय शास्त्रीय संगीत का बनारसी घराना बड़ा प्रसिद्ध है और यह घराना तबला वादन में महारत रखता है।
0: धर्म प्राण वाराणसी को भारत के 7 मोक्षदायी स्थलों में एक माना जाता है।
1: बिल्कुल।
0: गरुड़ पुराण में उल्लेख मिलता है कि अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका व द्वारवती स्थल मोक्षदायक हैं।
1: भारतीय उपमहाद्वीपों के शक्तिपीठों के बारे में आपने तो सुना ही होगा। ये वे स्थल है जहां पर दक्ष की पुत्री तथा भगवान शिव की पत्नी के विभिन्न अंग कट करके गिरे थे। इन सभी स्थलों पर आज शक्तिपीठों की स्थापना की गई है और ये पीठ अत्यंत पवित्र माने जाते हैं। और वाराणसी में सती के कान की बाली गिरी थी, इस स्थान पर ही आज विशालाक्षी मंदिर बना हुआ है। श्रोताओं आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद। कार्यक्रम है अतुल्य भारत। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़। देश का चैनल देश के लिए।

0: करते हैं महाकवि तुलसीदास से। इन्होंने अपना अंतिम जीवन वाराणसी के एक गंगा घाट पर व्यतीत किया और अंत में देह त्याग भी यहीं किया। इस घाट का नाम तुलसी घाट कहलाता है।
1: गोस्वामी तुलसीदास जी की ही तरह कबीर दास जी का भी वाराणसी से गहरा संबंध है। उनका पालन पोषण यहाँ के एक जुलाहा दंपत्ति नीरू और नीमा ने किया था। जिस जगह पर कबीर रहे और पले वो आज कबीर चौरा कहलाता है।
0: अब हम बात करते हैं महामना मदन मोहन मालवीय की। इनका जन्म तो इलाहाबाद में ही हुआ था, पर इनकी असली कर्मभूमि रही वाराणसी, जहां बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी के BHU की स्थापना करके वे अमर हो गए।
1: श्रोताओं, आपको ये बता दें कि ये यूनिवर्सिटी न केवल भारत बल्कि पूरे एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी है। इसका केवल मुख्य कैंपस ही 1300 एकड़ में फैला हुआ है।
0: हाँ, तो मदन मोहन मालवीय जो पेशे से वकील थे, भारत की गरीबी का सबसे प्रमुख कारण अशिक्षा मानते थे। सो उन्होंने वाराणसी में एक रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी की स्थापना करने की ठान ली। और उस समय भारत में जो यूनिवर्सिटीज थी वे केवल एफिलेटेड थी।
1: मदन मोहन जी के सामने रास्ता बहुत ही कठिन था। सरकार को राजी करना था, जमीन का इंतजाम करना था और ढेर सारा पैसा चाहिए था। लेकिन जब चाह होती है तो राह निकल ही आती है। राजा बनारस ने जमीन दे दी, भारत के धनपतियों ने अपनी तिजोरियां खोल दी और कांग्रेस के दबाव में ब्रिटिश सरकार ने कानून भी पास कर दिया।
0: सबसे बड़ा सहयोग तो एनी बेसेंट का मिला, जो पहले ही बनारस हिंदू स्कूल स्थापना कर चुकी थी। यह स्कूल ही BHU के लिए आधारशिला बन गया और इस तरह जनता के पैसे से जनता की ताकत पर सन 1916 में भारत का पहला रेसिडेंशियल विश्वविद्यालय अस्तित्व में आ गया।
1: जो रोल डॉक्टर हरि सिंह गौर का सागर विश्वविद्यालय की स्थापना में था, उससे भी बढ़कर मदन मोहन मालवीय जी का BHU की स्थापना में रहा, क्योंकि मदन मोहन मालवीय जी के सामने पैसे की जबरदस्त तंगी थी।
0: मदन मोहन केवल एक शिक्षा शास्त्री ही नहीं थे, बल्कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी महान सेनानी थे। कांग्रेस में उनका क्या स्थान था, यह इस बात से ही प्रमाणित होता है कि एक दो नहीं बल्कि कुल 4 बार वे इस संस्था के प्रेसिडेंट चुने गए। इसी संस्था के मंच पर सबसे पहले 1905 में बनारस अधिवेशन के दौरान ही उन्होंने अपनी इच्छा प्रकट की कि वे इस शहर में एक यूनिवर्सिटी की स्थापना करना चाहते हैं।
1: भारत के सबसे सरल, नेक और ईमानदार प्रधानमंत्रियों में जिनका नाम सबसे पहले जुमा पर आता है, वे हैं लाल बहादुर शास्त्री जी। लाल बहादुर शास्त्री जी भी बनारस के ही लाल थे, जो गंगा उस पार के गांव में रहते थे।
0: गरीबी बेइंतहा थी, पढ़ने के लिए गंगा पार करके शहर आना पड़ता था, पर नाव का किराया देने के लिए पैसा नहीं होता था, तो वे तैर करके गंगा पार करते थे। बनारस की गंगा कोई मामूली गंगा नहीं है, इसे पार करना एक जीवट का काम है, और जिसे लाल बहादुर शास्त्री ने किया, दुबले पतले कमजोर से इंसान ने।
1: लेकिन पढ़ाई का जज्बा भुजाओं में बल बनकर नदी पार कराता रहता। शायद ये गंगा जल के स्पर्श का ही प्रभाव रहा होगा कि उनकी रग रग में ईमानदारी और सच्चाई भर गई। कहते हैं कि प्रधानमंत्री होने के बावजूद जब उनका देहांत हुआ तो वे अपने पीछे संपत्ति नहीं बल्कि कर्ज छोड़ गए थे।
0: हाँ, मुझे याद है। वाराणसी शहर बड़ी शिद्दत से अपने इस लाल को याद करता है। यहाँ के हवाई अड्डे का नाम इन्हीं के नाम पर रखा गया है, लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मध्य प्रदेश के खुजराव हवाई अड्डे से यहाँ के लिए सीधी उड़ान भी मिलती है।
1: हम वाराणसी के कोई ब्रांड एम्बेसडर नहीं है, पर इच्छा रखते हैं कि अगर आपने वाराणसी न देखा हो तो एक बार यहाँ जरूर जाएं।
0: बिल्कुल श्रोताओं, अब वाराणसी की यात्रा हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले सप्ताह आपको फिर ले चलेंगे किसी दूसरे नगर की यात्रा पर। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, सुनते रहिए 90.8 MHz पर रेडियो आजाद हिंद। इस कार्यक्रम का आलेख तैयार किया था श्रीमती पूनम जायसवाल ने और प्रस्तुत किया था प्रमोद शर्मा और
1: कंचन राजानी।

नमस्कार, मैं हूँ मधुश्री और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए। मैं सलाम करती हूँ देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा में हमेशा तैनात रहते हैं, और साथ ही उन क्रांतिकारियों को भी जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर हमें आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं।

आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण। आज आपके साथ हूं मैं, आपकी दोस्त सुनीता सिंह। बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए देश का चैनल देश के लिए। बस थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम।

0: देवे। नमस्कार, मैं हूँ रेखा भारद्वाज ससुराल गेंदा फूल और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार श्रोताओं, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आजाद हिंद है,
2: देश का चैनल देश के लिए।
1: मैं हूँ आपकी रेडियो मित्र मोनिका तिवारी
2: और मैं हूँ आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह।
1: हम उपस्थित हैं लेकर कार्यक्रम एक चर्चा पेड़ों के नाम,
2: और आज इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे देवदार के पेड़ पर।
3: मैं यही हूँ सदा, कहीं जाने का सवाल ही नहीं उठता। किसी के लिए बस्ती हूँ मैं, तो किसी के लिए सराय, किसी का घर हूँ तो किसी की छाँव, किसी का मंदिर हूँ किसी का माली। मेरे फूल कहीं चढ़ते हैं तो कहीं के फूल मुझ पर भी चढ़ते हैं। कोई मुझे पूछता है तो कोई मुझ पर पत्थर फेंकता है, लेकिन देता मैं सभी को हूँ, जिंदा रहते हुए भी और मरने के बाद भी। यहाँ तक कि मेरी देह भी लोगों के काम आती है। मैं वृक्ष हूँ।

0: सुनीता जी, क्या आपने भी ये आवाज़ सुनी?
1: हाँ मोनिका, मैंने भी सुनी और हमारे श्रोताओं ने भी सुनी।
0: क्या पेड़ सच में बोलते हैं?
1: अब ये तो बड़ा ही मुश्किल सा सवाल है, लेकिन सच कहूँ?
0: क्या?
1: सच ये है कि अपनी ही भाषा में, अपने ही संकेत में बहुत कुछ कहते हैं पेड़, जिन्हें हम अनसुना कर देते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। पेड़ों के प्रति हमारी जो जिम्मेदारी है, हम उसे अनसुना कर देते हैं। हम हमारी हर जिम्मेदारी भूल जाते हैं।
1: उनके महत्व को हम समझते हैं, अपनी जिंदगी में जाने कहां कहां उनके उपयोग को हम देखते भी हैं, लेकिन अपनी जिम्मेदारी निभाने से कतरा जाते हैं, या कहें एक बेख्याली है हमारे मन में। तो अपने श्रोताओं को इसी जिम्मेदारी का एहसास कराने के लिए ये कार्यक्रम लेकर हम हाजिर हैं।
0: बिल्कुल सुनीता जी, आपने एक पुरानी कहावत तो सुनी ही होगी।
1: कौन सी?
0: कि नदी अपना जल स्वयं नहीं पीती।
1: बिल्कुल ठीक।
0: और वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं खाते। ये तो परमार्थ के लिए ही इस धरती पर आए हैं, मगर हम क्या करते हैं इनके साथ? इनका विनाश। जी हाँ, आज की सभ्यता का यही सच है। धरती के फेफड़े कहलाने वाले जंगल कितने कटे हैं, ये हमसे छुपा नहीं है।
1: बिल्कुल ठीक कहा मुनिका तुमने। आकलन किया जाए तो एक पेड़ को काटने से जितनी आय होती है, उससे कहीं अधिक योगदान वो जीवित रहते हुए देता है। वो जीवन भर हमें शुद्ध हवा देता है, फल फूल देता है ना?
0: बिल्कुल सही।
1: भूमिगत जल का स्तर बढ़ाने में जो भूमिका निभाता है वो, या बाढ़ को रोकने में सहायता करता है, उन सब सेवाओं का मूल्य अगर आज के अर्थशास्त्र के हिसाब से हम निकालें, तो उसे काटने से हुए लाभ की तुलना में ये लाभ कई गुना ज्यादा ठहरता है। तो सवाल ये उठता है कि फिर हम इन्हें काटते क्यों हैं?
0: इसका सीधा जवाब है ना, तत्काल और निजी लाभ के लिए।
1: बिल्कुल।
0: एक हरा वृक्ष जो सेवाएं देता है, वे वर्षों तक मिलती हैं और पूरे समाज को मिलती हैं।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन उसे काटकर हम तुरंत और अपना फायदा करते हैं। एक कहानी याद आती है इस वक्त मुझे, शायद आपने सुनी भी होगी।
1: कौन सी?
0: बहुत समय पहले की बात है कि एक नहायत ही बूढ़ा और जर्जर व्यक्ति एक आम का पेड़ रोप रहा था। किसी ने उससे पूछा कि बाबा, इस पेड़ से फल कितने दिन में आएंगे? बूढ़े ने कहा, यही कोई 15-20 साल में। तो क्या तुम तब तक जीवित रहोगे? उस व्यक्ति ने बूढ़े से अगला सवाल किया।
1: अच्छा।
0: तो फिर उन्होंने उत्तर दिया, नहीं, मैं जानता हूँ कि अब साल तो साल से ज्यादा मैं नहीं चलने वाला, लेकिन ये पेड़ कोई मैं अपने लिए थोड़ी लगा रहा हूँ, ये तो मैं आने वाली पीढ़ी के लिए लगा रहा हूँ। ये था उस बूढ़े वृद्ध व्यक्ति का उत्तर।
1: क्या बात है मोनिका, बिल्कुल दिल को छू लेने वाली कहानी तुमने सुनाई। वैसे मैंने सुनी थी, और सच है कि एक पेड़ जो हम लगाते हैं वो सिर्फ अपने लिए नहीं लगाते। जैसे कि इस वृद्ध ने कहा कि भाई, मैं 2-4 साल ही जीवित रहूंगा, लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए ये वृक्ष मैं लगा रहा हूँ। ठीक उसी तरह जैसे हम हैं, कुछ पेड़ हमने नहीं लगाए, हमारी पिछली पीढ़ी ने लगाए, लेकिन उनका लाभ हम लेते हैं। तो हमारा भी कर्तव्य होता है कि अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए हम पेड़ लगाएं, वृक्ष लगाएं, है ना?
0: बिल्कुल सही कहा आपने।
1: लेकिन आज ये आदर्शवाद कहीं बचा ही नहीं है मोनिका। ये परमार्थ का भाव बहुत कम दिखाई देता है। लोग अपने से बाहर कुछ देखना ही नहीं चाहते, ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है।
0: बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि पेड़ कितने महत्वपूर्ण है उनके लिए।
1: बिल्कुल मोनिका। और एक सोचने की बात ये भी है कि जैसी सोच आज के लोगों की है, अगर ऐसी ही सोच हमारी पिछली पीढ़ी की होती, तो इतने जो बड़े बड़े वृक्ष हम देखते हैं, उनका हम लाभ उठाते हैं, शुद्ध हवा हमें मिलती है, बारिश आती है, इन सब चीजों के लिए तो हम तरस जाते ना।
0: बिल्कुल।
1: सांस लेते तो दम घुटता। तो हमारे बुजुर्गों ने जो हमें दिया है, वो हमें अपने बच्चों को लौटाना ही है। ये तो पितृ ऋण है ना हम पर।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। और ये सब बातें बोल के आपने एक बहुत ही गहरी सोच में डाल दिया हमें।
1: मोनिका मोनिका मोनिका, अब तुम कहीं खो मत जाना सोच में, तुम्हारी ये आदत में देखती हूँ। तो तुम्हें मैं खींच लाती हूँ बाहर। भाई श्रोता हमारे इंतजार कर रहे हैं।
0: बिल्कुल। तो आप और हम साथ ही हमारे श्रोताओं से भी हम ये आग्रह करेंगे, निश्चय करें कि आज से हरे पेड़ नहीं काटेंगे और हर साल कम से कम एक वृक्ष तो रोपेंगे ही।
1: ये बात बिल्कुल पते की तुमने की है मोनिका।
0: न केवल रोपेंगे,
1: हाँ,
0: बल्कि उसकी देखभाल भी करेंगे, जैसे हम अपने बच्चों की करते हैं।
1: ये और भी जरूरी है है ना?
0: बिल्कुल। और ये भी याद रखिएगा कि आपके पाले बच्चे तो आपका बुरा कर सकते हैं, लेकिन ये वृक्ष संतानें कभी नहीं करेंगे। जी हाँ, जैसे पहले 100 पुत्र होने का आशीर्वाद मांगा जाता था, आज हमें वैसे ही 100 वृक्ष संतानों के आशीर्वाद की आवश्यकता है।
1: क्या बात है मोनिका, क्या बात कही है तुमने। बिल्कुल, हम सभी को 100 वृक्ष संतानों के आशीर्वाद की आवश्यकता है, और ये आशीर्वाद कोई और नहीं देगा, हमें ही 100 वृक्ष लगाने हैं और ये आशीर्वाद प्राप्त कर लेना है।
0: बिल्कुल सही कह रही हैं।
1: तो चलिए श्रोताओं, हम आपके लिए लेकर आए हैं वृक्षों पर आधारित ये श्रृंखला। इसमें हम नियमित रूप से आपको विभिन्न प्रकार के वृक्षों के बारे में जानकारी देंगे, उनके सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व पर भी चर्चा करेंगे। हमारी कोशिश है कि आप हमारे वृक्ष देवताओं से परिचय प्राप्त करें। उनसे प्रेम तभी कर सकेंगे ना, जैसा कि रामचंद्र शुक्ल ने कहा है मोनिका,
0: क्या
1: कि परिचय के बिना प्रेम नहीं होता, है ना सच?
0: बिल्कुल सही।
1: तो लीजिए, आज की कड़ी में अपने श्रोताओं का परिचय हम करवा रहे हैं एक महान वृक्ष से।
0: और वो वृक्ष कौन सा है?
1: वो वृक्ष है देवदार का वृक्ष।
0: सुनीता जी, मैं जानती हूँ इस पेड़ के बारे में। ये पेड़ पहाड़ों का वृक्ष है, जहाँ ठंडक खूब पड़ती है।
1: कितने खूबसूरत होते हैं ना?
0: हाँ।
1: मैंने तो देखा भी है।
0: अच्छा।
1: हाँ।
0: वहाँ के पर्यावरण तंत्र और संस्कृति का यह अभिन्न अंग है। भारत का पश्चिमी हिमालय क्षेत्र इसका मूल स्थान माना गया है। यहीं से ये वृक्ष बाकी क्षेत्रों में फैला है। हिमालय में भी अधिकतर ये 1500 से 3200 मीटर की ऊंचाई पर मिलता है।
1: अच्छा मोनिका,
0: क्या
1: तुम ये जानती हो कि देवदार का वैज्ञानिक नाम क्या है?
0: नहीं, क्या आपको पता है?
1: भाई मुझे मालूम है, तभी तो मैंने पूछा। तो चलो तुम्हें भी और अपने श्रोताओं को भी बता दूं कि देवदार का वैज्ञानिक नाम है सेड्रस देवडारा। ये जो पेड़ है ना, ये सीधे तने वाला एक शंकुधारी पेड़ है, यानी नीचे ये चौड़ा होता है और ऊपर की ओर सिकुड़ते हुए अंतिम बिंदु पर बिल्कुल नुकीला सा हो जाता है, जैसे आइसक्रीम का कोन होता है ना।
0: माने कि ये देवदार सुनने में जितना इंटरेस्टिंग है, उसका आकार भी उतना ही इंटरेस्टिंग होता है।
1: हाँ, आइसक्रीम के कोन की तरह ये आकार में फर से मिलता जुलता है, और इसकी जो लकड़ी है वो हल्की, मजबूत और तीखी सुगंध वाली होती है।
0: कवियों और साहित्यकारों को देवदार सदा से लुभाता आ रहा है।
1: मोनिका बिल्कुल ठीक कहा तुमने, और पता है बहुत से गीतों में भी इसका जिक्र आता है।
0: अच्छा।
1: वो गीत तुमने सुना है, ये कौन चित्रकार है?
0: बिल्कुल सुना है, बहुत ही प्रसिद्ध गीत है।
1: हाँ, उसमें भी एक पंक्ति आती है, ये वृक्ष देवदार के, है ना, मुकेश ने गाया है।
0: हिमालय क्षेत्र में एक शांत तपस्वी की तरह ये मानो अपनी साधना में लीन रहता है। आधुनिक हिंदी के महाकवि जयशंकर प्रसाद ने इसका स्मरण अपनी कालजयी रचना कामायनी में किया है। प्रसंग प्रलय का है, जब आदि पुरुष मनु महामत्स्य द्वारा बचाए जाने उपरांत हिमालय में भटक रहे थे। वे लंबे शरीर वाले थे और देवदार भी लंबा वृक्ष होता है। वे भी इस समय हिमालय में ही थे और देवदार भी हिमालय में ही मिलता है। अतः स्थान साम्य और आकार साम्य के आधार पर कवि ने उनकी तुलना देवदार से करते हुए कुछ इस तरह लिखा है, उस तपस्वी से लंबे थे देवदारू दो चार खड़े।
1: हाँ मोनिका, कामायनी की ये पंक्ति मुझे भी याद आ गई। अगर रचनाकार पहाड़ी क्षेत्र का हो तो वो देवदार के वृक्ष का जिक्र करना कभी नहीं भूलता है। बात कोई भी हो, घुमा फिरा कर वो देवदार तक पहुंच ही जाता है। उसके व्यक्तित्व में जन्म से ही इतना समाया है ये वृक्ष कि किसी न किसी रूप में उसकी चर्चा होना बिल्कुल स्वाभाविक है, जैसा कि हमारा सांस लेना।
0: उत्तराखंड के कवि हैं सुबीर रावत, शायद आपने उनका नाम सुना होगा।
1: हाँ मोनिका।
0: अपनी प्रियसी की याद में वे कविता लिखते हैं, शीर्षक है आना फुर्सत में कभी मेरे पहाड़ में। उनकी प्रियसी उनके कल्पना संसार में एक फागुनी शाम को पहाड़ की हरी भरी वादियों में आती हैं, वहां जहां ढेर सारे देवदार के वृक्ष हैं। तब जब शर्माकर वो दुपट्टे से अपना मुख ढांकती हैं, तो ऐसा लगता है कि पूनम का चांद चीड़ और देवदार के घने वृक्षों की आड़ में छुप गया हो।
1: कितनी सुंदर कल्पना ना।
0: इसी कल्पना को ध्यान में रखते हुए ये कविता सुनिए। मंद मंद मुस्कान उस फागुनी शाम की, खिल उठे हूँ बसंत हजारों जैसे, रंग बिरंगे फूलों से मेरी लकदक पहाड़ में ढक देना शर्मा कर, कभी यूं ही मुंह दुपट्टे से छिप गया हो चांद पूनों का जैसे, घनघोर मेरे चीड़ देवदारू के पहाड़ में, देवदारू के देवदारू के
1: कितनी सुंदर कविता ना मोनिका। मैं तो खो गई बिल्कुल, मुझे सारा दृश्य नजर आने लग गया। लेकिन मनुष्य की निर्मम लोभ वृत्ति ने बाकी वृक्षों के समान देवदार को भी बख्शा नहीं, हालांकि इसका परिणाम भी मिला है उसे। पहाड़ों का इकोसिस्टम हिल गया है, कितनी आपदाएं आ रही हैं। पहाड़ों के सरकने की खबर हम सुनते हैं, उनके ढहने की खबर हम सुनते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा आपने।
1: खैर, देवदारों की कटाई एक कवित्री कविता वाचक नवि को विह्वल कर देती है। उनकी कुछ पंक्तियां सुनो।
0: सुनाइए।
1: वो कहती हैं, रहस्य के सारे देवदार काट डाले हैं बटोही ने, बाहें पसारे जो हिम झेलते थे पी लेते थे कोहरा।
0: सुनीता जी, हम बहुत देर से देवदार के पेड़ की बात कर रहे हैं।
1: हाँ?
0: लेकिन क्या आपको पता है कि ये नाम देवदार पड़ा कैसे?
1: बिल्कुल पता है मोनिका, और मैं चाहती हूँ कि ये जो जानकारी हमें है वो अपने श्रोताओं को भी हम दे दें कि आखिर इस पेड़ का नाम देवदार क्यों पड़ा।
0: बिल्कुल, शुरुआत मैं करती हूँ, आप मेरा साथ दीजिएगा।
1: हाँ, बिल्कुल।
0: आज हिंदी में हम जिसे देवदार कहते हैं उसका मूल शब्द है देवद्रुम, यानी देवताओं का वृक्ष। पौराणिक उल्लेख मिलता है कि सत्यभामा के हट करने पर भगवान श्री कृष्ण कल्प वृक्ष को पृथ्वी पर उठा लाए थे। इससे कल्प तरु से हीन देवलोक श्री विहीन हो गया।
1: हाँ।
0: तब सभी देवताओं ने मिलकर भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि हे प्रभु, कल्प तरु के बिना देवलोक श्रीहीन हो गया है। जैसा कि कृष्ण का स्वभाव था, वे हौले से मुस्कुराए और बोले, जहाँ श्री अर्थात लक्ष्मी नहीं रहेंगी वो स्थान तो श्रीविहीन होगा ही। जब तीनों श्री लक्ष्मी सरस्वती और काली साक्षात विग्रह रूप में सत्यभामा रुक्मणी और जामवंती के रूप में धरती पर है, तो स्वर्ग में श्री कैसे रह सकती हैं?
1: बिल्कुल, तब निर्णय हुआ कि कल्प वृक्ष स्वर्ग को तभी वापस किया जा सकता है जब उसके जैसे ही प्रभाव वाला एक वृक्ष तैयार करके देवता लोग पृथ्वी लोक को प्रदान करें। इस पर समस्त देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियों को मिलाकर जो वृक्ष बनाया उसका नाम देवद्रुम पड़ा। बाद में यवन प्रभाव में ये नाम बिगड़कर देवदारू हो गया। इस देवदारू से ही आज का देवदार बना है।
0: यानी देवद्रुम ही देवदारू है
1: और देवदारू ही देवदार है। याद करो, कुछ देर पहले जयशंकर प्रसाद की कामायनी से एक पंक्ति तुमने पढ़ी ना।
0: हाँ।
1: उसमें देवदारू शब्द आया। इसमें इस वृक्ष के लिए देवदारू शब्द का प्रयोग किया था जयशंकर प्रसाद ने, न कि देवदार का। जयशंकर प्रसाद जैसे भाषाई शुद्धता के प्रति विशेष सजग कवि से यही अपेक्षा थी।
0: सुनीता जी, प्राचीन भारतीय संस्कृति में भी देवदारू की चर्चा मिलती है। देवदारू देवताओं का वृक्ष है, ये हिमालय का वृक्ष है, शिव का प्रेम है इस पर।
1: बिल्कुल,
0: इन कारणों से भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से ही इसकी महिमा मिलती है। वाल्मीकि रामायण में किष्किंधा कांड में इसका वर्णन मिलता है।
1: हाँ।
0: प्राचीन काल में शिव भक्त आश्रम बनाकर हिमालय के जंगलों में रहते थे। उनकी पहली प्राथमिकता वे स्थान होते थे जहाँ देवदारू के घने वन होते थे।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने मोनिका।
0: शिव को प्रसन्न करने के लिए ये तपस्वीगण देवदारू के नीचे बैठकर ही तपस्या करते थे। उनका विश्वास था कि इससे शिव जल्दी प्रसन्न होंगे। इतना ही नहीं, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में एक विशेष शब्दावली भी मिलती है, दारू कावन, जिसका अर्थ है देवदारू के वृक्षों का जंगल।
1: मोनिका।
0: हाँ?
1: तुमने बात की प्राचीन भारतीय संस्कृति में देवदारू के जिक्र की, है ना? रूसी संस्कृति में भी देवदार का जो वृक्ष है उसका खास स्थान है। श्रोताओं, जैसा कि आपने सुना ही है कि देवदारू ठंडे स्थानों पर उगने वाला वृक्ष है। यही कारण है कि भारत और दुनिया के उन तमाम जगहों पर ये मिलता है जहाँ अच्छी खासी ठंड पड़ती है। भारत में जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश जैसे क्षेत्रों में तो पाया ही जाता है, साथ में नेपाल, तिब्बत, उत्तरी पाकिस्तान, पूर्वी अफगानिस्तान, भूमध्य सागरीय क्षेत्रों और रूस तक में ये वृक्ष मिलता है।
0: रूस चूंकि एक ठंडा देश है, इसलिए ज्यादातर वृक्ष शंकुधारी होते हैं, जैसे कि सनोबर, लार्च और देवदार। यहाँ के लोग अपने घरेलू चिकित्सा पद्धति में भी इन वृक्षों का कई तरह से इस्तेमाल करते हैं।
1: बिल्कुल,
0: साइबेरिया के इलाके में देवदारू खूब मिलते हैं। इसकी गोंद का इस्तेमाल इस देश में घरेलू चिकित्सा के लिए किया जाता है। रूसी भाषा में इसे जीवित्सा कहते हैं, यानी जीवन देने वाली। यहाँ रूसी भाषा और संस्कृत भाषा का साम्य देखा गया है। सुनीता जी, जीवित्सा का शब्द देखकर ऐसा लगता नहीं कि इसमें हमारी संस्कृत भाषा भी मिली हुई है?
1: बिल्कुल, मुझे बिल्कुल यही लगा कि ये संस्कृत का शब्द है।
0: वही अर्थ और वही ध्वनि। इससे उस थ्योरी को बल मिलता है कि यूरोपीय आर्य और भारतीय आर्य मूलतः एक ही है, जो बाद में चलकर दो शाखाओं में विभक्त हो गए। ये एकता न केवल भाषा में बल्कि संस्कृति में भी मिलती है। देवदारू का जो महत्व भारत में है, वही रूस में भी है।
1: बिल्कुल मोनिका। खैर, थोड़ा सा हम भटक गए, विषयांतर हो गया। तो चलो अपने मूल प्रसंग पर लौटते हैं।
0: बिल्कुल,
1: देवदारू के गोंद की बात हो रही थी, है ना? देवदारू के गोंद को जीवित्सा इसलिए कहा जाता है मोनिका, क्योंकि ज्यों ही किसी घाव पर तेल मिलाकर ये गोंद लगाया जाता है, घाव तुरंत भर जाता है।
0: अरे वाह।
1: घाव चाहे कैसा भी हो, चीरा लग गया हो, कट गया हो, जल गया हो, या घाव में पस पड़ चुकी हो या सड़ गया हो, कोई बात नहीं, जीवित्सा को वनस्पति तेल में घोलकर उस पर लगा दीजिए, बिल्कुल ठीक हो जाएगा।
0: यानी कि बहुत ही लाभकारी है ये।
1: बहुत ही लाभकारी। यहाँ तक कि रूस के जो पुराने लोग थे ना, वो टूटी हड्डी पर भी ये गोंद लगाते थे और इससे हड्डी जुड़ जाती थी।
0: अरे वाह, ये तो चमत्कार जैसा है।
1: प्रकृति तो अपने आप में एक चमत्कार है ही।
0: इस गोंद की खासियत ये है कि पानी डालने पर भी ये नहीं घुलती, जबकि वनस्पति तेल डालने से घुल जाती है। यहाँ तक कि शरीर में कहीं दर्द हो रहा हो, वनस्पति तेल मिलाकर इस गोंद को लगाइए, दर्द फौरन ही उड़नछू हो जाता है। गले में दर्द हो या फिर टॉन्सिल्स बढ़ गए हो, रूसी लोग जीवित सा चूस कर इसको ठीक कर लेते हैं।
1: क्या बात है, देखो प्रकृति के रहस्य कितने निराले हैं ना।
0: बिल्कुल,
1: वही गोंद पानी में नहीं घुलता और वही गोंद तेल में डालने पर घुल जाता है।
0: ये तो अचंभे में डालने वाली बात है।
1: बिल्कुल, ऐसे बहुत से अचंभे प्रकृति में छुपे हुए हैं मोनिका। और पता है
0: क्या,
1: साइबेरिया के लोग देवदारू की गोंद को अपने दांत दर्द और मसूड़े के दर्द को दूर करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। पेट में फोड़ा हो जाने पर भी इससे बहुत लाभ होता है। देवदारू की गोंद को जलाकर पैदा की गई आग को भी रूस में बहुत पवित्र माना जाता है।
0: अच्छा।
1: फिर वही सांस्कृतिक साम्य जिसकी तुमने बात की, कि भाई भाषा जीवित्सा एक शब्द सुनकर लगता है कि संस्कृत और रूसी भाषा बिल्कुल एक है। उसी तरह से ऐसा नहीं लगता कि इसकी लकड़ी की अग्नि को वो इतना पवित्र मानते हैं, और हमारे यहाँ यही बात तो हवन के साथ है ना।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। हमने जाना रूस में इस पेड़ के महत्व को, आइए अब जानते हैं कि लद्दाख संस्कृति में देवदार का कितना महत्व है।
1: मतलब देवदार के वृक्ष के साथ हम अलग अलग देशों की यात्रा पर हैं क्या?
0: बिल्कुल सही कहा आपने। लद्दाख क्षेत्र में स्थानीय वन्य चिकित्सकों को आमची कहा जाता है।
1: अच्छा।
0: ये आमची देवदार के फूलों एवं पत्तियों के एक खास कॉम्बिनेशन के एक यंत्र का निर्माण करते हैं, जिससे अनेक प्रकार के कठिन रोग का सफल एवं स्थायी इलाज हो जाता है। पश्तो भाषा की एक किताब है, विल्लाख चासू। इसमें लद्दाख क्षेत्र की एक पौराणिक मान्यता का उल्लेख मिलता है कि आईसी, मनचूक, खंच, डायला और खिचास्तो नक्षत्र में जन्म लेने वालों पर इस वृक्ष के पत्तों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये पांचों नक्षत्र संस्कृत के हिसाब से रेवती, अश्विनी, मघा और अश्लेषा हैं, जिन पर देवदार यंत्र का असर नहीं होता।
1: ये भी दूसरा रहस्य। देखो मोनिका, ये तो बात हो गई लद्दाखी संस्कृति में देवदार की।
0: हाँ।
1: अब मैं सोचती हूँ कि मैं तुम्हें लिए चलूँ स्विट्जरलैंड।
0: स्विट्जरलैंड, वाओ।
1: कैसी बांछे खिल गई ना तुम्हारी। भाई स्विट्जरलैंड का नाम सुनते ही आंखों के सामने कितने सुंदर प्राकृतिक दृश्य आ जाते हैं।
0: बिल्कुल, प्राकृतिक छटा छा जाती है आंखों के सामने।
1: दरअसल स्विट्जरलैंड के पर्यटन को भी बहुत अच्छी तरह से निखारा है देवदारू ने। स्विट्जरलैंड पर्यटन के लिहाज से पूरी दुनिया में क्या स्थान रखता है ये हम सब जानते हैं। तुम्हारी खुशी और तुम्हारी मुस्कुराहट बता रही है है ना। यहाँ के पर्यटन के आकर्षण के पीछे यहाँ की प्राकृतिक छटा है जिसे यहाँ के लोगों ने बड़े जतन से सहेजा हुआ है, हमारी तरह तहस नहस नहीं किया है। खूबसूरत लैंडस्केप, बर्फ से ढके हुए पहाड़ और हरी भरी वादियाँ किसी का भी मन मोह लेती हैं।
0: सुनीता जी हा? आपने ये सब बातें बोल के तो मुझे सच में स्विट्जरलैंड पहुंचा दिया। वैसे कहते हैं कि यहाँ केवल सूरज नहीं उगता बल्कि पहाड़ भी उगते हैं। स्विस आल्प्स का संसार जंगलों के सौंदर्य का खजाना समेटे हुए है। पर्वत श्रृंखलाएं यहाँ 4000 मीटर से भी ज्यादा ऊंची हैं, जो आसमान में धस्ती सी नजर आती हैं।
1: फिल्मों में अक्सर हम देखते हैं ना।
0: पर्वत से झरझर झरते झरनों का संगीत कानों को झंकृत कर देता है। और इस पृष्ठभूमि में जब हवा में झूमते पाइन व देवदारू के वृक्ष नजर आते हैं तो सौंदर्य का मानो रहस्य लोग रच जाता है।
1: और इस रहस्य लोग में हमारा जो मन है वो बिल्कुल खो जाता है। वैसे मोनिका, क्या तुम्हें पता है कि क्यों इस देवदार का आकार कोन की तरह होता है?
0: नहीं।
1: मैं बताती हूँ।
0: बताइए।
1: दरअसल प्रकृति से बढ़कर कोई वैज्ञानिक नहीं है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने।
1: तभी तो अलग अलग जगह की अलग अलग जलवायु और भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर उसने वहाँ के जीव जंतुओं वनस्पतियों की डिजाइनिंग की है। है ना। देवदारू के जो शंकु यानी कोण के आकार की मैं बात कर रही थी ना,
0: हाँ?
1: उसका कारण भी यही है।
0: अच्छा।
1: चूंकि ये ठंडे स्थानों का वृक्ष है इसलिए पूरे वृक्ष का एक शंकु की तरह विकास और इसकी पत्तियों का नुकीलापन इस वृक्ष को और इसकी पत्तियों को ठंडक से बचाता है।
0: ठंडक की बात हो रही है और जैसा कि आपने मुझे पहले बताया था कि इसका जो आकार रहता है वो आइसक्रीम के कोन की तरह होता है, तो कहीं आइसक्रीम के कोन का आकार देने से पहले उन्होंने इस वृक्ष को तो नहीं देख लिया था?
1: ये एक दूसरा ही प्रश्न है और एक अलग चर्चा का विषय है।
0: चलिए हमने बात की कि देवदारू के वृक्ष का आकार कोन की तरह क्यों होता है, आइए अब बात करते हैं इसके उपयोगों के बारे में। टिम्बर इंडस्ट्री में देवदारू एक बहु उपयोगी वृक्ष है क्योंकि इसकी लकड़ियाँ टिकाऊ होती हैं और पानी में सड़ती नहीं है, हालांकि ये उतनी मजबूत नहीं होती। न सड़ने वाले गुणों के कारण श्रीनगर के हाउस बोट्स प्रायः इसी के बने होते हैं। टिकाऊपन और न सड़ने वाले गुणों के कारण ब्रिटिश काल में तो हर तरह से कंस्ट्रक्शन वर्क में इसका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर हुआ है।
1: बिल्कुल, देवदार की लकड़ी में क्लोज ग्रेन्स होते हैं, इसकी वजह से इसमें फाइन क्लास की पॉलिश हो जाती है, यही कारण है कि इसे गोल्ड कोन भी कहा जाता है। मंदिरों को बनाने में बहुत पहले से इसका इस्तेमाल होता रहा है।
0: देवदार के फूल बड़े ही दुर्लभ होते हैं, यही कारण है कि ऐसे इने गिने देवदार वृक्ष जिन पर फूल खिलते हैं उन्हें सरकार ने अति सुरक्षित श्रेणी में घोषित कर रखा है। यहाँ तक कि इन फूलों की कालाबाजारी भी होती है।
1: मतलब फूलने वाले देवदार के वृक्ष बहुत कम होते हैं, दुर्लभ होते हैं। यानी ये जो आइसक्रीम का कोन है वो देखने में बहुत खूबसूरत है लेकिन बहुत तरसा कर फूलता है। इस संबंध में मोनिका, हाँ? एक पौराणिक उल्लेख भी मिलता है।
0: और वो क्या है भला?
1: भगवान शिव ने ये कह रखा था कि लोग यदि इस देव वृक्ष का आदर नहीं करेंगे और इस पर अत्याचार करेंगे तो इस पर फूल लगने बंद हो जाएंगे।
0: यानी इससे ये पता लगता है कि इंसान ने इस वृक्ष पर कितना अत्याचार किया है, तभी तो इस पर फूल खिलने कम हो गए हैं।
1: इसे हमने कम सहेजा ये तो जाहिर है।
0: सुनीता जी, क्या आपको पता है कि वृक्षों से हमारा करियर भी बन सकता है?
1: बड़ी गहरी बात तुमने की है।
0: आज करियर की चुनौती बड़ी है लेकिन चिंता की बात नहीं, वृक्ष प्रेम को अगर आप चाहें तो अपना करियर भी बना सकते हैं। शर्त ये है कि आपकी विशेषज्ञता स्थापित हो। यदि आपने 12वीं तक साइंस पढ़ा है तो आप BSc इन फॉरेस्ट्री का कोर्स भी कर सकते हैं। ये कोर्स करने के बाद अवसरों की भरमार हो जाती है। ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसकी ओर लोगों का भी ज्यादा ध्यान नहीं है, अतः काम अभी आसानी से मिल जाता है।
1: अगर और अधिक ऊंचाई पर जाना चाहते हैं आप तो इसी स्ट्रीम में मास्टर डिग्री प्राप्त कर सकते हैं, मास्टर इन फॉरेस्ट मैनेजमेंट। मास्टर इन फॉरेस्ट इकोनॉमी, मास्टर इन फॉरेस्ट वुड साइंस टेक्नोलॉजी जैसे कोर्सेज इसमें उपलब्ध हैं। अगर ये कोर्स आप कर लेते हैं श्रोताओं, तो वृक्षारोपण के क्षेत्र में सक्रिय बड़ी बड़ी कंपनियां अपने प्रोजेक्ट्स में बतौर प्रबंधक आपको जॉब ऑफर कर सकती हैं। वन्य जीव और वन संरक्षण से जुड़े एनजीओज में भी फॉरेस्ट्री विशेषज्ञों की मांग है।
0: अगर पर्यावरण के प्रति आपकी रुचि है, तब तो ये कोर्स आपके लिए एक पंथ और दो काज का काम करेगा। हरियाली के बीच करियर चलेगा, और फिर क्या चाहिए। आपकी उम्र में कम से कम 10 साल का इजाफा तो हो ही जाएगा।
1: मतलब फायदे ही फायदे, है ना?
0: बिल्कुल सही कहा आपने। तो सुनीता जी, चलिए हम भी चलते हैं ये कोर्स करने के लिए, और फिर रहेंगे बड़े ही आराम से हरियाली के बीच में।
1: बिल्कुल, और सिर्फ कोर्स ही नहीं करना है मोनिका, कोर्स तो करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ मैं, वो जरूर करूंगी, लेकिन साथ में हमें वृक्षारोपण भी करना है, ताकि हमारा पर्यावरण बिल्कुल संरक्षित रहे, सुंदर रहे। और जो हमने शुरू में बात की थी ना, आने वाली पीढ़ी के प्रति हमारी ये जिम्मेदारी है, तो हम पेड़ों को गले लगाएं, अपने हाथों का बहुत ही केयरिंग स्पर्श उसको हम दें, तभी बात बनेगी।
0: बिल्कुल, और साथ ही ये वादा करें कि हर साल कम से कम एक वृक्ष जरूर बोएंगे।
1: तो इसी वादे इसी इरादे के साथ अनुमति दीजिए अपनी दोस्त सुनीता सिंह
0: और मोनिका तिवारी को।
1: लेकिन चलने से पहले श्रोताओं को बता दें कि आज का कार्यक्रम था एक चर्चा पेड़ों के नाम, जिसमें हमने चर्चा की वृक्ष देवदार की। तो श्रोताओं, बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद,
0: देश का चैनल देश के लिए।

0: नमस्कार, मैं हूं रूप कुमार राठौड। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। जय हिंद।
1: श्रोताओं नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर इस वक्त आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। तराने आजादी के ये कार्यक्रम लेकर उपस्थित हूँ मैं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह। आइए शुरू करें सिलसिला देशभक्ति गीतों का।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए प्रस्तुत है ये देशभक्ति गीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम तराने आजादी के। इस प्रसारण सभा में आज आपके साथ हूँ मैं सुनीता सिंह। अगली प्रस्तुति के साथ हाजिर होती हूँ, बस एक छोटा सा अंतराल। आप बने रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद के साथ। सुनते रहिए देश का चैनल, देश के लिए।

0: मैं हूं पिनाज मसानी और आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद।
1: दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको, दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको।

0: रेडियो आजाद हिंद के सभी सुनने वालों फिनाज मसानी की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम भारत भारती।
2: हिंदुस्तान के विभिन्न प्रांतों के संगीत पर केंद्रित कार्यक्रम भारत भारती। भारत भारती

इस कार्यक्रम के सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, मैं सुनीता सिंह। श्रोताओं, हमारे देश में संगीत की एक समृद्ध परंपरा रही है और संगीत दायरों को नहीं मानता। इतना बड़ा हमारा देश, अलग अलग बोली भाषा के लोग, अलग जाति धर्म के लोग, अलग रीति रिवाज को मानने वाले लोग, अलग जाति धर्म, अलग बोली भाषा और अलग रीति रिवाजों से उत्पन्न कितनी ही स्वर लहरियां संगीत की अलग अलग शैलियों के रूप में आज विख्यात हैं। ऐसी ही एक संगीत शैली है अभंग। आज भारत भारती कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं महाराष्ट्र की इसी संगीत परंपरा की वानगी। और विशेष बात ये कि इसे प्रस्तुत करने वाली दो कलाकार चेन्नई से संबद्ध हैं। जी हाँ, कर्नाटक शैली में पारंगत रंजनी और गायत्री। इनके युगल स्वरों में आइए सुनते हैं अभंग गायन।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे रंजनी और गायत्री का अभंग गायन। उम्मीद है आज का ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। बहुत जल्द भारत भारती के एक और अंक के साथ हम फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए इजाजत दें अपनी दोस्त सुनीता सिंह को। नमस्कार, आप बने रहिएगा 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद के साथ। सुनते रहिए देश का चैनल, देश के लिए।
1: हिंदुस्तान के विभिन्न प्रांतों के संगीत पर केंद्रित कार्यक्रम भारत भारती। भारत भारती।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय निधि।
2: प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय निधि। अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के 13वें सूक्त से वाचन। ऋषि हैं गृत्समद और भार्गव शौनक। देवता हैं अग्नि, छंद है जगती और त्रिष्टुप।
3: ऋतुर्जनित्री तस्या अपस्परी मक्षु जात आविषद्यासु वर्धते तदाहना अभवत् पिप्युषी पयोंशोः पीयूषं प्रथमं तदुक्तम्। वर्षा से सोम की उत्पत्ति होती है, वह सोम जल में बढ़ता है। श्रेष्ठ रस वाली लता कूटकर सोमरस निकालने योग्य होती है। यह प्रशंसनीय सोमरस इंद्रदेव का हविष्यान्न है। सध्रीमा यंति परि बिभ्रती ही पयो विश्वप्सन्याय प्रभरंत भोजनम समानो अध्वा प्रवता मनुष्यदे यस्ता कृणो प्रथमं सास्युक्त्यः। सभी नदियां प्रवाहित होती हुई समुद्र को जल से भरकर मानो भोजन कराती हैं। हे इंद्रदेव, यह अभूतपूर्व कार्य करने वाले आप प्रशंसा के योग्य हैं। अन्वेको वदति यद्ददाति तद्रूपा मिनंतदपा एक ईयते विश्वा एकस्य विनुदस्ति तिक्षते यस्ता कृणोः प्रथमं सास्युक्त्यः। सूक्ष्म चेतन प्रवाहों अथवा श्रेष्ठ कर्मरत व्यक्तियों यजमानों में से एक जो कुछ देता है उसके संबंध में जानकारी देता चलता है। एक प्राप्त वस्तुओं के रूपों में भेद करता चलता है। एक हटाने योग्य को हटाकर शोधन करता चलता है। हे इंद्रदेव, आपने पहले ही इन सब कर्मों को संपन्न किया, इसलिए आप प्रशंसनीय है। प्रजाभ्य पुष्टिम विभजन्त आसते रईमिव पृष्ठम प्रभवन्त मायते असिन्वन्द्रष्टैः पितुरत्ति भोजनम यस्ता कृणोः प्रथमं सास्युक्त्यः। देवगण अभ्यागतों की तरह प्रजा के लिए ऐश्वर्य का पोषक अन्न प्रदान करते हैं। जिस प्रकार मनुष्य अपने दांतों से चबाकर भोजन करता है, उसी प्रकार आप प्रलय काल में समस्त जगत को ग्रहण कर लेते हैं। इन किए गए हितकारी कार्यों के लिए आप प्रशंसा के योग्य है। अधा कृणोः पृथ्वीम संदृशे दिवे यो धौती नाम हिहन्नारी रक्पथः तम त्वा स्तोमे भिरुदभिर न वाजिनम देवं देवा अजनंसात् स्युक्त्यः। हे वृत्रनाशक इंद्रदेव, आपने नदियों को प्रवाहित होने का मार्ग प्रशस्त किया और सूर्य के प्रकाश में दर्शनीय पृथ्वी को स्थापित किया। जिस प्रकार औषधियों को जल से सींच कर पुष्टिकारक बनाते हैं, उसी प्रकार स्तोत्रों के माध्यम से स्तुतियां करके साधक आपको बलशाली बनाते हैं। इस प्रकार आप प्रशंसा के योग्य हैं। यो भोजनम च दयसे च वर्धनमार्द्रादा शुष्कम मधुमद दुहोहित सह शेवधिम निदधिशे विवस्वति विश्वस्यैक ईशिसे सास्युक्त्यः। हे इंद्रदेव, आप प्राणियों को वृद्धि के साधन तथा भोजन प्रदान करते हैं। गीले पौधे में मधुर सूखे पदार्थ फल या अन्न को प्राप्त कराते हैं। ऐश्वर्य प्रदान करने वाले आप अकेले ही संपूर्ण विश्व के स्वामी हैं, अतः आप प्रशंसा के योग्य हैं। यह पुष्पिणीश्च प्रस्वश्च धर्मणाधिदाने व्यवनीर धारयः यश्चासमा अजनो दिद्युतो दिव उरुरुवार्वा अभितः सास्युक्त्यः। हे इंद्रदेव, आपने खेतों में फूल व फल वाली औषधियों को गुणवान बनाकर उनका संरक्षण किया है। आपने प्रकाशित सूर्य को नाना किरणें प्रदान की। आपकी महानता से ही सुदूर तक विस्तृत पर्वतों का प्रादुर्भाव हुआ। ऐसे महान आप प्रशंसा के योग्य हैं।
0: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आपने सुना ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के 13वें सूक्त से वाचन, प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम त्रिपाठी।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अक्षय निधि। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
4: नजी भर के देखा

0: नमस्कार, मैं हूं चंदन दास, गज़ल गायक। 90.8 मेगा हॉर्स पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार, मैं हूँ रेखा भारद्वाज और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 MHz पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए सुनिए कार्यक्रम भक्ति संगीत।

अपवित्र कल्पना भी उतनी ही बुरी होती है जितना बुरा अपवित्र कर्म होता है। कल्पना आत्मा का नेत्र है।

ईश्वर ही हमारा आश्रयदाता है और शक्तिदाता भी। वही आपातकाल में हमारी सबसे बड़ी सहायता करता है। मनुष्य ईश्वर की सर्वोत्कृष्ट रचना है।

ईश्वर के अनंत नाम हैं, अनंत रूप हैं, अनंत भाव हैं। उसे किसी नाम से, किसी रूप से और किसी भाव से कोई पुकारे, वह सबकी पुकार सुन सकता है, वह सबकी मनोकामना पूरी कर सकता है।

जिस हृदय में ईश्वर का प्रेम प्रवेश कर गया, उस हृदय से काम, क्रोध, अहंकार आदि सब निकल जाते हैं।

जो मनुष्य इस सत्य को पहचान जाता है कि ईश्वर ही सत्य है, बाकी सब असत्य है, अनित्य है, वह मनुष्य जल्द ही ईश्वर का दर्शन प्राप्त कर लेता है।

यदि हम कम धन में सुख का अनुभव करना नहीं जानते तो अपार धन राशि भी हमें सुखी नहीं बना सकती।

ईश्वर को पाने के लिए जिसका हृदय तरस रहा है, उसका जन्म धन्य है, उसकी माता धन्य है, कारण उसका सर्वस्व तो इस ईश्वर में समाया हुआ है।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम भक्ति संगीत 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद से, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 MHz पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं कार्यक्रम वतन का राग।

नमस्कार, वतन का राग कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भारत की सनातन संस्कृति बताती है कि भारत अध्यात्म की धरती है, साधना की धरती है। हमारे यहाँ पूजा की तीन मूल तकनीकें मानी गई हैं, तंत्र, मंत्र और यंत्र। इनमें से तंत्र भारतीय उपमहाद्वीप की एक वैविध्यपूर्ण एवं संपन्न आध्यात्मिक परिपाटी रही है। तंत्र एक विशिष्ट प्रक्रिया है जिसके माध्यम से साधक आत्मा और मन को बंधन मुक्त करता है, शरीर और मन की शुद्धि करता है, जिससे ईश्वर का अनुभव करने में सहायता प्राप्त होती है। शरीर के सात चक्रों और ईश्वरीय शक्ति के मध्य गहरा संबंध स्थापित होना ही तंत्र साधना है, जिसके लिए विविध क्रियाकलाप किए जाते हैं। इसका इतिहास बहुत पुराना है। भारतीय तंत्र साहित्य अत्यंत विशाल, प्राचीन और व्यापक है। वैदिक साहित्य से भी इसकी विशालता अधिक रही है। माना जाता है कि अद्वैत विज्ञान का जितना सूक्ष्म विश्लेषण और विवरण तंत्र ग्रंथों में है, वैसा किसी भी शास्त्र के ग्रंथों में नहीं है। आधुनिक दुनिया में तंत्र शास्त्र को पुनः स्थापित कर एक अलग पहचान दिलवाने वाले प्रकांड विद्वान, इंडोलॉजिस्ट और दार्शनिक थे पद्म विभूषण गोपीनाथ कविराज। उन्हें तंत्र पर अपने शोध ग्रंथ तांत्रिक वांग्मय में शाक्त दृष्टि के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। योग और तंत्र के प्रकांड विद्वान गोपीनाथ कविराज का जन्म 7 सितंबर 1887 को ढाका के पास धमराई गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम वैकुंठनाथ बागची था। उनकी आरंभिक शिक्षा धमराई और कंथालिया गांव में हुई। इसके बाद 7वीं कक्षा में उन्होंने KL जुबली हाई स्कूल ढाका में प्रवेश लिया और 10वीं कक्षा तक यहीं पढ़ाई की। गोपीनाथ कविराज अत्यंत मेधावी छात्र थे। सन 1906 में वो उच्च शिक्षा के लिए जयपुर चले गए और 4 साल शिक्षा ग्रहण करते हुए महाराजा कॉलेज जयपुर से कला में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। यहां उन्होंने मधुसूदन ओझा जैसे अनेक विद्वानों के साथ अध्ययन किया। सन 1910 में वो देवनाथपुरा वाराणसी चले गए। उसके बाद सन 1914 में उन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी में MA की परीक्षा उत्तीर्ण की। चूंकि बचपन में ही उनके पिताजी का निधन हो गया था, इसलिए उनका पालन पोषण उनके मामा ने किया और ढाका, कोलकाता, जयपुर, वाराणसी, प्रयागराज जैसे महत्वपूर्ण स्थानों में उनकी शिक्षा की व्यवस्था की। गोपीनाथ कविराज इतने होनहार छात्र थे कि हर जगह उन्हें छात्रवृत्ति मिलती रही। इस तरह मामा के सहयोग और अपनी योग्यता से उन्हें अच्छी शिक्षा प्राप्त हुई। उनकी शिक्षा का अंतिम चरण वाराणसी में आर्थर वेनिस के मार्गदर्शन में शुरू हुआ। वो क्वींस कॉलेज वाराणसी के प्राचार्य थे। गोपीनाथ कविराज की प्रतिभा से डॉक्टर वेनिस अत्यधिक प्रभावित थे। MA में प्रथम आने के बाद गोपीनाथ कविराज को लाहौर और अजमेर में अध्यापक का कार्य मिल रहा था, लेकिन उनकी योग्यता से प्रभावित डॉक्टर वेनिस ने उन्हें वाराणसी में ही रोक लिया और कॉलेज के सरस्वती भवन पुस्तकालय का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। इस पुस्तकालय का जो समृद्ध स्वरूप आज दिखाई देता है, उसके पीछे गोपीनाथ कविराज की अथक मेहनत है।

क्वींस कॉलेज वाराणसी में स्थित एक राजकीय इंटर कॉलेज है जिसकी स्थापना अंग्रेजी शासनकाल में हुई थी। पहले ये संस्कृत क्वींस कॉलेज के नाम से जाना जाता था। वर्तमान संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय क्वींस संस्कृत कॉलेज का प्रवर्धित रूप है, जो इससे अलग एक मानद विश्वविद्यालय है। प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद जैसे साहित्य मनीषी यहीं से शिक्षित हुए थे। ऐसे प्रतिष्ठित संस्थान के पुस्तकालय में गोपीनाथ कविराज ने अध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं दी और सरस्वती भवन पुस्तकालय की काया पलट कर दी। वो वाराणसी की ही धरती थी जिसने प्राचीन तांत्रिक दर्शन के विभिन्न पहलुओं से उन्हें अवगत कराया। सन 1918 में काशी में ही उनकी भेंट विशुद्धानंद परमहंस जी से हुई। विशुद्धानंद परमहंस एक योगी, ज्ञानी, भक्त, परम पथ के प्रदर्शक, सत्य संकल्प महात्मा थे। उन्होंने योग तथा विज्ञान दोनों ही विषयों की परम स्थिति को प्राप्त कर लिया था। ये भेंट जैसे गोपीनाथ जी के प्रारब्ध के निर्माण में जुट गई। विशुद्धानंद परमहंस ने गोपीनाथ कविराज को तंत्र, योग तथा विज्ञान के प्राचीन ज्ञान से परिचित कराकर उनका मार्गदर्शन किया। विशुद्धानंद परमहंस मूल रूप से बंगाल के थे और वाराणसी में ही उन्होंने अपनी आध्यात्मिक चिंतन धारा का प्रतिपादन किया था, जिसे बाद में गोपीनाथ कविराज ने विस्तार दिया। 21 जनवरी सन 1918 को योगीराज विशुद्धानंद परमहंस देव ने मलदहिया स्थित विशुद्धानंद कानन में गोपीनाथ जी को दीक्षित किया था। गोपीनाथ कविराज ने गुरु के मार्गदर्शन में साधना तो की ही, इसके साथ ही उनकी आध्यात्मिक चिंतन धारा को विस्तार देकर सात समंदर पार तक पहुंचा दिया। उन्होंने योग क्रिया पर आधारित कई पुस्तकें लिखीं, जिनमें से अधिकांश आज भी सरस्वती भवन में संग्रहित हैं। तंत्र साधना की शाक्त परंपरा पर उन्होंने बहुत गहन चिंतन और शोध किया, जो अत्यंत चर्चित रहा।

गोपीनाथ कविराज डॉक्टर वेनिस के बाद सन 1924 में संस्कृत महाविद्यालय के प्राचार्य नियुक्त हुए। 14 वर्षों तक वो इस पद पर बने रहे और पूरी निष्ठा के साथ इस संस्था को अपनी सेवाएं दीं। सरस्वती भवन की ओर से संस्कृत भवन ग्रंथमाला का प्रकाशन भी किया जाता था, जिसे पहले संस्कृत भवन ग्रंथ के नाम से जाना जाता था। ये संस्कृत विद्वानों के ग्रंथों के संस्करणों की एक श्रृंखला थी। गोपीनाथ कविराज इसके संपादक भी रहे। गोपीनाथ कविराज केवल तंत्र शास्त्र के ही ज्ञाता नहीं थे, बल्कि वो वेद, वेदांग, न्याय दर्शन, योग, सांख्य योग, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, दर्शन सहित तमाम शास्त्रों के ज्ञाता थे। उन्हें चलता फिरता विश्वकोश माना जाता था। भारतीय शास्त्र ही नहीं, सूफीवाद और ईसाई रहस्यवाद का भी उन्हें गहन ज्ञान था। दुनिया भर के शास्त्र जैसे उन्हें कंठस्थ थे। यही कारण है कि देश के साथ साथ विदेशों से भी तमाम विद्वान उनसे शिक्षा ग्रहण करने विश्वविद्यालय आया करते थे। भारतीय शास्त्रों के साथ साथ कुरान और बाइबल पर भी उनकी पकड़ समान रूप से थी। उनके समकालीन विद्वत जन एक स्वर में कहा करते थे कि सागर की थाह लगाई जा सकती है, लेकिन उनके ज्ञान सागर की थाह नहीं लगाई जा सकती। गोपीनाथ कविराज द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ हैं भारतीय संस्कृति और साधना, तांत्रिक साधना और सिद्धांत, साधु दर्शन एवं सत्प्रसंग, तांत्रिक वांग्मय में शाक्त दृष्टि, श्री कृष्ण प्रसंग, काशी की सारस्वत साधना, विशुद्धानंद प्रसंग, त्रिपुरा रहस्य आदि। सन 1937 में गुरु विशुद्धानंद परमहंस की मृत्यु के पश्चात उन्होंने महाविद्यालय के प्राचार्य पद से सेवानिवृत्ति ले ली और आने वाले वर्षों में उन्होंने तंत्र में अपनी साधना और विद्वत्तापूर्ण अनुसंधान दोनों को आगे बढ़ाया। वाराणसी में अपने गुरु के आश्रम की देखभाल में भी वो संलग्न रहते थे। काशी से उनका लगाव अद्भुत था। एक दो विशिष्ट अवसरों के अलावा उन्होंने इस पावन भूमि को कभी नहीं छोड़ा। इस नगरी की सुबह और शाम जैसे उन्हें एक अदृश्य आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देती थीं। साधना के साथ साथ अध्ययन और शोध सदा ही उनके जीवन से जुड़ा रहा। अपने बाद के वर्षों में उन्होंने सुप्रसिद्ध वैदिक विद्वान तथा दार्शनिक श्री अनिर्वाण के साथ स्वयं को कश्मीर की शैव परंपरा के अध्ययन हेतु समर्पित कर दिया। अपने बाद के वर्षों में वो मां आनंदमयी के सानिध्य में भी रहे। उनकी विद्वत्ता सर्वत्र मान्य थी, जिसके सम्मान में उन्हें महामहोपाध्याय की उपाधि से विभूषित किया गया था। प्रयाग, बनारस और कलकत्ता विश्वविद्यालय ने उन्हें डीलिट की उपाधि से सम्मानित किया था। साहित्य अकादमी पुरस्कार के साथ ही सन 1971 में उन्हें साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया और भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण सम्मान से अलंकृत किया। 12 जून सन 1976 को वाराणसी में ही उन्होंने अंतिम सांस ली। नमन ऐसी महान विभूति को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

यातायात के नियम आपकी हिफाजत के लिए हैं। गाड़ी चलाते समय अनावश्यक ओवरटेक ना करें। गाड़ी की गति पर नियंत्रण रखें। तेज स्पीड से गाड़ी ना चलाएं। रेडियो आजाद हिंद द्वारा जनहित में जारी।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: सुनो कहानी, कहानी जो बचपन में नानी दादी सुनाया करती थी, कहानी जो हमें स्वप्न लोक और काल्पनिक लोक में ले जाया करती हैं, कहानी जिनको सुनते सुनते हम बड़े हो गए, कहानी जो मन को छू लेती हैं, दिल में उतर जाती हैं, जीवन के अनछुए मार्मिक और ज्ञान वर्धक पहलुओं पर प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम सुनो कहानी।

नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आज़ाद हिंद। मैं हूं आपका रेडियो मित्र संदीप शर्मा और आज मैं आपको सुना रहा हूं मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी सेवा मार्ग।

तारा ने 12 वर्ष तक दुर्गा की तपस्या की, न पलंग पर सोई, न केशों को सवारा और न नेत्रों में सुरमा लगाया। पृथ्वी पर सोती, गेरुआ वस्त्र पहनती और रूखी रोटियां खाती। उसका मुख मुरझाई कली की भांति था, नेत्र ज्योतिहीन और हृदय एक शून्य बीहड़ मैदान। उसे केवल यही लौ लगी थी कि दुर्गा के दर्शन पाऊं। शरीर मोमबत्ती की तरह घुलता था, पर यह लौ दिल से न जाती थी। यही उसकी इच्छा थी, यही उसका जीवन उद्देश्य। घर के लोग उसे पागल कहते। माता समझाती, बेटी तुझे हो क्या गया है? क्या तू सारा जीवन रो रो कर काटेगी? इस समय के देवता पत्थर के होते हैं, पत्थर को भी कभी किसी ने पिघलते देखा है? देख तेरी सखियां पुष्प की भांति विकसित हो रही हैं, नदी की तरह बढ़ रही हैं, क्या तुझे मुझ पर दया नहीं आती? तारा कहती, माता अब तो जो लगन लगी तो वो लगी, या तो देवी के दर्शन पाऊंगी या यही इच्छा लिए हुए संसार से पायन कर जाऊंगी। तुम समझो मैं मर गई। इस तरह पूरे 12 वर्ष व्यतीत हो गए और तब देवी प्रसन्न हुई। रात्रि का समय था, चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। मंदिर में एक धुंधला सा घी का दीपक जल रहा था। तारा दुर्गा के पैरों पर माथा नवाए सच्ची भक्ति का परिचय दे रही थी। यकायक उस पाषाण मूर्ति देवी के तन में स्फूर्ति प्रकट हुई। तारा के रोंगटे खड़े हो गए। ये धुंधला दीपक दीप्यमान हो गया। मंदिर में चित्ताकर्षक सुगंध फैल गई और वायु में सजीवता प्रतीत होने लगी। देवी का उज्जवल रूप पूर्ण चंद्रमा की भांति चमकने लगा। ज्योतिहीन नेत्र जगमगा उठे, होंठ खुल गए, आवाज आई, तारा मैं तुमसे प्रसन्न हूं, मांग। क्या वर मांगती है? तारा खड़ी हो गई। उसका शरीर इस भांति कांप रहा था जैसे प्रातःकाल के समय कंपित स्वर में किसी कृषक के गाने की ध्वनि। उसे मालूम हो रहा था मानो वो वायु में उड़ी जा रही है। उसे अपने हृदय में उच्च विचार पूर्ण प्रकाश का आभास हो रहा था। उसने दोनों हाथ जोड़कर भक्ति भाव से कहा, भगवती तुमने मेरी 12 वर्ष की तपस्या पूरी की, किस मुख से तुम्हारा गुणानुवाद गाऊं? मुझे संसार की वे अलभ्य वस्तुएं प्रदान हों जो इच्छाओं की सीमा और मेरी अभिलाषाओं का अंत है। मैं वो ऐश्वर्य चाहती हूं जो सूर्य को भी मात दे। देवी ने मुस्कुराकर कहा, स्वीकृत है। तारा बोली, वो धन जो काल चक्र को भी लज्जित करे। देवी ने मुस्कुराकर कहा, स्वीकृत है। वो सौंदर्य जो अद्वितीय हो। देवी ने मुस्कुराकर कहा, यह भी स्वीकृत है। तारा कुंवरी ने शेष रात्रि जागकर व्यतीत की। प्रभात काल के समय उसकी आंखें क्षण भर के लिए झपक गईं। जागी तो देखा कि मैं सिर से पांव तक हीरे और जवाहरात से लदी हूं। उसके विशाल भवन के कलश आकाश से बातें कर रहे थे। सारा भवन संगमरमर से बना हुआ, अमूल्य पत्थरों से जड़ा हुआ। द्वार पर नौबत बज रही थी, उसके आनंददायक सुहावने शब्द आकाश में गूंज रहे थे। द्वार पर मीनों तक हरियाली छाई थी। दासियां स्वर्णाभूषणों से लदी हुई सुनहरे कपड़े पहने हुए चारों ओर दौड़ती थी। तारा को देखते ही वो स्वर्ण के लोटे और कटोरे लेकर दौड़ी। तारा ने देखा, मेरा पलंग हाथी दांत का है। भूमि पर बड़े कोमल बिछौने बिछे हुए हैं। सिरहाने की ओर एक सुंदर ऊंचा शीशा रखा है। तारा ने उसमें अपना रूप देखा और चकित रह गई। उसका सुंदर रूप चंद्रमा को भी लज्जित करता था। दीवार पर अनेकानेक सुप्रसिद्ध चित्रकारों के मनमोहक चित्र टंगे थे, पर ये सब के सब तारा की सुंदरता के आगे तुच्छ थे। तारा को अपनी सुंदरता का गर्व हुआ। वो कई दासियों को लेकर वाटिका में गई। वहां की छटा देखकर वो मुग्ध हो गई। वायु में गुलाब और केसर घुले हुए थे। रंग बिरंग के पुष्प वायु के मंद मंद झोंके से मतवालों की तरह झुक रहे थे। तारा ने गुलाब का फूल तोड़ लिया और उसके रंग और कोमलता की अपने अधर पल्लव से समानता करने लगी। गुलाब में वो कोमलता न थी। वाटिका के मध्य में एक बिल्लौर जटित हौज था। इसमें हंस और बतख किलोने मार रहे थे। यकायक तारा को ध्यान आया कि मेरे घर के लोग कहाँ हैं। दासियों से पूछा, उन्होंने कहा, श्रीमती वे लोग पुराने घर में हैं। तारा ने अपनी अटारी पर जाकर देखा। उसे अपना पहला घर एक साधारण झोंपड़े की तरह दृष्टिगोचर हुआ। उसकी बहनें उसकी साधारण दासियों के समान भी न थीं। मां को देखा, वो आंगन में बैठी चरखा कात रही थी। तारा सोचा करती थी कि जब मेरे दिन चमकेंगे तब मैं इन लोगों को भी अपने साथ रखूंगी और उनकी भली भांति सेवा करूंगी।
पर इस समय धन के गर्व ने उसकी पवित्र हार्दिक इच्छा को निर्बल बना दिया। उसने घर वालों को स्नेह रहित दृष्टि से देखा और तब उस मनोहर गान को सुनने चली गई जिसकी प्रतिध्वनि उसके कानों में आ रही थी। एक बार की जोर से धड़ाका हुआ, बिजली चमकी और बिजली की छटाओं में से एक ज्योति स्वरूप नवयुवक निकलकर तारा के सामने नम्रता से खड़ा हो गया। तारा ने पूछा, तुम कौन हो? नवयुवक ने कहा, श्रीमती मुझे विद्युत सिंह कहते हैं, मैं श्रीमती का आज्ञाकारी सेवक हूं। उसके विदा होते ही वायु के उष्ण झोंके चलने लगे, आकाश में एक प्रकाश दृष्टिगोचर हुआ। वो क्षण मात्र में उतरकर तारा कुंवरी के समीप ठहर गया। उसमें से एक ज्वालामुखी मनुष्य ने निकलकर तारा के पदों को चूमा। तारा ने पूछा, तुम कौन हो? उत्तर मिला, श्रीमती मेरा नाम अग्नि सिंह है, मैं श्रीमती का आज्ञाकारी सेवक हूं। वो अभी जाने भी ना पाया था कि एक बारगी सारा महल ज्योति से प्रकाशमान हो गया। जान पड़ता था सैकड़ों बिजलियां मिलकर चमक रही हैं, वायु सेवक हो गई। एक जगमगाता हुआ सिंहासन आकाश पर दिख पड़ा। वो शीघ्रता से पृथ्वी की ओर चला और तारा कुंवरी के पास जाकर ठहर गया। उससे एक प्रकाशमय रूप का बालक, जिसके रूप से गंभीरता प्रकट होती थी, निकलकर तारा के सामने शिष्ट भाव से खड़ा हो गया। तारा ने पूछा, तुम कौन हो? बालक ने उत्तर दिया, श्रीमती मुझे मिस्टर रेडियम कहते हैं, मैं श्रीमती का आज्ञा पालक हूं। धनी लोग तारा के भय से थर्राने लगे। उसके आश्चर्यजनक सौंदर्य ने संसार को चकित कर दिया। बड़े बड़े महीपति उसकी चौखट पर माथा रगड़ने लगे। जिसकी ओर उसकी कृपा दृष्टि हो जाती, वो अपना अहोभाग्य समझता, सदैव के लिए उसके बेदाम का गुलाम बन जाता। एक दिन तारा अपनी आनंद वाटिका में टहल रही थी, अचानक किसी के गाने का मनोहर शब्द सुनाई दिया। तारा विक्षिप्त हो गई। उसके दरबार में संसार के अच्छे अच्छे गवैये मौजूद थे, पर वो चित्ताकर्षकता जो इन सुरों में थी कभी अवगत न हुई थी। तारा ने गायक को बुला भेजा। एक क्षण के अनंतर वाटिका में एक साधु आया, सिर पर जटाएं, शरीर में भस्म रमाए। उसके पास ही एक टूटी हुई बीन थी, उसी से वो प्रभावशाली स्वर निकालता जो हृदय के अनुरक्त स्वरों से कहीं प्रिय था। साधु आकर हौज के किनारे बैठ गया। उसने तारा के सामने शिष्ट भाव नहीं दिखाया, आश्चर्य से इधर उधर दृष्टि नहीं डाली। उस रमणीय स्थान पर वो अपना सुर अलापने लगा। तारा का चित्त विचलित हो उठा, दिल में अपार अनुराग का संचार हुआ। मदमत्त होकर टहलने लगी। साधु के सुमनोहर मधुर आलाप से पक्षी मग्न हो गए। पानी में लहरें उठने लगीं, वृक्ष झूमने लगे। तारा ने उन चित्ताकर्षक सुरों से एक चित्र खींचते हुए देखा। धीरे धीरे चित्र प्रकट होने लगा, उसमें स्फूर्ति आई और तब वो खड़ी होकर नृत्य करने लगी। तारा चौंक पड़ी। उसने देखा कि ये मेरा ही चित्र है, नहीं मैं ही हूं, मैं ही बीन की तान पर नृत्य कर रही हूं। उसे आश्चर्य हुआ कि मैं संसार की अलभ्य वस्तुओं की रानी हूं, अथवा एक स्वर चित्र। वो सिर धुनने लगी और मतवाली होकर साधु के पैरों से जा लगी। उसकी दृष्टि में एक आश्चर्यजनक परिवर्तन हो गया। सामने के फले फूले वृक्ष, तरंगे मारता हुआ हौज और मनोहर कुंज सब लोप हो गए। केवल वही साधु बैठा बीन बजा रहा था और वो स्वयं उसकी तालों पर थिरक रही थी। वो साधु अप्रकाशमय तारा और अलौकिक सौंदर्य की मूर्ति बन गया। जब मधुर आलाप बंद हुआ, तब तारा होश में आई। उसका चित्त हाथ से जा चुका था, वो उस विलक्षण साधु के हाथों बिक चुकी थी। तारा बोली, स्वामी जी, ये महल, ये सुख, ये सौंदर्य सब आपके चरण कमल पर निछावर है। इस अंधेरे महल को अपने कोमल चरणों से प्रकाशमान कीजिए। साधुओं को महल और धन का क्या काम? नहीं नहीं, मैं इस घर में नहीं ठहर सकता। महाराज, संसार के सारे सुख आपके लिए उपस्थित हैं, लेकिन मुझे सुखों की कामना नहीं। मैं आजीवन आपकी दासी रहूंगी। ये कहकर तारा ने आईने में अपनी अलौकिक सौंदर्य की छटा देखी और उसके नेत्रों में चंचलता आ गई। नहीं तारा कुंवरी, मैं इस योग्य नहीं हूं। यह कहकर साधु ने बीन उठाई और द्वार की ओर चला। तारा का गर्व टूक टूक हो गया, लज्जा से सिर झुक गया। वो मूर्छित होकर भूमि पर गिर गई। मन में सोचा, मैं धन में, ऐश्वर्य में, सौंदर्य में जो अपनी समता नहीं रखती, वो एक साधु की दृष्टि में इतनी तुच्छ। तारा को अब किसी प्रकार चैन नहीं था। उसे अपना भवन ऐश्वर्य भयानक मालूम होने लगा।
बस साधु का एक चंद्र स्वरूप उसकी आंखों में नाच रहा था और उसका स्वर्गीय गान कानों में गूंज रहा था। उसने अपने गुप्तचरों को बुलाया और साधु का पता लगाने की आज्ञा दी। बहुत छानबीन करने के पश्चात उसकी कुटी का पता लगा। तारा नित्य प्रति वायुयान पर बैठकर साधु के पास जाती, कभी उस पर लाल जवाहर लुटाती, कभी रत्न और आभूषण की छटा दिखाती। पर साधु इससे तनिक भी विचलित ना हुआ, तारा के माया जाल का उस पर कोई असर ना हुआ। तब तारा कुंवरी फिर दुर्गा के मंदिर में गई और देवी के चरणों पर सिर रखकर बोली, माता तुमने मुझे संसार के सारे दुर्लभ पदार्थ प्रदान किए। मैंने समझा था कि ऐश्वर्य में संसार को दास बना लेने की शक्ति है, पर अब मुझे ज्ञान हुआ है कि प्रेम पर ऐश्वर्य सौंदर्य और वैभव का कुछ भी अधिकार नहीं। अब एक बार मुझ पर फिर से वही कृपा दृष्टि हो, कुछ ऐसा कीजिए कि जिस निष्ठुर के प्रेम में मैं मरी जा रही हूं उसे भी मुझे देखे बिना चैन ना आवे, उसकी आंखों में भी नींद हराम हो जाए, वो भी मेरे प्रेम मद में चूर हो जाए। देवी के होंठ खुले, वो मुस्कुराई, उसके अधर पल्लव विकसित हुए, आवाज सुनाई दी, तारा मैं संसार के सारे पदार्थ प्रदान कर सकती हूं, पर स्वर्ग सुख मेरी शक्ति से बाहर है। प्रेम स्वर्ग सुख का मूल है, लेकिन माता संसार के सारे ऐश्वर्य मुझे जंजाल जान पड़ते हैं, बताइए मैं अपने प्रीतम को कैसे पाऊंगी। उसका एक ही मार्ग है, पर वो है बहुत कठिन, भला तुम उस पर चल सकोगी? वो कितना ही कठिन हो मैं उस मार्ग का अवलंबन अवश्य करूंगी। तो सुनो, वो सेवा मार्ग है, सेवा करो, प्रेम सेवा से ही मिल सकता है। तारा ने अपने बहुमूल्य आभूषणों और रंगीन वस्त्रों को उतार दिया, दासियों से विदा हुई, राजभवन को त्याग दिया, अकेले नंगे पैर साधु की कुटी में चली आई और सेवा मार्ग का अवलंबन किया। वो कुछ रात रही उठती, कुटी में झाड़ू देती, साधु के लिए गंगा से जल लाती, जंगलों से पुष्प चुनती, साधु नींद में होते तो वो उन्हें पंखा झलती, जंगली फूल तोड़ लाती और केले के पत्तल बनाकर साधु के सम्मुख रखती। साधु नदी में स्नान करने जाया करते थे, तारा रास्ते के कंकड़ चुनती। उसने कुटी के चारों ओर पुष्प लगाए, गंगा से पानी लाकर उन्हें सींचती, उन्हें हरा भरा देखकर प्रसन्न होती। उसने मदार की रुई बटोरी, साधु के लिए नर्म गद्दे तैयार किए। अब कोई और कामना न थी, सेवा स्वयं अपना पुरस्कार और फल थी। तारा को कई कई दिन उपवास करना पड़ता था, हाथों में गड्ढे पड़ गए, पैर कांटों से छलनी हो गए, धूप से कोमल गात मुरझा गया, पर उसके हृदय में अब स्वार्थ और गर्व का शासन न था, अब वहां प्रेम का राज था। वहां अब उसे सेवा की लगन थी, जिससे कलुषता की जगह आनंद का स्रोत बहता है और कांटे पुष्प बन जाते हैं, जहां अश्रुधारा की जगह नेत्रों से अमृत जल की वर्षा होती और दुख विलाप की जगह आनंद के राग निकलते हैं, जहां के पत्थर रुई से ज्यादा कोमल हैं और शीतल वायु से भी मनोहर। तारा भूल गई कि मैं सौंदर्य में अद्वितीय हूं, धन विलासिनी तारा अब केवल प्रेम की दासी थी। साधु को वन के खगों और मृगों से प्रेम था, वे कुटी के पास एकत्रित हो जाते, तारा उन्हें पानी पिलाती, दाने चुगाती, गोद में लेकर उनको दुलार करती। विषधर सांप और भयानक जंतु उसके प्रेम के प्रभाव से उसके सेवक हो गए। बौधा रोगी मनुष्य साधु के पास आशीर्वाद लेने आते थे, तारा रोगियों की सेवा करती, जंगल से जड़ी बूटियां ढूंढ लाती, उनके लिए औषधि बनाती, उनके घाव धोती, घावों पर मरहम रखती, रात भर बैठी उन्हें पंखा झलती। साधु के आशीर्वाद को उसकी सेवा प्रभाव युक्त बना देती थी। इस प्रकार कितने ही वर्ष बीत गए। गर्मी के दिन थे, पृथ्वी तवे की तरह जल रही थी, हरे भरे वृक्ष सूख जाते थे, गंगा गर्मी से सिमट गई थी। तारा को पानी लेने के लिए बहुत दूर रेत में चलना पड़ता था, उसका कोमल अंग चूर चूर हो जाता, जलती हुई रेत में तलवे भुन जाते। इसी दशा में एक दिन वो हताश होकर एक वृक्ष के नीचे क्षण भर दम लेने के लिए बैठ गई। उसके नेत्र बंद हो गए, उसने देखा देवी मेरे सम्मुख खड़ी कृपा दृष्टि से मुझे देख रही हैं। तारा ने दौड़कर उनके पदों को चूमा। देवी ने पूछा, तारा तेरी अभिलाषा पूरी हुई? हां माता, मेरी अभिलाषा पूरी हुई। तुझे प्रेम मिल गया? नहीं माता, मुझे उससे भी उत्तम पदार्थ मिल गया। मुझे प्रेम के हीरे के बदले सेवा का पारस मिल गया। मुझे ज्ञान हुआ कि
कि प्रेम सेवा का चाकर है। सेवा के सामने सिर झुकाकर अब मैं प्रेम भिक्षा नहीं चाहती। अब मुझे किसी दूसरे सुख की अभिलाषा नहीं। सेवा ने मुझे प्रेम आदर सुख सबसे निवृत्त कर दिया। देवी इस बार मुस्कुराई नहीं, उसने तारा को हृदय से लगाया और दृष्टि से ओझल हो गई। संध्या का समय था, आकाश में तारे ऐसे चमकते थे जैसे कमल पर पानी की बूंदे। वायु में चित्ताकर्षक शीतलता आ गई थी। तारा एक वृक्ष के नीचे खड़ी चिड़ियों को दाना चुगा रही थी कि यकायक साधु ने आकर उसके चरणों पर सिर झुकाया और बोला, तारा तुमने मुझे जीत लिया। तुम्हारा ऐश्वर्य धन और सौंदर्य जो कुछ ना कर सका वो तुम्हारी सेवा ने कर दिखाया। तुमने मुझे अपने प्रेम में आसक्त कर लिया। अब मैं तुम्हारा दास हूं। बोलो तुम मुझसे क्या चाहती हो। तुम्हारे संकेत पर अब मैं अपना योग और वैराग्य सब कुछ निछावर कर देने के लिए प्रस्तुत हूं। तारा ने कहा, स्वामी जी मुझे अब कोई इच्छा नहीं, मैं केवल सेवा की आज्ञा चाहती हूं। लेकिन मैं दिखा दूंगा कि योग साधकर भी मनुष्य के हृदय निर्जीव नहीं होता। मैं भंवरे के सदृश तुम्हारे सौंदर्य पर मंडराऊंगा, पपीहे की तरह तुम्हारे प्रेम की रट लगाऊंगा। हम दोनों प्रेम की नौका पर ऐश्वर्य और वैभव नदी की सैर करेंगे, प्रेम कुंजों में बैठकर प्रेम चर्चा करेंगे और आनंद के मनोहर राग गाएंगे। तारा ने कहा, स्वामी जी सेवा मार्ग पर चलकर मैं अब अभिलाषाओं से पूरी हो गई। अब हृदय में और कोई इच्छा शेष नहीं। साधु ने इन शब्दों को सुना, तारा के चरणों पर माथा नवाया और गंगा की ओर चल दिया।

तो दोस्तों, ये था आज का कार्यक्रम सुनो कहानी। हम फिर हाजिर होंगे किसी नए लेखक की नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है।

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है।

पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: नमस्कार श्रोताओं, 90.8 पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। प्रस्तुत है कार्यक्रम कला कल्लोलनी।

0: कला कल्लोलनी। आज के इस कार्यक्रम में हम आपसे बात करने वाले हैं पंडित विष्णु नारायण भातखंडे के बारे में, जिन्होंने संगीत को स्वर से, शास्त्र और परंपरा से पाठशाला तक पहुंचाया। आप सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं। नमस्कार, मैं हूं वर्षा सिंह।
1: और मैं रत्नेश सोनी।
0: हमारे खास कार्यक्रम कला कल्लोलनी में, जहां हम आपको भारतीय कला और संस्कृति की उन विलक्षण विभूतियों से रूबरू कराते हैं, जिनकी साधना ने हमारी विरासत को समृद्ध किया।
1: आज का ये सफर हमें लेकर चलेगा भारतीय शास्त्रीय संगीत की उस दुनिया में, जहां स्वर केवल सुनाई नहीं देते बल्कि परंपरा, साधना और ज्ञान की एक पूरी कहानी कहते हैं।
0: और आज हम आपको परिचित करवाएंगे संगीत की एक ऐसी विलक्षण विभूति से, जिनकी वजह से भारतीय शास्त्रीय संगीत की अनेक परंपराएं केवल मंचों तक सीमित नहीं रही, बल्कि शास्त्र, स्वर लिपि और व्यवस्थित शिक्षा के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती नहीं।
1: एक ऐसे संगीत मनीषी जिन्होंने संगीत को केवल सुना नहीं, उसे समझा, खोजा, लिखा और व्यवस्थित किया। आज की हमारी कहानी है पंडित विष्णु नारायण भातखंडे की, उस महान संगीत शास्त्री की, जिन्होंने भारतीय संगीत की विशाल और विविध परंपरा को एक व्यवस्थित स्वरूप देने में अपना जीवन समर्पित कर दिया।
0: तो आइए संगीत की इसी ज्ञान यात्रा पर हमारे साथ चलिए और जानिए उस साधक की कहानी, जिसने स्वरों को केवल आवाज नहीं रहने दिया बल्कि उन्हें शास्त्र और आने वाली पीढ़ियों की धरोहर बना दिया।

0: आज हम किसी राग का नाम लेते हैं, उसके आरोह अवरोह की बात करते हैं, किसी बंदिश को स्वर लिपि में देखते हैं, किसी संगीत विद्यालय में व्यवस्थित पाठ्यक्रम के माध्यम से संगीत सीखते हैं, या 10 थाटों के आधार पर रागों की दुनिया को समझने का प्रयास करते हैं, तो इन सब के पीछे हमें एक ऐसे व्यक्ति की अथक साधना दिखाई देती है जिसने अपना जीवन संगीत को समझने, खोजने, लिखने, व्यवस्थित करने और आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित करने में लगा दिया।
1: पंडित विष्णु नारायण भातखंडे का जन्म 10 अगस्त 1860 को बंबई के वालकेश्वर में हुआ था। उनका परिवार शिक्षित और संस्कारवान था। उनके पिता स्वयं संगीत के प्रति अनुराग रखते थे और अपने बच्चों को संगीत सीखने के लिए प्रोत्साहित करते थे। बचपन में संगीत उनके जीवन में आया, लेकिन ये उस समय उनका पेशा नहीं था।
0: उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की, कानून की पढ़ाई की और वकालत के क्षेत्र में भी गए। उनके सामने एक सम्मानजनक और सुरक्षित पेशेवर जीवन था, लेकिन मन का रास्ता अक्सर जीवन की तय राह से अलग होता है। भातखंडे जी के भीतर संगीत के लिए जो जिज्ञासा थी, वह धीरे धीरे इतनी गहरी होती गई कि कानून उनके जीवन का केंद्र नहीं रह गया।
1: सन 1884 में वे गायन उत्तेजक मंडली से जुड़े। ये जुड़ाव उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। यहाँ उन्होंने केवल संगीत सुना नहीं, बल्कि संगीत की शिक्षा, प्रस्तुति और विभिन्न परंपराओं को निकट से समझा। उन्होंने ध्रुपद और ख्याल जैसी परंपराओं की बंदिशें सीखी और अलग अलग संगीतज्ञों के संपर्क में आए। यहीं से उनके भीतर एक बड़ा प्रश्न आकार लेने लगा। आखिर भारतीय शास्त्रीय संगीत का इतना विशाल संसार व्यवस्थित रूप में लिखा क्यों नहीं गया? राग इतने हैं, घराने इतने हैं, बंदिशें इतनी हैं, गायकी की इतनी शैलियां हैं, तालों की इतनी विविधता है, लेकिन इन सब का व्यवस्थित दस्तावेज कहाँ है?
0: संगीत का अधिकांश ज्ञान गुरु से शिष्य तक मौखिक रूप में पहुंचता था। गुरु गाते थे, शिष्य सुनता था। गुरु बजाते थे, शिष्य दोहराता था। गुरु सिखाते थे, शिष्य स्मृति में उसे संजोता था। ये परंपरा अपने आप में अत्यंत समृद्ध थी। उसमें केवल स्वर नहीं, बल्कि अनुभव, भाव, उच्चारण, नींद, कमक, लय और प्रस्तुति की सूक्ष्मता भी पीढ़ी दर पीढ़ी जाती थी। लेकिन इसकी एक सीमा भी थी। यदि किसी बंदिश को जानने वाला अंतिम व्यक्ति उसे आगे ना पहुंचा पाए, तो वह रचना उसके साथ ही समाप्त हो सकती थी। यदि किसी घराने की कोई विशिष्ट परंपरा अगली पीढ़ी तक ना पहुंच पाए, तो उसके साथ संगीत का एक पूरा अंश खो सकता था।
1: भातखंडे ने इसी खतरे को बहुत पहले पहचान लिया था। उन्होंने तय किया कि भारतीय संगीत को केवल सुना और याद नहीं किया जाना चाहिए, उसे लिखा भी जाना चाहिए। और यही विचार आगे चलकर भारतीय संगीत के इतिहास में एक बड़े परिवर्तन का कारण बना। भातखंडे जी ने भारत की यात्रा की। वे अलग अलग क्षेत्रों में गए, संगीतज्ञों से मिले, घरानों के कलाकारों से मिले, गायकों और वादकों से बंदिशें सुनी, संगीत के पुराने ग्रंथों का अध्ययन किया। उन्होंने केवल एक परंपरा को अंतिम सत्य मानकर काम नहीं किया, वे सुनते थे, प्रश्न करते थे, तुलना करते थे और फिर निष्कर्ष तक पहुंचते थे। उनकी यात्राएं वास्तव में भारत की संगीत यात्राएं थी।
0: वैसे समय में यह काम कर रहे थे जब न रिकॉर्डिंग की आधुनिक सुविधा थी और न आज की तरह किसी रचना को तुरंत ऑडियो या वीडियो में सुरक्षित कर लेने की तकनीक। किसी कलाकार से कोई बंदिश सुनना और उसे उसी समय ध्यानपूर्वक लिख लेना, यह अपने आप में असाधारण धैर्य और स्मरण शक्ति का काम था। उन्होंने अनेक घरानों से प्राप्त पारंपरिक रचनाओं को संकलित किया और अपनी विकसित की हुई स्वरलिपि पद्धति के माध्यम से उन्हें लिखित रूप दिया।
1: यहीं से भातखंडे जी के काम का दूसरा बड़ा पक्ष सामने आता है। उन्होंने संगीत के लिए एक ऐसी स्वरलिपि विकसित की जिसके माध्यम से राग, बंदिश और ताल को लिखित रूप में समझना संभव हुआ। आज किसी विद्यार्थी के सामने जब किसी बंदिश की स्वरलिपि रखी जाती है तो वो उसे देखकर अभ्यास कर सकता है। वो केवल ये नहीं कहता कि मेरे गुरु ने मुझे ये बंदिश सिखाई थी। अब उसके पास उसे देखने, पढ़ने और दोहराने का एक लिखित आधार भी होता है। ये परिवर्तन बहुत बड़ा था क्योंकि स्वर लिपि ने संगीत की स्मृति को कागज पर स्थान दिया। लेकिन यहाँ एक बात समझना जरूरी है, स्वर लिपि संगीत का पूरा शरीर नहीं होती।
0: कागज पर स्वर लिखे जा सकते हैं, लेकिन आवाज की पूरी मिठास, स्वर का कंपन, मींड की गहराई, किसी कलाकार की व्यक्तिगत अभिव्यक्ति या राग के भाव का पूरा अनुभव केवल लिखे हुए अक्षरों से नहीं मिल सकता। भातखंडे जी स्वयं संगीत की जीवंत परंपरा को जानते थे, इसलिए उनकी स्वरलिपि का महत्व इस बात में है कि उसने संगीत को संरक्षित करने और सिखाने का एक मजबूत आधार दिया।
1: इसी के साथ उन्होंने एक और बड़ी समस्या को संबोधित किया, रागों का वर्गीकरण। रागों का वर्गीकरण भारतीय संगीत परंपरा में रागों का संसार अत्यंत विशाल था। अलग अलग कालखंडों और परंपराओं में रागों को समझाने और वर्गीकृत करने के अलग अलग तरीके रहे।
0: भातखंडे जी ने जटिलता को सरल बनाने के लिए 10 थाटों की व्यवस्था प्रस्तुत की। बिलावल, कल्याण, खमाज, भैरव, पूर्वी, मारवा, काफी, आसावरी, भैरवी और तोड़ी, इन 10 थाटों को आधार बनाकर बड़ी संख्या में रागों को समझने का एक व्यवस्थित ढांचा तैयार किया गया।
1: ध्यान देने वाली बात यह है कि हर राग को किसी एक थाट में पूरी तरह बांध देना हमेशा संभव नहीं है। राग केवल स्वरों का गणित नहीं है, राग का अपना चलन है, उसकी अपनी पकड़ है, उसका आरोह अवरोह है, उसकी अपनी प्रकृति है, उसका समय है, उसका भाव है, उसकी विशिष्टता है। लेकिन अध्ययन के लिए एक व्यवस्थित आधार आवश्यक था।
0: भातखंडे जी का थाट प्रणाली का योगदान इसी अर्थ में महत्वपूर्ण है। उन्होंने संगीत सीखने वाले विद्यार्थियों के सामने एक ऐसा नक्शा रख दिया जिसके सहारे वे रागों की विशाल दुनिया में प्रवेश कर सके। जैसे किसी विशाल शहर को समझने के लिए पहले उसके मुख्य मार्गों का नक्शा चाहिए होता है, वैसे ही रागों की विशाल दुनिया को समझने के लिए थाट एक व्यवस्थित आधार बन गए।
1: लेकिन भातखंडे जी का काम केवल वर्गीकरण तक सीमित नहीं था, उन्होंने संगीत के सिद्धांत और व्यवहार के बीच पुल बनाने का काम किया। भारतीय संगीत के प्राचीन ग्रंथों में संगीत का विशाल शास्त्रीय साहित्य मौजूद था। दूसरी ओर अपने समय के संगीतज्ञ व्यवहार में संगीत की अलग अलग परंपराएं निभा रहे थे। भातखंडे जी ने दोनों संसारों को साथ रख कर देखा।
0: उन्होंने पुराने संस्कृत ग्रंथों का अध्ययन किया, उन्होंने प्राचीन संगीत परंपराओं को समझने का प्रयास किया, साथ ही उन्होंने जीवित संगीतज्ञों से सीखा कि वास्तव में उनके समय में राग कैसे गाए जा रहे हैं। इसका परिणाम ये हुआ कि वे केवल पुस्तकालय के विद्वान नहीं बने और न केवल मंच के संगीतज्ञ,
1: वे शोधकर्ता भी थे, संगीत शास्त्री भी थे, शिक्षक भी थे और संगीत के दस्तावेजीकरण के अग्रदूत भी। उनका काम हमें ये बताता है कि परंपरा को बचाने का अर्थ उसे केवल अतीत में रख देना नहीं है, परंपरा को बचाने का अर्थ है उसे समझना, उसके मूल तत्वों को पहचानना और उसे आने वाली पीढ़ी तक पहुंचने योग्य बनाना। भातखंडे जी ने यही किया।
0: उन्होंने अपने अध्ययन और यात्राओं के आधार पर अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथ तैयार किए। उनकी प्रमुख कृतियों में हिंदुस्तानी संगीत पद्धति और क्रमिक पुस्तक मालिका का विशेष महत्व है। हिंदुस्तानी संगीत पद्धति 4 खंडों में प्रकाशित हुई, जबकि क्रमिक पुस्तक मालिका 6 भागों में विस्तृत हुई। इन ग्रंथों में रागों के सिद्धांत के साथ साथ अनेक रचनाओं को स्वरलिपि में दर्ज किया गया।
1: आज भी ये पुस्तकें हिंदुस्तानी संगीत के अध्ययन में महत्वपूर्ण संदर्भ मानी जाती हैं। यहाँ एक दृश्य की कल्पना कीजिए। एक ओर गुरु अपने शिष्य को बंदिश सिखा रहा है और दूसरी ओर कोई व्यक्ति उसी परंपरा को ध्यान पूर्वक सुनकर कागज पर दर्ज कर रहा है। एक व्यक्ति संगीत को अगली पीढ़ी तक आवाज के माध्यम से पहुंचा रहा है, दूसरा व्यक्ति उसी संगीत की स्मृति को शब्द और स्वर के माध्यम से स्थायी बना रहा है। भातखंडे जी की भूमिका कुछ ऐसी ही थी।
0: उन्होंने कलाकारों के अनुभव को विद्वानों के अध्ययन से जोड़ा, उन्होंने परंपरा को पुस्तक से जोड़ा, उन्होंने मौखिक ज्ञान को लिखित ज्ञान से जोड़ा और सबसे महत्वपूर्ण, उन्होंने संगीत को केवल कुछ परिवारों या घरानों तक सीमित रहने के बजाय व्यापक शिक्षा व्यवस्था में पहुंचाने की दिशा में काम किया।
1: यहीं से उनकी दृष्टि का एक और महत्वपूर्ण पक्ष सामने आता है, संगीत शिक्षा का लोकतंत्रीकरण। उनके समय में शास्त्रीय संगीत सीखना मुख्यतः गुरु शिष्य परंपरा और संगीतज्ञ परिवारों तक सीमित था। ये व्यवस्था अपनी जगह अत्यंत प्रभावशाली थी, लेकिन समाज के हर व्यक्ति को उसमें प्रवेश मिलना आसान नहीं था। भातखंडे जी चाहते थे कि संगीत की शिक्षा व्यवस्थित संस्थानों में उपलब्ध हो। इसी विचार ने संगीत महाविद्यालयों और पाठ्यक्रमों की दिशा को प्रभावित किया।
0: लखनऊ में 1926 में मॉरिस कॉलेज ऑफ म्यूजिक की स्थापना हुई। इसमें राय उमानाथ बली और राय राजेश्वर बली जैसे सहयोगियों की महत्वपूर्ण भूमिका थी और भातखंडे ने संगीत के पाठ्यक्रम तथा शैक्षणिक व्यवस्था को आकार देने में निर्णायक योगदान दिया। बाद में यही संस्था भातखंडे के नाम से जानी गई और आज भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हो चुकी है।
1: लखनऊ का ये संस्थान केवल एक इमारत नहीं था, ये उस विचार का प्रतीक था कि संगीत को भी गंभीर शैक्षणिक अनुशासन के रूप में पढ़ाया जा सकता है, कि संगीत केवल मनोरंजन नहीं, संगीत अध्ययन का विषय है, संगीत शोध का विषय है, संगीत में व्याकरण है, संगीत में इतिहास है, संगीत में सौंदर्य शास्त्र है और संगीत में ज्ञान की एक पूरी परंपरा है।
0: भातखंडे जी ने इसी सोच को संस्थागत रूप दिया। उन्होंने ग्वालियर और बड़ौदा जैसे केंद्रों में भी व्यवस्थित संगीत शिक्षा के विकास में योगदान दिया। उनकी दृष्टि में विद्यार्थियों को केवल राग गाना नहीं चाहिए, उसे यह भी समझना चाहिए कि राग की संरचना क्या है, ताल क्या है, स्वर का संबंध क्या है, रचना की प्रकृति क्या है, परंपरा का इतिहास क्या है और सबसे महत्वपूर्ण जो वह गा रहा है उसके पीछे का ज्ञान क्या है। यही वह दृष्टि थी जिसने संगीत शिक्षा को एक नए आयाम तक पहुंचाया।
1: भातखंडे का एक और महत्वपूर्ण योगदान था संगीत के अलग अलग प्रवाहों के बीच संवाद। भारत में हिंदुस्तानी और कर्नाटक दोनों महान शास्त्रीय संगीत परंपराएं हैं। दोनों की अपनी भाषा है, अपनी संरचना है, अपनी परंपराएं हैं और अपना सौंदर्य है।
0: भातखंडे जी ने इन परंपराओं को एक दूसरे से समझने और संवाद करने की दिशा में भी प्रयास किए। उन्होंने संगीत सम्मेलनों की परंपरा को बढ़ावा दिया जिससे अलग अलग क्षेत्रों और संगीत प्रणालियों के कलाकारों को संवाद का अवसर मिला। ये विचार आज के समय में और भी महत्वपूर्ण लगता है,
1: क्योंकि किसी कला को मजबूत बनाने का एक रास्ता ये नहीं है कि वो स्वयं को बंद कर ले, बल्कि ये है कि वो अपनी पहचान को बनाए रखते हुए दूसरे अनुभवों से संवाद करे। भातखंडे की दृष्टि में शोध का अर्थ केवल पुराने ग्रंथ पढ़ना नहीं था, शोध का अर्थ था सुनना, प्रश्न करना, तुलना करना, यात्रा करना, कलाकारों से मिलना, परंपराओं को समझना और फिर निष्कर्ष निकालना। इस दृष्टि से वे अपने समय से आगे दिखाई देते हैं।
0: आज हम जिस शब्द का बहुत इस्तेमाल करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन यानी दस्तावेजीकरण, भारत खंडे जी ने उस काम को एक सदी से भी पहले गंभीरता से किया। आज हमारे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग है, वीडियो है, डिजिटल आर्काइव है, क्लाउड स्टोरेज है।
1: लेकिन उस समय कागज, कलम और कान और उनका असाधारण धैर्य ही उनके सबसे बड़े साधन थे। उन्होंने संगीत को सुनकर लिखा, लिखकर व्यवस्थित किया, व्यवस्थित करके प्रकाशित किया और प्रकाशित करके विद्यार्थियों तक पहुंचाया। ये यात्रा भातखंडे जी की सबसे बड़ी विरासतों में से एक है।
0: उनकी निजी जिंदगी में भी ऐसे क्षण आए जिन्होंने उनके जीवन की दिशा बदल दी। सन 1900 में उनकी पत्नी का निधन हुआ और 1903 में उनकी बेटी भी नहीं रही। इन निजी आघातों के बाद उन्होंने अपने जीवन को लगभग पूरी तरह संगीत अध्ययन और संगीत सेवा के लिए समर्पित कर दिया। कभी कभी जीवन के सबसे बड़े दुख मनुष्य को उस काम की ओर धकेल देते हैं जिसे वह भीतर से अपना मानता है।
1: अब वो समय आ गया था जब भातखंडे जी के लिए स्वयं के लिए संगीत से इतर कोई दृष्टि नजर नहीं आ रही थी। संगीत और सिर्फ संगीत जीवन का उद्देश्य बन गया और इसके बाद उनके जीवन का बड़ा हिस्सा यात्रा, अध्ययन, लेखन और संगीत के पुनर्गठन में बीता। उन्होंने अनेक बंदिशें एकत्र की, अलग अलग घरानों की परंपराओं को समझा, पुराने ग्रंथों का अध्ययन किया। तब एक नई चुनौती उनको महसूस हुई।
0: अलग अलग घरानों में एक ही राग के रूप, बंदिश और प्रस्तुति में भी अंतर मिल सकता था। भातखंडे जी को इन विविधताओं के बीच से संगीत का एक व्यवस्थित व्याकरण निकालना था। ये किसी एक दिन का काम नहीं था, ये दशकों की साधना थी और यही कारण है कि उनके योगदान को केवल 10 थाट देने वाले व्यक्ति के रूप में देखना उनके काम को छोटा कर देना होगा।
1: थाट उनकी विरासत का केवल एक हिस्सा है, उनकी असली विरासत है एक विशाल, जीवंत और विविध संगीत परंपरा को व्यवस्थित ढंग से समझने का प्रयास। उनकी असली विरासत है स्वर लिपि, उनकी असली विरासत है रचनाओं का संकलन, उनकी असली विरासत है संगीत शिक्षा की संस्थागत व्यवस्था, उनकी असली विरासत है संगीत शास्त्र को आधुनिक अध्ययन की भाषा देना।
0: और उनकी सबसे बड़ी विरासत शायद यह है कि उन्होंने हमें सिखाया कि किसी परंपरा से प्रेम करना केवल उसकी प्रशंसा करना नहीं है, उसे सहेज कर पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करने के लिए अथक प्रयास भी जरूरी है।
1: हम अक्सर इतिहास को महान कलाकारों के नाम से याद करते हैं, तानसेन का नाम लेते हैं, उस्ताद बड़े गुलाम अली खां को याद करते हैं, पंडित भीमसेन जोशी को याद करते हैं, पंडित रविशंकर को याद करते हैं, लता मंगेशकर, कुमार गंधर्व, उस्ताद अमीर खां, ऐसे असंख्य कलाकारों की आवाजें हमारी सांस्कृतिक स्मृति का हिस्सा हैं।
0: लेकिन कलाकारों की उपलब्धियों के पीछे एक पूरी ज्ञान परंपरा भी होती है, उसे लिखने वाले लोग होते हैं, उसे संकलित करने वाले लोग होते हैं, उसे पढ़ाने वाले लोग होते हैं, उसे संस्थागत रूप देने वाले लोग होते हैं।
1: पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी उसी परंपरा के महान व्यक्तित्व थे। वे मंच पर खड़े होकर अपने नाम की लोकप्रियता के पीछे नहीं भागे, उन्होंने उस संगीत की नींव मजबूत करने का काम किया जिसे आने वाली पीढ़ियां मंच पर प्रस्तुत करेंगी। इसीलिए उन्हें संगीत का वास्तुकार कहना असंगत नहीं होगा।
0: एक वास्तुकार स्वयं हमेशा उस भवन के भीतर दिखाई नहीं देता, लेकिन भवन की संरचना उसके विचारों को व्यक्त करती है। भातखंडे जी भी कुछ ऐसे ही थे।
1: आज यदि संगीत का विद्यार्थी रागों को एक व्यवस्थित प्रणाली में पढ़ता है तो उसमें भातखंडे की छाप है। यदि विद्यार्थी बंदिश को स्वर लिपि में पढ़कर अभ्यास करता है तो उसमें भातखंडे की छाप है। यदि संगीत के पाठ्यक्रम में सिद्धांत और व्यवहार दोनों साथ पढ़ाए जाते हैं तो उसमें भातखंडे की दृष्टि दिखाई देती है।
0: यदि संगीत के पुराने ज्ञान को पुस्तकों में सुरक्षित देखकर हम आज उसका अध्ययन कर पा रहे हैं तो उसमें भातखंडे की तपस्या का अंश है, और शायद इसी कारण उनके योगदान को समझना आज भी जरूरी है। क्योंकि हम जिस डिजिटल युग में जी रहे हैं उसमें सूचना को सुरक्षित करना पहले से आसान है, लेकिन ज्ञान को सही रूप में सुरक्षित करना अभी भी उतना ही कठिन है। एक वीडियो बना लेना दस्तावेजीकरण नहीं है, एक ऑडियो रिकॉर्ड कर लेना भी पर्याप्त नहीं है।
1: दस्तावेजीकरण का अर्थ है संदर्भ को समझना, कलाकार को समझना, परंपरा को समझना, उसके स्रोत को दर्ज करना, उसकी विविधताओं को सुरक्षित रखना और उसे ऐसी व्यवस्था में रखना कि भविष्य का विद्यार्थी उसे समझ सके। भातखंडे जी का काम हमें इस गंभीर दस्तावेजीकरण की प्रेरणा देता है।
0: अगर आप संगीत के विद्यार्थी नहीं हैं, सिर्फ शौकिया तौर पर भी जब आप भातखंडे जी की लिखी संगीत की किताबें पढ़ते हैं तो आप संगीत को समझने में मुश्किलों का सामना नहीं करते। बस यही समझ आती है भातखंडे जी की अथक लगन और मेहनत।
1: क्या केवल ये कह देना पर्याप्त है कि हमारी संस्कृति महान है? नहीं, महान संस्कृति को महान बनाए रखने के लिए मेहनत भी करनी पड़ती है। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी ने यही किया।
0: उनकी कहानी हमें एक और बात सिखाती है, कला केवल कलाकार की नहीं होती, कला के पीछे समाज होता है। गुरु होते हैं, शिष्य होते हैं, शोधकर्ता होते हैं, और वे लोग भी होते हैं जो चुपचाप अपना पूरा जीवन इस बात में लगा देते हैं कि कला का ज्ञान नष्ट ना हो। भातखंडे जी ऐसे ही व्यक्ति थे।
1: उनका जीवन हमें ये बताता है कि किसी विरासत को बचाने के लिए केवल भावुक होना पर्याप्त नहीं, उसके लिए अनुशासन चाहिए, अध्ययन चाहिए, जिज्ञासा चाहिए और सबसे बढ़कर धैर्य चाहिए।
0: यही कारण है कि उनका नाम भारतीय संगीत के इतिहास में एक ऐसे मोड़ के रूप में दिखाई देता है जहां परंपरा ने आधुनिक शैक्षणिक संरचना से संवाद शुरू किया। हमें उस विचार को भी याद करना चाहिए जो उनके जीवन के केंद्र में था, ज्ञान को सुरक्षित करना, परंपरा को समझना और उसे सबके लिए उपलब्ध कराना। क्योंकि संगीत केवल सुनने की चीज नहीं है, संगीत एक ज्ञान परंपरा है, संगीत स्मृति है, संगीत इतिहास है, संगीत अनुभव है, संगीत साधना है। और जब कोई व्यक्ति इस पूरी परंपरा को आने वाली पीढ़ियों के लिए व्यवस्थित करके छोड़ जाता है तो वह केवल अपने समय की सेवा नहीं करता, वह भविष्य की सेवा करता है।
1: पंडित विष्णु नारायण भातखंडे ने भविष्य की सेवा की। एक वकील से संगीत शास्त्री बनने की उनकी यात्रा केवल पेशा बदलने की कहानी नहीं है, ये उस आंतरिक पुकार की कहानी है जिसे उन्होंने पहचाना।
0: इसलिए जब अगली बार किसी राग की चर्चा हो, जब कोई विद्यार्थी सारे गामा लिखकर किसी बंदिश को सीखने का प्रयास करे, कोई बच्चा छोटा ख्याल गुनगुनाए या कोई संगीतज्ञ बड़ी तान लगाए, तब मन ही मन पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी को प्रणाम जरूर करिएगा।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आजाद हिंद है। अब वक्त विशेष कार्यक्रम का। आज के इस खास कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं शहीद भगत सिंह नाटक के संपादित अंश।

0: जिसका मंचन हुआ 23 मार्च यानी शहीद दिवस के मौके पर। इस नाटक का निर्देशन किया सुंदरलाल मालवीय ने। यह प्रस्तुति रही माच शैली में। ये इस कार्यक्रम का पहला भाग है।
1: तो देवियों और सज्जनों, शहीद भगत सिंह के बलिदान को हम लोक स्वर में कहने जा रहे हैं। पंजाब की मिट्टी के लाल को मालवा की मिट्टी की ओर से एक भावांजलि है ये। आप जानते ही हैं कि माच मालवा की लोक संस्कृति का परिचायक है, जिसका इतिहास लगभग 300 साल पुराना है। हम आपको बता दें कि माच में गायन और अभिनय साथ साथ होता है, कथानक के संवाद गायन के साथ आगे बढ़ते हैं। परंपरागत रूप से माच में स्त्री पात्र को भी पुरुष ही निभाया करते थे, लेकिन अब मुख्य स्त्री पात्र को स्त्रियां भी निभाती हैं। हारमोनियम, ढोल, नगाड़ा, सारंगी और बांसुरी के साथ कई लयकारियों और अलग अलग तालों में माच का खेल आकार लेता है। देवी और सज्जनों, माच का एक रोचक पूर्व रंग होता है, जिसमें जर्जर की स्थापना, जय जयकार, पात्रों की सलामी यानी परिचय और लोक देवता भैरवनाथ की वंदना का क्रम होता है, और फिर माच की गजल गाई जाती है। इसके बाद बीठक आता है, परिचय देता है, भिष्टी को बुलाता है, छिड़काव करवाता है, फिर भर्रासन को जाजन बिछाने के लिए बुलाता है, यूं ठाट बाट जमाता है और कहानी आगे बढ़ती है। तो इस तरह माच मालवा की एक समृद्ध लोक नाट्य परंपरा है, जिसके साक्षी आप बनेंगे मालवा की माटी की सुगंध के साथ। तो लीजिए, प्रस्तुत है माच शैली में नाटक शहीद भगत सिंह।

कर ही देना। तो एक काल ये मैं सबसे पहले भिष्टी जी के बोलो, अरे ओ भिष्टी जी ओ।

0: अरे मैडम साहब, बोलो क्यों आवाज दे गया था?
1: अरे ऐसा है कि आज यहाँ पे अमर शहीद सरदार भगत सिंह जी की सवारी आने वाली है।
0: अरे भगत सिंह जी की सवारी आ रही है? अरे क्या बात कर रही थी,
1: तुम्हारा भाग खुली क्या भाग?
0: अरे वाह,
1: तुम्हारा कई काम मिले मालूम?
0: हाँ।
1: अरे यहाँ पे तरी ने छिड़काव करना है।
0: ऐसा
1: हाँ।

लो, इतनी जल्दी भूली गया। आ तो जा सगली बच्चा घर में से कर लो। नहीं अरे बाहर आ, यहाँ तुम बताओ वो सखी सहेली के लेता है

0: सबके बुलाई लाई। बता कई काम पड़ी कि जो हम सबके बुलाई।
1: इसमें भाभी साहब क्या यहाँ सरदार भगत सिंह जी की सवारी आने वाली?
0: अरे वाह।
1: हाँ मैं आपके यहाँ पे जाजम बिछा।
0: लो अभी बिछाई ना।
1: हाँ बिछाओ बिछाओ।

0: हो कि आप देखियो कि आपके जाने में बड़बड़ा लगी ना जड़ी।
1: हाँ
0: अच्छा ये बताओ कि आप कौन सा देवी देवता को पूजन करो।
1: लो यो भी सुनावा
0: सुना।

0: सरसर माता तो पूजा नहीं करो। हाँ, मैं आत्मा से परमात्मा तक की बात करूँ। अरे वाह, तो अब हमारे यो बताओ, क्या आपके जाजन में और कई कई विशेषता है?
1: लो यो भी सुनावा।
0: सुनाओ।

0: जाजम में है वो आपको काम हुई हो अबे आप जैसे
1: अरे हमारा काम हुई

चलो अबे सगलो काम हो गया, अब तो बस एक इंतजार है कि सरदार भगत सिंह जी की सवारी आई जाए। वाह वाह वाह बस। अरे अरे भगत सिंह जी की सवारी आई आई

0: जिंदाबाद जिंदाबाद बेटा इनकलाब जिंदाबाद। कई बात है, तू भी क्रांतिकारी हुई क्यों?
1: अरे क्रांतिकारी हुई जो इतनी मारी हैसियत का,
0: अरे
1: मैं तो बस आपका साथे रह रही के नारो लगाना सीखी जाऊँ।
0: हमारा साथ है, अच्छा अच्छा लोग नारो लगाना सीखी जाए।
1: अब आप आइया तो मैं यूं कहूं कि ये माँ देखवा वाला भला भला मनक है, तो इनको थोड़ा अपना परिचय दे दो।
0: अरे तो बेटा ये सब हमारे पहचाने नहीं कहीं।
1: अरे आपके तो देश को बच्चों बच्चों जाने हैं, पर कही है कि सभा में आए तो एक कायदो है।
0: सही बात।
1: हाँ, तो आप थोड़ा सा परिचय दे दोगे तो अच्छा रहेगा।
0: ठीक है, तो सुनो हमारी बात।

0: हाँ बेटा कई सुनियो।
1: अरे हमने सुनियो कि आप आजादी का दीवाना हो, ने आपको नाम भगत सिंह है।
0: फिर
1: अब माने यो बताओ कि आपका माता पिता कौन है, ने आपको जन्म कहाँ हो।
0: यो भी सुनो।
1: सुना

0: आपने क्योंकि आपको जन्म 1907 में हुआ, ने आपके पिताजी का नाम किशन सिंह जी, ने माता जी का नाम विद्यापति,
1: एकदम सही।
0: अब हमारे आप यो बताओ कि आपका गुरु जी कौन है?
1: पहला हमारा भाई बहन का बारे में।
0: अरे हाँ हाँ, पूरे परिवार को तो मालूम पड़ना चाहिए। तो आप हमारे ये बताओ कि आपका भाई बहन कितना है, ना आपका काका जी कहीं करें।
1: यो भी सुनो,

0: कहीं सुनी।
1: अरे आपने, क्योंकि आपको दो भाई
0: क्रांतिकारी
1: अब तो बता ही दो मारे कि आपको गुरुजी कौन है,
0: उनको भी नाम सुनो
1: ना।

आज के इस खास कार्यक्रम में आप सुन रहे थे नाटक शहीद भगत सिंह के संपादित अंश। ये इस कार्यक्रम का पहला भाग था। अगले कार्यक्रम तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: अब आपसे मुखातिब हैं डॉक्टर अंबर आबिद।
1: जो पारू ने कल ही तो अपने मंझले बेटे मन्नू के हाथ से लेकर अपने गले का सिहतागा तोड़कर इस बच्चे के लाए हुए टुकड़े को इसके पांव में बांधा था। धूल से सने पैरों में सुनहरा टुकड़ा चमक उठा तो पारू निहाल हो गई। उसने मन्नू को कलेजे से लगा लिया। मन्नू इसका चहीता बेटा था, अगर कहीं से कुछ भी मिलता तो बुला कर माँ के हाथ पे रख देता और माँ की हर बात बड़ी खामोशी से मान लिया करता। बड़े लड़के की आदतें बात जैसी थीं, गुस्सीला और जिद्दी, मगर मन्नू तो बड़ा मासूम और फरमाबरदार बच्चा था। पारू को इस बच्चे से बड़ी उम्मीदें थीं कि जब ये बड़ा होगा तो ज़रूर माँ की किस्मत बदलेगा। मन्नू के पाँव और बाकी का जिस्म खून में लथपथ, जैसे कोई गोश्त का लोथड़ा कुचला पड़ा हो। वहाँ बस दो मुन्ने से पाँव बचे थे, शायद ये ट्रक के जालिम पहिए की जद से बाहर रह गए थे। बस दो पाँव और एक पाँव में काला तागा और तागे में दिल जैसा पीतल का सुनहरा टुकड़ा जैसे पारो का दिल। पारो दीवाना वार आगे बढ़ी और पाँव के आगे मन्नू को टटोलने लगी, मगर वहाँ गोश्त और खून के सिवा कुछ भी तो ना था। पारो के गले से एक दिलखराश चीख निकली। वो दीवाना वार चीख रही थी, मन्नू मेरा मन्नू, और फिर इसको कुछ होश ना रहा। हे भगवान, ये तो पारो का मन्नू है। हाय दैया, ट्रक ने हत्यारे को रोन दिया। ये पारो की पड़ोसन की आवाज़ थी। कुछ औरतें खींच खाँच कर पारो को झोंपड़ी में ले आईं। दिन गुजरा, रात आ गई, भीसू भी आ गया। इसे कई लोग बार बार हादसे की तफ्तीश के सिलसिले में बाहर बुला रहे थे। बच्चे की लाश पुलिस ने अपने कब्जे में ले ली थी। नींद जान पारो, पारो को किसी ने कुछ खिलाने की कोशिश की, मगर इसे तो सिवाय अपने बच्चे के किसी बात का होश ना था। इसे हर तरफ अपना मन्नू नजर आ रहा था। वो जारो कतार होती, चुप हो जाती और फिर बेतहाशा रोने लगती। पड़ोसन ने दोनों बच्चों को खिला पिला कर सुला दिया था। 7 साल बच्चा दीवार से लगकर बिछी मैली दरी पर रौंदा पड़ा सो रहा था, मगर छोटा बच्चा बराबर पारो की छाती से लिपटा था। वो इसके साथ कभी रोता और सोता रहा। मन्नू का क्रियाक्रम कैसे हुआ, किसने किया, पारो को कुछ होश नहीं था। 3 दिन कैसे गुजरे, गमजदा पारो हर बात से बेखबर थी। रात के कोई 12 बजे होंगे कि घीसू घर वापस आया। पारो गम से निढाल और लूटी पिटी सी बैठी थी। घीसू उसके पास आकर बैठ गया। अरे अब कब तक सोग मनाएगी, अब चुप्पी हो जा बस, इसने पारो को अपनी तरफ खींचा। पारो ने घीसू की तरफ शाकी नजरों से देखा। खिलाफ मामूल घीसू का लहजा आज नर्म था। वो धीमे लहजे में इसे समझाने लगा और नजदीक खिसक आया। बोला, देख इधर देख, मैं क्या लाया हूँ। पारो की मुतवर आँखें घीसू के हाथों पर मरकूज हो गई। वो एक कपड़े की गिरह खुल रहा था, नोट ही नोट, वो देखती रह गई। इसने अपनी पूरी जिंदगी में इतना रुपया कभी एक साथ नहीं देखा था। घीसू की आंखों में एक शातिराना चमक थी। इसने कहा, हम अब लखपति हैं, पता है ये पूरे 3 लाख रुपए हैं, कम ना ज़्यादा। आज से पहले कभी इतना रुपया देखा भी है तुमने, ले छू कर देखे ले। अब हम पक्की जुग्गी बनाएंगे, तू बरसात में कितना कष्ट उठाती है ना, अब ना रोइयो, शांत हो जा, सब ईश्वर की मर्जी। पारो को समझ नहीं आया कि वो मन्नू की मौत का मातम मनाए या घीसू की खुशी में इसका साथ दे। वो बैठी की बैठी रह गई। बच्चों के लिए नए कपड़े बन जाएंगे, बिजली का कटा हुआ कनेक्शन भी जुड़वा लेंगे, जूते भी, और सुन हाँ, ऐसा करते हैं एक लोहे की खटिया भी ले लेंगे, साथ में दरी और बिस्तर की। वो बातें करते करते लेट गया और मुस्तकबिल के सुनहरे ख्वाबों में खो गया। 3 दिन से रोती बिलकती थकी हारी पारो भी वहीं आड़ी हो गई। नोट घीसू के सरहाने कपड़े में रखे थे। इधर घीसू को किसी करवट चैन नहीं था, कभी इधर करवट लेता कभी उधर। आखिर वो उठ बैठा और लालटेन उठा लाया। पारो ने देखा घीसू नोटों पर हाथ फेर रहा है, उन्हें सूंघ रहा है। वो फिर लालटेन की रोशनी में अपने सोए हुए बच्चों को देखने लगा और मुस्कुरा दिया। घीसू ने अचानक पारो को झंझोड़ दिया, अरे उठ पारो। पारो हड़बड़ा कर उठ बैठी।

0: जज्बाए सोजे तलब को बेकरां करते चलो, जज्बाए सोजे तलब को बेकरां करते चलो, खू बखू रोशन चराग़े कारवां करते चलो। आपकी पुरजोर तालियों में चंद्रभान राही साहब तशरीफ ला रहे हैं कहानी का उन्वान पुल के पास।
1: मेरी कहानी का शीर्षक है पुल के पास। ची करती ट्रेन पुल पर से अपने गंतव्य की ओर दौड़ी चली जा रही थी। ट्रेन के वेग से पुल, जो ज्यादा बड़ा ना था, कांप उठा। पुल के पास खड़ा बिजली का खंभा हिल सा गया। कुछ क्षण तक ट्रेन के वेग की कंपन को मैं स्वयं महसूस कर रहा था। पुल के पास ट्रेन की पटरी, बहुमंजिली इमारतें बनी थी, जिनमें से चौथे माले पर मेरा भी एक फ्लैट था। आज अवकाश था, मैं ठंड से बचने के लिए बालकनी में धूप सेक रहा था। तभी ट्रेन के गुजरने का वक्त हुआ। ट्रेन तीव्र गति से पटरी पर दौड़ती हुई पुल, खंबा, आसपास के मकान को कपकपाती चली गई। मैंने देखा कि दो चिड़िया, शायद वो बाहर से आई थीं, क्योंकि मैंने वैसी चिड़िया आज से पहले नहीं देखी थी। दोनों चिड़िया खंबे पर बैठी एक दूसरे की चोंच से चोंच मिलाती, फिर पंखों को फड़फड़ा कर सिर को झटकारती। अचानक ही उनके सारे पंख खड़े हो जाते, फिर एक एक करके सारे पंख बदन से चिपक जाते। तभी दूर से ट्रेन के आने की आवाज़ आई। मैं सोचने लगा कि क्या ये चिड़िया खंभे पर बैठी रहेंगी। शायद नहीं। मेरी सोच अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि ट्रेन वेग से आई और पुल थरथराने लगा। खंभा भी कुछ क्षण हिला, खंभे पर बैठी चिड़िया उड़ी और ट्रेन के जाने के बाद पुनः खंभे पर आकर बैठ गई। बिजली के नंगे तार को व्यक्ति छू ले तो शायद ही वह बच पाए, इसलिए भय के मारे वह बिजली के तारों से दूर ही रहने की कोशिश करता है। चिड़ियों के हौसले बुलंद थे, वे बिजली के नंगे तारों पर बैठी थीं। वहीं पास एक चमगादड़ 2 दिन से तार पर उल्टा लटक रहा था, शायद वह मर गया था। उन दोनों पक्षियों में से एक चिड़िया एक दिशा में उड़ गई, आकाश में कुछ दूर तक दिखाई दी, फिर वह गायब हो गई। एक चिड़िया जो खंभे पर बैठी थी वह उड़कर जमीन पर आ गई। शायद वह भूखी थी, जमीन में चोंच मार रही थी। एक कीड़ा उसकी चोंच में दबा छटपटा रहा था। कुछ देर के बाद वह मर गया। उन दोनों चिड़ियों ने तिनके बटोर कर तार के जाल में घोंसला बनाने का हौसला किया। मैं यह सोच रहा था कि ट्रेन के गुजरने से घोंसला गिर गया तो मैं कमरे में वापस आ गया। शाम रात में बदल गई। रात में ट्रेन के गुजरने की आवाज़ से आंखें खुल जाती हैं। जब मैं नया नया अपनी पत्नी के साथ इस घर में रहने आया था, तब रात में ट्रेन जब पुल पर से गुजरती तो ऐसा लगता कि हमारे सर पर से गुजर रही है। फटाक से रात में आंखें खुल जाती और फिर दूसरी तीसरी ट्रेनें गुजरती रहती और सुबह हो जाती। पत्नी ने इस मकान में रहने से मना कर दिया था। शायद मैंने भी मकान को बेचने का निर्णय कर लिया था, लेकिन जिसे भी इस मकान को खरीदने के लिए कहता या जितने ही मकान के खरीदार आते, सभी ने ट्रेन की पटरी के कारण खरीदने से मना कर दिया था। धीरे धीरे 6 माह बीत गए। अब तो लगभग आदत सी हो गई। अब ट्रेन के गुजरने से समय का पता चल जाता है। ऐसा लगने लगा मानो ट्रेन घड़ी की सुई है, जब जो बजता है तब वह ट्रेन आ जाती है, जिससे सही सही समय का अंदाजा हो जाता है। अब ट्रेन के गुजरने की आवाज़ सुनने की आदत कानों को हो गई थी। पत्नी भी अब नाराज नहीं होती, बल्कि वह ट्रेन के गुजरने से समय का आभास करके मुझे समय पर उठा देती। ठंड में सुबह समय को शायद ट्रेन के पहिए लग जाते हैं, जो अपनी गति से अधिक तीव्र गति से चलने लगते हैं। आज मेरे कार्यालय में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद के लिए इंटरव्यू का आयोजन था। कुछ अच्छे कपड़े पहनकर घर से निकला था। समय था कि भागता जा रहा था। बस स्टॉप पर खड़े प्रत्येक व्यक्ति को मंजिल तक जाने वाली बस का इंतजार था। मैं भी खड़ा बस का इंतजार कर रहा था।

0: हमारी अगली तख्लीककार मोहतरमा निगार अजीम साहिबा का शुमार उर्दू के उन मुमताज और आलमी शोहरत याफ्ता अदीबों में होता है जिन्होंने अपने अफसानों, शायरी, सफरनामे और तनकीदी निगारिशात से उर्दू के फिक्री, फनी और अदबी सरमाए को मालामाल किया है।
1: कहानी का उन्वान है एक्वेरियम। पहली मरतबा इस सुख से आशना हुई तो सरशार हो गई, प्यार, मोहब्बत, दिलजुई, बल्कि उससे भी कुछ ज्यादा जो हमने 25 बरसों में उसे दिया था, शायद वो 25 दिन में ही लौटा देना चाहता था। मुमकिन है कि पिछले 6 माह की जुदाई का असर हो। दरअसल बेटे को एक अच्छी फर्म में मुलाजमत मिली तो उसे दिल्ली छोड़कर मुंबई शिफ्ट होना पड़ा। उसकी जुदाई से ऐसा महसूस हुआ था जैसे जिस्म का कोई हिस्सा कट गया हो। उसके बार बार बुलाने का असरार नाराज़गी में बदलने लगा तो हम दोनों ने फासले ख़त्म किए और बम्बई पहुंच गए। यारी रोड पर एमएनओ सोसाइटी के खूबसूरत फ्लैट में वो रिहाइश पजीर था। देखकर यकीन नहीं आया वो कब और कैसे जीने का सलीका सीख गया। मुलाजमत की जिम्मेदारियों के साथ साथ घर के आराम, आसाइश और जिबाइश पर उसने पूरी तवज्जो सर्व की थी। उसने बाप और माँ दोनों की ख्वाहिश का पूरा पूरा एहतराम किया था। बाप के लिए कंप्यूटर और नई किताबें, माँ के लिए उसकी बहुत पुरानी ख्वाहिश को उसने पूरा किया था। ड्राइंग रूम में एक बड़ा सा एक्वेरियम, रंग बिरंगी छोटी बड़ी खूबसूरत मछलियाँ उसमें तैर रही थी। माँ, ये आपके लिए, जब मैं ऑफिस रहूँगा तब आप इन मछलियों से बातें कीजिएगा। उसकी मासूमियत पर मैं मुस्कुरा पड़ी। बेटे की मोहब्बत, फरमाबरदारी और उसकी अछूती ख्वाहिशात से दिन और रात पलक झपकते बीतने लगे। उस रोज इतवार था। वो सुबह से ही हमारे साथ था। मुझे मछलियों की तरफ मुतवज्जे पाकर खुद ही मेरे करीब आकर बैठ गया। माँ, इन मछलियों से आपकी जान पहचान हुई? कुछ कुछ, मैंने कहा। माँ, ये एंजल फिश है। ओह, मैं हैरान हुई क्योंकि उसमें अपने नाम की तमाम सिफात मौजूद थी। वो दूसरी मछलियों से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। उसकी आदत, मिजाज, यहाँ तक कि तैराकी में भी एक किस्म की सच्चाई, पाकिजगी और भोलपन था। न किसी से लड़ाई न झगड़ा। एंजल फिश के दो जोड़े थे, एक बिल्कुल सियाह और दूसरा काली सफ़ेद धारी वाला। ये वाइट मौली है और ये गोल्डन मौली। लेकिन बेटा, ये गोल्डन मौली जितनी हशाश बशाश, चुस्त और फुर्तीली है, वाइट नहीं, इसकी क्या वजह? हाँ माँ, वो अकेली है ना, उसका मेल मर गया आपके आने से एक रोज़ पहले। ओह, मेरा दिल बुझ सा गया। आपने देखा होगा ये गोल्डन मौली अपने मेल को उसके पास फटकने नहीं देती। अरे, ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। और ये लाल फिश, उसका क्या नाम है? ये तो बहुत ज़बरदस्त रक्स करती है। इस कदर थिरकती है मानो सैकड़ों जल तरंग एक साथ बज उठे हों। ये रेड हेड है। जैसे जैसे बड़ी होती जाएगी इसका सर का हिस्सा बड़ा होता जाएगा, जिस्म से ज़रा बड़ा और रंग गहरा। ये बहुत समझदार होती है, खतरा बहुत जल्दी भांप लेती है। एक्वेरियम की सबसे बड़ी और मुनफरिद मछली सामने से गुजरी। ये फाइटर फिश है। फाइटर फिश? क्या ये लड़ाकी है? लेकिन मैंने इसे लड़ते हुए नहीं देखा। अकेली है ना माँ, इसलिए खुद को शेर समझती है, मैंने कहा। लेकिन वो सब मछली मुस्तकिल उसके पीछे पीछे चलती रहती है, बड़ी खामोश। वो देखो, अभी उसके पीछे पीछे चल रही है। बड़ी मछली घूम कर बार बार उसे पुश करती है, लेकिन वो फिर पीछे चल देती है।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं ये देशभक्ति गीत। गीतकार ख्वाजा अल्ताफ हुसैन,

स्वाधीनता संग्राम स्वराज पर एकाग्र कार्यक्रम आजाद हिंद, ज्ञात अज्ञात स्वाधीनता संग्राम सेनानियों, रणबांकुरों, जननायकों की क्रांति कथाएं और आजादी के यादगार तराने।

0: के 6 भाई और 5 बहनें थी। मान कुमार का घर का नाम श्रीधर था।
1: अरे मुझे अच्छी तरह से याद है तारी, मान कुमार के पिता वारिचाल में सेटलमेंट कानून को थे। वहीं मान कुमार का बचपन भी था। ढाका के सेंट गैगरी हाई स्कूल में उन्हें 5 वर्ष की उम्र में भर्ती कराया गया, पर खराब स्वास्थ्य के कारण उनकी पढ़ाई में व्यवधान पड़ता रहा।
0: बिल्कुल ठीक, मान कुमार मेधावी छात्र थे। परीक्षा में वे सदैव शीर्ष 4 में एक होते, पर स्वास्थ्य उन्हें परेशान कर रहा था। सो स्वास्थ्य की ओर विशेष ध्यान देते हुए नियमित व्यायाम द्वारा सबल बनना उन्होंने पहला लक्ष्य बनाया। शीघ्र ही उन्होंने अपना लक्ष्य प्राप्त भी कर लिया। सन 1938 में उन्होंने प्रथम श्रेणी में बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ढाका से मैट्रिक की परीक्षा पास की
1: और आईएससी के लिए जगन्नाथ इंटरमीडिएट कॉलेज में भर्ती हुए। और सन 1940 में इसी कॉलेज से 2 अन्य विद्यार्थियों के साथ उन्हें भारतीय उपकुल रक्षी गोलंदाज जत्थे में सहयोग के लिए भेजा गया। परिवार के अन्य सदस्य नहीं चाहते थे कि वे यह काम करें, पर मान कुमार यह काम करते रहे। युद्ध जैसे कठिन कार्य में जुटे रहने के बावजूद उन्होंने एक के बाद 13 विभागीय परीक्षाएं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। उन्होंने उर्दू शिक्षा की परीक्षा भी प्रथम रहते हुए उत्तीर्ण की।

0: सन 1942 में मान कुमार विमान ध्वंसी विभाग के जिम्मेदार कर्मचारी बन गए थे। उन्हें गोलंदाज दस्ते की ट्रेनिंग के लिए बम्बई भेज दिया गया। बम्बई के कोलाबा स्थित ट्रेनिंग केंद्र में आए परीक्षार्थियों में ब्रिटिश और भारतीय दोनों सैनिकों के जत्थे थे। प्रशिक्षण के अंत में आयोजित परीक्षा में मान कुमार ने भारतीय जत्थे में प्रथम स्थान प्राप्त किया और वे जमादार पद पर नियुक्त कर दिए गए।
1: प्रशिक्षण के दौरान भारतीय जत्थे के बंगाली सैनिकों के अच्छे प्रदर्शन के कारण अंग्रेज सैनिक उनसे ईर्ष्या करने लगे थे और जब तत्कालीन जंगी लॉर्ड अकिनलेक साहब ने चतुर्थ भारतीय उपकूल रक्षी गोलंदाज दस्ते के जमादार मान कुमार और दूसरे बंगाली नौजवानों के साहस और योग्यता की तारीफ की तो इस तारीफ ने अंग्रेज सैनिकों की ईर्ष्या की आग में घी का काम किया।
0: अब तक अंग्रेज सैनिक भारतीय सैनिकों पर रोब जमाते रहते थे, पर अब बंगाली सैनिकों ने अपना सिर उनके सामने बिना झुकाए सैनिकों की तरह व्यवहार करना शुरू कर दिया। अंग्रेज सैनिकों ने इसे चुनौती मानकर उन्हें सबक सिखाने की धमकी तक दे डाली। आखिरकार षड्यंत्र रचा गया। कोचिन में ताड़ के पत्तों से छाए एक घर में आग लगा दी और इस अग्निकांड के बाद कुचक्र रचकर सन 1943 में 18 अप्रैल को ब्रिटिश सम्राट और सरकार के विरुद्ध विद्रोह का आरोप लगा करके 12 बंगाली सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया गया।
1: सुनवाई के दौरान झूठी गवाहियां रची गईं। सन 1946 में केंद्रीय व्यवस्थापिका परिषद में सामरिक विभाग के सेक्रेटरी मैनन साहब ने मान कुमार और उनके सहयोगी बंगाली सैनिकों पर अनेक अपराध कायम किए जिनमें चतुर्थ भारतीय उपकूल रक्षी जत्थे को तोड़ने का षड्यंत्र, इसके लिए अपना आवास जलाना, विस्फोट पदार्थ के गोदाम आग लगाने का प्रयत्न और जत्थे में सांप्रदायिक हंगामा मचाने के आरोप प्रमुख थे।
0: इन अभियोगों के लिए 6 जुलाई से 5 अगस्त के बीच बेंगलोर के सेंट एंड्रयूज चर्च में बैठी फौजी अदालत में गिरफ्तार किए गए तथा कथित विद्रोहियों की सुनवाई हुई। सैनिकों पर विद्रोहियों के विरुद्ध गवाही देने के लिए भारी दबाव डाला गया। जिन्होंने झूठी गवाही देने से इनकार किया उन्हें हथकड़ी पहना करके तंग कोठरी में ठूस दिया गया और भयंकर यातनाएं दी गईं। इस सुनवाई का काला पक्ष यह था कि अपराधियों को अपनी सफाई में बोलने का अवसर ही नहीं दिया गया।
1: अदालत ने मान कुमार बसु ठाकुर उम्र 21 वर्ष सहित 9 व्यक्तियों को मृत्यु दंड की सजा सुनाई, 2 अन्य को द्वीपांतर कारावास और 1 को 7 वर्षों के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। फांसी की सजा पाने वाले बंगाली सैनिक थे मान कुमार बसु ठाकुर, नंद कुमार डे, दुर्गादास राय चौधरी, निरंजन बरुआ, चितरंजन मुखोपाध्याय, फणिभूषण चक्रवर्ती, सुनील कुमार मुखोपाध्याय, कालीपद आईच और नरेंद्र मोहन मुखोपाध्याय। इन सभी युवकों की उम्र 21 से 25 वर्ष के बीच थी।
0: 24 सितंबर को इन कैदियों को फांसी देने के लिए बेंगलोर की जेल में लाया गया। ये सभी काली पोशाकों में और कड़े पहरे में लाए गए थे। बेंगलोर जेल में मौजूद कैदियों को जल्दी ही पता चल गया कि ये सभी फांसी की सजा के लिए लाए गए हैं। जेल में नजरबंद कैदी इस समाचार से अत्यंत उत्तेजित हो उठे। उन्होंने बेंगलोर जेल में इन लोगों को फांसी देने का पुरजोर विरोध करते हुए राज्य सरकार को सम्मिलित रूप से ज्ञापन दिया। आखिर ज्ञापन को उचित मानकर राज्य सरकार ने ब्रिटिश सरकार से आपत्ति प्रकट की और फांसी का स्थान बेंगलोर जेल की जगह मद्रास की जेल कर दिया गया।

0: बैंगलोर जेल से मद्रास जाते जाते दुर्गादास राय चौधरी ने अपने रक्त से वंदे मातरम लिखा एक पत्र बैंगलोर के कैदियों के पास पहुंचा दिया। इस पत्र में लिखा था, प्रिय बंधुगण, सम्राट के विरुद्ध विद्रोह के अपराध में हम 9 लोगों को मृत्युदंड दिया गया। देश की स्वाधीनता के लिए हम 9 लोग कुर्बानी दे रहे हैं। हम सभी बंगाली नवयुवक हैं। बंधुओं, अब समय आ गया है कि हम हिंदू मुसलमान सभी मिलकर देश की आज़ादी के लिए काम करें। देश की आज़ादी के महायज्ञ में आपकी सेवा और त्याग हमें सांत्वना देता रहेगा। आइए सर उठाइए और मातृभूमि की आज़ादी के लिए संघर्ष करिए। विदेशी शक्ति के विरुद्ध कठोर प्रहार कीजिए। हमारी शुभ इच्छा आपके साथ है। आप अपने प्रण में सफल हों। हमारा मधुर प्यार स्वीकारें। पत्र के अंत में रक्त से हस्ताक्षर किए गए थे दुर्गादास।
1: फौज के अधिकारियों ने भरसक प्रयत्न किया था कि मान कुमार सरकारी गवाह बन जाए और अपने साथियों के विरुद्ध झूठी गवाही देकर के सिद्ध कर दे कि उन्होंने क्रांति की योजना बनाई थी, पर सत्यवादी और देश प्रेमी मान कुमार मृत्यु दंड का संकट जानते हुए भी झूठी गवाही देने और अपने साथियों के खिलाफत को राजी नहीं हुए। मान कुमार माँ के भक्त थे और सन्यासी बाबा के अनुयायी थे। अभियोग दायर होने के बाद उन्होंने अपनी माँ को पत्र लिखा, माँ मैं बहुत मुश्किल में पड़ गया हूँ। सन्यासी बाबा और माँ को स्मरण करके सभी काम करने वाले कैसे संकट में पड़ सकते हैं, पर ऐसा हुआ है, पर क्यों? मैं तो सदा सन्यासी बाबा और तुम्हारा स्मरण करके ही कुछ करता हूँ। ऐसे अपराध तो मैंने आज तक नहीं किए।
0: 25 सितंबर 1943 को मद्रास किले में 2-2 की संख्या में इन बंगाली युवकों को फांसी दी गई। फांसी का फंदा गले में डालने के पहले वे एक दूसरे से गले मिलते और राष्ट्रीय गीत गाते हुए फांसी के तख्ते पर खड़े हो जाते। मान कुमार की फांसी के बाद उनके एक साथी ढाका पुलिस के एक बड़े अफसर जनाब अब्दुल उदूद ने कहा, सत्य के लिए मान कुमार ने अपनी जिंदगी न्यौछावर कर दी। उनका यह बलिदान निष्फल नहीं जाएगा। जब तक सत्य कायम रहेगा, मान कुमार का नाम अमर रहेगा।
1: फांसी चढ़ने से पहले तक वे गर्व से गाते थे, सत्य की रक्षा के लिए प्राण देकर मान कुमार ने अपने देश की मान मर्यादा की रक्षा की। वे एक सार्थक व्यक्तित्व के रूप में सदा याद किए जाएंगे।

0: जिंदा फिर से हो रहा।
1: जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आजाद हिंद, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय की, और गीत लिए गए थे स्वराज संस्थान संचालनालय द्वारा जारी ऑडियो एल्बम जन गर्जे से।
3: और अब दीजिए हमें इजाजत, कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए अंक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।

स्वाधीनता संग्राम स्वराज पर एकाग्र कार्यक्रम आजाद हिंद, ज्ञात अज्ञात स्वाधीनता संग्राम सेनानियों, रणबांकुरों, जननायकों की क्रांति कथाएं और आजादी के यादगार तराने।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार, 90.8 MHz पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूं आपका रेडियो मित्र संदीप शर्मा और मेरे साथ हैं
2: संयुक्ता बैनर्जी।
1: बहुत बहुत स्वागत है आप सभी श्रोताओं का हमारे इस कार्यक्रम शब्दों के शिल्पकार, जिसमें आज हम बात करेंगे आदि विद्रोही धर्मवीर भारती की। कोई ऐसी कथा कहो साधो, जो युग युग का इतिहास रचे, जो धर्म और वीर की गाथा हो और भरत भारती गुणगान करे।
2: अभी आपने जो कविता की पंक्तियां सुनी, उनमें उपयोग किए गए कुछ विशेष शब्दों से आपको आभास हो गया होगा कि आज इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी कथाकार, नाटककार, कवि, समीक्षक, निबंधकार, पत्रकार और पद्मश्री और अनेक सम्माननीय पुरस्कारों से नवाजे गए लेखक धर्मवीर भारती जी के विषय में और उनके व्यक्तित्व की पूरक पत्रिका धर्मयुग के बारे में।
1: श्रोताओं, धर्मवीर भारती स्वयं में एक संस्थान का पर्याय हैं, जिनके हस्ताक्षर एक सदी के कपोल पर सुरक्षित हैं और आने वाली सदियों तक रहेंगे। भारती जी के लेखन का दायरा इतना विस्तृत है, उनकी लेखन प्रतिभा का स्वरूप इतना व्यापक है कि किसी एक पहलू पर चर्चा करने के लिए भी शब्दों को समेटना सरल नहीं है। इससे पहले कि हम उनकी योगदान, उनके कार्यक्षेत्र और साहित्य में सुरक्षित उनके अनमोल योगदान के विषय में बात करें, थोड़ी बात उस दौर की, उन परिस्थितियों की, उन तेजी से बदलते हालात की, जब थकी मांदी एक सदी अपनी उम्र की आखिरी सीढ़ियां चढ़ते हुए लड़खड़ा रही थी
2: और एक नई सदी का सूरज अपनी चमक दमक, अपने पूरे आबोताब के साथ क्षितिज पर छा जाने के लिए बेचैन होकर 30 कदमों से प्रगति की, आजादी की, नवीनता की सीढ़ियां चढ़ने को बेताब था। जरा सोचिए पीछे मुड़कर उस दौर के बारे में, जब आज की तरह न तो पत्र पत्रिकाओं का इतना रंगीन बाजार था, न टेलीविजन, न कोई वेब सीरीज, न मोबाइल, न प्रिंटिंग मशीनें, न जीने के लिए सुख साधन, अर्थात मध्य वर्ग के लिए गरीबी का दौर था। आम लोगों के लिए अच्छे शिक्षण संस्थानों की पहुंच दुर्लभ थी। संक्षेप में, पूरा देश ही सीमित संसाधनों के साथ अपनी लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था से संघर्षरत था।
1: हम आपको बता दें, धर्मवीर भारती के पूर्वज शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश के खुदागंज कस्बे के जमींदार थे। धर्मवीर भारती का जन्म इलाहाबाद में 1926 25 दिसंबर को हुआ। वो बचपन से ही बहुत संवेदनशील थे। घर की दयनीय स्थिति और पिता की बीमारी ने उनकी संवेदनशीलता को इस सीमा तक बढ़ा दिया कि वो बचपन में ही काम तलाशने लगे थे, कुछ कमाना चाहते थे। उन दिनों वो अपना नाम धर्मवीर वर्मा लिखते थे। स्कूल में शिक्षा के दौरान उन्होंने भारती लगाना शुरू किया। जब वो 8 वर्ष के थे तो उनके पिता का देहांत हो गया और माता का देहांत भी होने के कारण वो बहुत टूट गए।
2: ऐसे धर्मवीर भारती बचपन से लेखक थे, कुशाग्र बुद्धि के थे, तो रामायण महाभारत उनके प्रिय ग्रंथ थे। किसी प्रकार स्कूली शिक्षा के बाद जब बीए में आए तो ट्यूशन पढ़ाकर गुजर बसर करते और साथ में लेखन भी शुरू कर दिया। शुरुआत पत्रकारिता से की। बीए करने के बाद अपने पहले गुरु राम कुमार वर्मा की छत्रछाया में पत्रकारिता की बारीकियां सीखी। इलाहाबाद में ही अभ्युदय दैनिक पत्र का संपादन का कार्य भी किया। भारती जी रामायण, महाभारत और गीता जैसी कालजयी रचनाओं से बहुत प्रभावित थे, तो मार्क्स से भी, लेकिन मार्क्स की अधीरता उन्हें पसंद नहीं थी। वे अंग्रेजी में शेले, कीट्स और ऑस्कर वाइल्ड से बहुत प्रभावित थे।
1: धर्मवीर भारती सृजन को महत्व देते थे। उनका मानना था कि मनुष्य तभी मनुष्य है जब उसमें सृजन की ललक हो। कहते हैं, भूख खुनेजी गरीबी हो, मगर आदमी की सृजन शक्ति सबसे ऊपर उसकी ताकत है। इसलिए अति संघर्षशील जीवन और जीवन में उतार चढ़ाव उन्हें कभी डिगा नहीं पाए। कहते हैं, क्या हुआ दुनिया अगर मरघट बनी, अभी मेरी आखिरी आवाज बाकी है। हो चुकी हैवानियत की इंतहा, आदमियत का अभी आगाज बाकी है। लो, तुम्हें फिर से नया विश्वास देता हूँ, नया इतिहास देता हूँ।
2: धर्मवीर भारती को यात्राएं करने का शौक, टहलने और लोगों से बातें करना पसंद था, और पसंद था किसी की व्यथा सुनकर उसकी मदद करना। इसी आदत के कारण उन्होंने वास्तव में एक इतिहास रचा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने उन्हें संबल दिया। उनकी सादी सरल भाषा, सहजता, आत्मीयता उनके व्यक्तित्व के सुनहरे गुण थे, जिसको तराशने सवारने में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के साहित्यिक माहौल और वहां के ज्ञानी एवं समर्पित शिक्षकों और पठन पाठन के शौकीन सहपाठियों और दोस्तों ने सहयोग किया। उन्होंने लेखन शुरू किया और साथ ही डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के अधीन सिद्ध साहित्य में PhD भी प्रारंभ की।
1: जिंदगी ने करवट ली। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में लेक्चरर के रूप में धर्मवीर भारती ने नौकरी शुरू की। इसी दौरान अपनी लेखन प्रतिभा के परिणाम स्वरूप कहानियां, नाटक और निबंध लिखने लगे। ये सब पसंद किए जाने लगे और वो प्रख्यात होने लगे। उन्हें प्रेम की सौगात भी मिली। उन्हें लगा कि प्रेम ने उन्हें वो खुशी का खजाना दिया जिसकी उन्हें तलाश थी, और ललक भी। लेकिन इस पहले असफल प्रेम ने उन्हें अंदर तक हिला दिया। इस त्रासदी का जिक्र उन्होंने कहीं नहीं किया और ना ही किसी झूठी तसल्ली के सहारे तलाश किए। दिल टूटने नहीं दिया और साहित्यिक गतिविधियों में और अधिक रुचि लेने लगे। लेखन को कर्मस्थली बनाया और कविताओं से ख्याति प्राप्त करने के साथ महाभारत युद्ध के अंतिम दिन पर केंद्रित उनका काव्य नाटक अंधा युग उनकी कालजयी रचना बनी। अब धर्मवीर भारती ख्याति के शिखर पर पहुंच चुके थे। वो आदि विद्रोही के नाम से प्रसिद्ध होने लगे।
2: श्रोताओं, जैसा कि हमने पहले इस संदर्भ में बात की कि देश सामाजिक और आर्थिक मंच पर जबरदस्त बदलाव की तरफ बढ़ रहा था। मध्यम वर्गीय समाज में पठन पाठन की प्रवृत्ति बढ़ रही थी, मगर साधन सीमित थे। ऐसे वातावरण में खुशवंत सिंह जी ने बंबई में कुर्तुल एन हैदर जैसी महान लेखिका के साथ टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के सौजन्य से एक अंग्रेजी पत्रिका इलस्ट्रेटेड वीकली का प्रकाशन शुरू किया। लेखक अपना योगदान दे रहे थे, लेकिन पाठक वर्ग सीमित था। वीकली संभ्रांत पाठकों में तो लोकप्रिय थी, मगर मध्यम वर्ग को उनकी भाषा शैली में उनकी रुचि की पत्रिका की आवश्यकता थी। भारती जी की ख्याति चरम पर थी, इसीलिए इलस्ट्रेटेड वीकली के साथ साथ टाइम्स ग्रुप ने हिंदी की साप्ताहिक पत्रिका धर्म युग का प्रकाशन शुरू किया और धर्मवीर भारती को पत्रिका के संपादक के रूप में चयनित किया। भारती जी के लिए धर्म युग एक मील का पत्थर बनी और मध्यवर्गीय और हिंदी भाषी पाठकों के लिए एक मशाल।
1: श्रोताओं, धर्मयुग के रंग रूप को संवारने, पठन सामग्री का चयन करने, गंभीर विषयों पर सामाजिक स्तर पर हर वर्ग द्वारा पढ़ने योग्य बनाने के लिए धर्मवीर भारती ने अथक मेहनत की। एक स्तरीय साप्ताहिक पत्रिका ने हर उम्र, हर वर्ग, हर परिवार के लिए सामग्री जुटाकर छापना बहुत कठिन काम था। धर्मयुग में शुरू से ही मृणाल पांडे एवं राजेश जोशी जैसे लोगों की रचनाएं प्रकाशित हुईं। अब आप पत्रिका के स्तर का अंदाजा लगा सकते हैं। धर्मयुग के स्वरूप को भारती जी ने इस प्रकार निखारा कि उसमें साहित्य के अतिरिक्त विज्ञान कथा, कॉमिक्स और वो भी रंगीन चित्रों से सुसज्जित, यात्रा वृतांत, डब्बू जी का कार्टून कॉलम, फैशन की दुनिया से लेकर नितांत घरेलू कलेवर के साथ साथ ही पत्रिका हर घर की आवश्यक सामग्री का हिस्सा बन गई।
2: सप्ताहांत धर्मयुग का इंतजार परिवार के हर सदस्य को रहता था। उसके कवर पेज का तो कहना ही क्या था, वो बोलता कवर पेज होता था। ये मानिए, अगर आपको उस दौर का कोई पाठक मिल जाए तो वो जरूर बताएगा कि कैसे एक बार दिवाली के आसपास प्रकाशित इस पत्रिका के कवर पेज पर लक्ष्मी जी की इतनी सुंदर और जीवंत फोटो थी जो लोगों ने फ्रेम करवा के अपने घरों में अब तक संजो कर रखी है। और इसी प्रकार कई घरों में धर्मयुग की सालाना प्रतियां, वो भी जिल्दों में, सुरक्षित अब भी देखने को मिल जाएंगी। सोचिए, उन दिनों भी धर्मयुग की लगभग 4-5 लाख प्रतियों का प्रकाशन आम बात थी, मगर महंगी होती प्रिंटिंग ने इसके प्रकाशन के सामने आर्थिक संकट पैदा कर दिया।
1: भारती जी पत्रिका का स्तर गिराना नहीं चाहते थे, मुनाफा था नहीं, अतः उन्होंने दुखी मन से पत्रिका के प्रकाशन से स्वयं को अलग कर लिया। इस प्रकार धर्मयुग के साथ भारती जी का 1960 से शुरू किया गया सफर समाप्त हो गया और इस पत्रिका से जुड़े और लगातार अपने साहित्यिक योगदान के लिए प्रसिद्ध मोहन राकेश, शिवानी, कमलेश्वर, रविंद्र कालिया और अनेक प्रसिद्ध लेखक बहुत प्रयासों के बाद भी उसे आर्थिक संकट से नहीं उबार पाए। धर्मवीर भारती का सृजन कार्य अपने चरम पर था। अपने समय के सबसे प्रतिष्ठित प्रकाशन की जिम्मेदारी से अलग होना, उसे बंद होते देखना एक दुखद अनुभव था। परंतु इसी काल में लिखी गई अपनी कालजयी रचनाओं के कारण वो एक महान कहानीकार, कवि और नाटककार के रूप में स्वयं को स्थापित कर सके।
2: गुनाहों का देवता, अंधा युग, सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती के महान लेखक होने का एक दस्तावेजी प्रमाण बन गए। इन्हीं दिनों एक फील्ड रिपोर्टर के रूप में भारत पाक के उस युद्ध की रिपोर्टिंग की जिसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश बना। भारती जी का व्यक्तिगत जीवन बिना किसी उथल पुथल सीधा सपाट गुजर रहा था कि 1954 में उनके जीवन में साथी के रूप में कांता भारती का पदार्पण हुआ। एक पुत्री परमिता के पिता भी बने, लेकिन ये शादी लंबे समय तक नहीं चल सकी और बाद में उन्होंने पुष्पा भारती से विवाह किया और एक बेटे किंशुक और बेटी प्रज्ञा के पिता होने का गौरव प्राप्त किया।
1: बहुमुखी प्रतिभा के धनी धर्मवीर भारती कविता में साहित्यिक रंग ज्यादा खोजते थे। फिराक गोरखपुरी, जो स्वयं एक महान शायर थे, लेखक थे, उन्होंने धर्मवीर भारती की लोकप्रियता का आकलन करके रोमांटिक कविताएं लिखने के लिए प्रोत्साहित किया। मगर वो कहां समझौता करना चाहते थे। एक तो उन्हें साहित्यकारों द्वारा बनाया गया कोई संगठन पसंद नहीं था, दूसरा कविता में रोमांस उनको अपने नजरिए से पसंद था। कविता अर्थात जो दिल को तसल्ली दे और रूह को तड़पा दे, जो दूसरे के दर्द को आत्मसात करने की शक्ति दे। वो एक जीवट व्यक्ति ही नहीं, एक जीवट कवि, लेखक और नाटककार भी थे। जो भी लिखते दिल की गहराइयों से लिखते और रूह के सारे रंगों से सजाते। डूब कर लिखते, दुखांत लिखते, तो उसे अपने आंसुओं और दिल की धड़कनों से इतना जीवंत बना देते कि पाठक को अपनी व्यक्तिगत व्यथा के चित्रण का आभास होता। सहजता, सरलता, आत्मीयता और सजीवता उनके लेखन को अलग कलेवर के रूप में प्रस्तुत करते।
2: धर्मवीर भारती को 1972 में पद्मश्री और संगीत नाटक अकादमी द्वारा सर्वश्रेष्ठ नाटककार होने का भारत भारती पुरस्कार प्राप्त हुआ। व्यास सम्मान और महाराष्ट्र गौरव सम्मान से भी आप नवाजे गए। देश विदेश और स्थानीय संस्थाओं से अनेक पुरस्कारों से उनका इतना सम्मान हुआ कि उसकी गाथा यहाँ आपको सुनाना संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि महत्वपूर्ण ये है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पीएचडी पूरी करने के बाद जब प्राध्यापक नियुक्त हुए तो बहुत कम समय में उनकी मशहूर दो कृतियां नदी प्यासी थी, एकांकी नाटक संग्रह, और प्रख्यात कृति चांद और टूटे हुए लोग प्रकाशित हुई। मुर्दा गांव तो इसी दौरान कनुप्रिया और देशांतर के प्रकाशन से थोड़ा पहले बाजार में आ चुके थे। इसी तारतम्य में कविता संग्रह में ठंडा लोहा, सात गीत वर्ष, आघन और अनेक कविता संग्रह छप चुके थे। इन सब कृतियों में कनुप्रिया, जो एक प्रबंध काव्य है, बहुत प्रसिद्ध हुआ, बहुत सराहा गया।
1: श्रोताओं, धर्मवीर भारती की दो कृतियां गुनाहों का देवता और सूरज का सातवां घोड़ा हर वर्ग, हर उम्र के लोगों की पहली पसंद थी और अब भी है। युवा वर्ग में गुनाहों का देवता की लोकप्रियता सुधा और चंदर के प्रेम की एक दुखांत प्रेम कथा होने के कारण बहुत सराही गई। इसके अतिरिक्त उनकी ना भूलने वाली कृतियों में 1969 में गली का आखिरी मकान कला प्रियता का अद्भुत नमूना है। इसी प्रकार उनकी बेहद प्रसिद्ध कृति अंधा युग का जिक्र इसलिए आवश्यक है कि अंधा युग देश की स्वतंत्रता के बाद आई मूल्यहीनता के प्रति चिंता और पाश्चात्य मूल्यों का आम जनमानस की मानसिकता के संतुलन में जीवंत चित्रण है। ये वो नाटक था जिसने हिंदी रंगमंच पर धूम मचा दी थी और धर्मवीर भारती को साहित्य जगत में उच्चतम स्थान प्राप्त करने के अवसर प्रदान कर दिए थे।
2: जैसा कि पहले भी संदर्भ आया है कि भारती जी पाश्चात्य साहित्य के और रूसी साहित्य के प्रति रुचि रखते थे। गोर्की, डिकेंस, बाल्जक, विक्टर ह्यूगो, शैली और कीट्स उनके प्रिय लेखक थे। इन लेखकों की कृतियों के उनके द्वारा किए गए अनुवाद बहुत सराहे गए। उनकी कृतियों पर, कविताओं पर एज़रा पाउंड, एलिजाबेथ जेनिंग और ऑडन का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। ऑस्कर वाइल्ड की कहानियों का उनके द्वारा किया गया अनुवाद भी हिंदी साहित्य में विशेष स्थान रखता है। धर्मवीर भारती जी की असंख्य कृतियों में संगमरमर की एक रात, सृष्टि का आखिरी आदमी, ठेले पर हिमालय और पश्यंती मध्यम वर्गीय पाठकों के लिए सहजता से उपलब्ध साहित्यिक खजाने थे। एक ऐसा पाठक वर्ग दीवानगी की सीमा तक उनके द्वारा लिखित नाटक, कविताओं, निबंध, वृत्तांत आदि को पसंद करने वाला बन गया कि सामाजिक और आर्थिक जीवन में उसका स्पष्ट प्रभाव दिखाई देने लगा। आम जनमानस की सोच, दृष्टिकोण और मानसिकता पर सकारात्मक प्रभाव ऐसा कोई साहित्यकार नहीं डाल पाया था जैसा सरल भाषा में उपलब्ध उनकी साहित्यिक धरोहर ने किया। उनकी कहानियों में, कविताओं में पाठक कहीं अपने मन की भावनाओं की प्रतिछाया देख पाते हैं।
1: बेहद जीवट और घुमक्कड़ स्वभाव के धर्मवीर भारती का व्यक्तित्व, उनकी सादगी और चेहरे पर ज्ञान के तेज के कारण सहसा ही आम आदमी को अपनी ओर आकर्षित कर लेता। वो राह चलते साधारण से साधारण व्यक्ति से बहुत आत्मीयता से बात करते। महान साहित्यकार होने का कोई आडंबर उन्हें छू तक नहीं पाया था। यात्राएं उन्हें बहुत पसंद थी। उन्होंने देश विदेश की यात्राएं की। सन 1961 में कॉमनवेल्थ रिलेशन कमेटी के निमंत्रण पर वो इंग्लैंड और अन्य यूरोपीय देशों की यात्रा पर गए। 1962 में जर्मनी और भारतीय दूतावास के अतिथि के रूप में इंडोनेशिया और थाईलैंड की यात्रा की। मॉरिशस में वहां की जनता के बीच दोस्ताना अंदाज में उनसे बातचीत की। संवाद के द्वारा उनकी समस्याओं को लगभग भारत की समस्याओं के ही समान जानकर उनके निराकरण पर बात की।
2: अनेक विदेश यात्राओं के बाद अपनी जीवटता के बल पर बीमार होते हुए भी बीमारी का कोई लक्षण चेहरे पर दिखाई नहीं देता था। जब वो बहुत बीमार थे तो 3 हार्ट अटैक आने के बाद भी स्वयं को सामान्य रखने की कोशिश कर रहे थे, मगर जिंदगी हथेलियों से फिसल रही थी। और इस प्रकार 1990 में धर्म युग की ये मशाल बुझ गई। मगर धर्मवीर भारती को, जो स्वयं को आदि विद्रोही कहते थे, उन्हें हिंदी साहित्य के लेखक के सीमित दायरे से निकालकर एक महान साहित्यकार के रूप में संसार के साहित्यिक पटल पर स्थापित कर गई।
1: उन्हें न कोई भूल सकता है न भूलेगा। वो जिंदा हैं। हर घर में जहां धर्म युग की प्रतियां एक बेशकीमती खजाने की तरह सुरक्षित हैं, बिल्कुल उसी प्रकार उनकी यादें सुरक्षित हैं। वो जिंदा हैं अपनी कृतियों में। वो आदि विद्रोही थे जो कभी नहीं मर सकते। श्रोताओं, अजीब इत्तेफाक है कि वो जिस पत्रिका से जुड़े उसका नाम धर्मयुग था। उनकी लिखी जो सबसे अधिक कृति प्रसिद्ध हुई उसका नाम अंधायुग था। वाकई वो एक युग प्रवर्तक थे। वो एक ऐसे लेखक थे जिनका यशोगान युगों युगों तक किया जाता रहेगा। हम आज उनके जाने के इतने साल बाद भी उन्हें इस तरह याद कर रहे हैं क्योंकि ऐसे शब्दों के शिल्पकार कभी कहीं नहीं जाते। अपनी कृतियों के जरिए हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहते हैं। तो शब्दों के शिल्पकार में आज समय यहीं समाप्त होता है। इजाजत दीजिए मुझे यानी अपने रेडियो मित्र संदीप शर्मा
2: और मुझे संयुक्ता बैनर्जी को।
1: तो श्रोताओं, अगली बार मिलेंगे फिर किसी और शब्द शिल्पी के साथ, बहुत सारी जानकारियों के साथ। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि इस कार्यक्रम की परिकल्पना और निर्देशन का श्रेय जाता है सुश्री अदिति गौड़ को। आलेख था डॉक्टर शमा न्याजी का। इस कार्यक्रम का ध्वनि अंकन और ध्वनि संपादन किया अमित कुंदानी ने। तो मुझे और संयुक्ता को दीजिए इजाजत।
2: नमस्कार।
1: सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद,
2: देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 MHz पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।
2: स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और उनके विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: धर्म महासभा में कामयाबी के पश्चात स्वामी जी शिकागो ही नहीं बल्कि पूरे देश में परिचित हो गए। उन्हें दूर दराज के क्षेत्रों से भी व्याख्यान देने के निमंत्रण मिलने लगे। महासभा के बाद स्वामी जी शिकागो में कितने दिन रहे या कहां कहां व्याख्यान दिया इसका ठीक ठीक पता नहीं चलता, फिर भी अनुमान है कि वे कम से कम 2 महीने वहां रहे। व्याख्यान देने के साथ ही साथ वे अमरीकी समाज व्यवस्था का अध्ययन भी करते थे और उनकी तरक्की के कारण भी पता करते थे ताकि उनमें से अच्छी चीजें भारत में चलाई जा सके। महासभा के 1 वर्ष बाद सितंबर 1894 के शिकागो इंटर ओशन नामक पत्रिका में स्वामी जी के बारे में प्रकाशित एक लेख में ऐसी ही बातें थी।
1: विराट महासभा के बाद भी स्वामी विवेकानंद कुछ महीनों शिकागो में ही रह गए। जिस प्रकार वे अपने देशवासियों की नैतिकता एवं आध्यात्मिकता के बारे में अकाट प्रमाण देश में लाए थे, उसी प्रकार वहां लौटकर भी अमेरिका के बारे में अकाट युक्तियां प्रस्तुत कर सके। इस उद्देश्य से वे विद्याभास तथा सभ्यता की भौतिक उन्नति विषय अनेक तत्वों की खोज में लगे हुए थे।
2: उन दिनों वे अपनी योजनाओं के लिए क्यों प्रत्यक्ष रूप से धन नहीं मांगते थे, इसका एक कारण सुशील लूसी मनरो के लेख में मिलता है। वे कवित्री हैरियट मनरो की बहन तथा खुद भी अच्छी लेखिका थी। उन्होंने लिखा है,
3: विवेकानंद अब भी इस नगर में हैं। उनका इस देश में आने का मूल उद्देश्य हिंदुओं के बीच गए उद्योग स्थापित करने के लिए अमेरिका वासियों को प्रेरित करना था, परंतु फिलहाल उन्होंने उसे छोड़ दिया क्योंकि उन्होंने देखा कि अमेरिका वासी जगत में सर्वाधिक परोपकारी लोग हैं, अतः हर कोई अपनी योजना लेकर यहाँ सहायता पाने चला आता है। उनकी सुसंस्कृत रुचि, वाग्मिता तथा आकर्षक व्यक्तित्व ने हमें हिंदू सभ्यता के बारे में एक नई धारणा प्रदान की है।
0: स्वामी जी के व्याख्यानों का दौर चलता रहा। श्रोतागण उनके ज्ञान से मुग्ध थे। उनका व्याख्यान विभिन्न विषयों और विभिन्न स्तरों पर होता था। कभी भारतीयों की पर धर्म श्रद्धा, तो कभी अद्वैतवाद, कभी पुनर्जन्म, तो कभी भारतीय नारी। हर व्याख्यान के लिए उन्हें धन मिल रहा था। $50 से $100 उन्हें मिल जाया करते थे।
2: शिकागो में रहते समय स्वामी जी के जीवन में कई घटनाएं घटित हुई थी। स्वामी जी के शिष्य श्री शरद चंद्र चक्रवर्ती पत्र में एक घटना का उल्लेख करते हैं।
4: स्वामी जी ने एक बार मुझे बताया कि एक दिन चांदनी रात में जब वे मिशिगन झील के किनारे बैठे हुए थे तो उनका मन ब्रह्म में लीन होने लगा। अचानक ही उन्हें श्री राम कृष्ण का दर्शन हुआ और स्मरण हो आया कि वे एक विशेष कार्य हेतु जगत में अवतीर्ण हुए हैं। इस विचार के उठते ही उनका मन नीचे उतर आया और अपने जीवन वृत्त की ओर धावित होने लगा। ये घटना मैंने अपनी दैनंदिनी में लिख रखी थी, पर उसे प्रकट करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई, केवल आपको ही बता रहा हूं।
0: शिकागो में जब स्वामी जी श्री हेल के मकान में रहते थे तो रोज ही पास वाले लिंकन पार्क में घूमने जाते थे। एक महिला रोज अपनी 6 वर्ष की बेटी के साथ उस पार्क में से होकर के गुजरती थी। बच्ची के साथ उन्हें बाजार में तकलीफ होती होगी और स्वामी जी रोज वहां ही बैठे मिलते थे, इसलिए एक दिन में महिला स्वामी जी के पास आई और बोली,
5: सुनिए
6: जी। कहिए।
5: आप यहाँ रोज ही बैठे रहते हैं, यहीं पास में कहीं रहते हैं क्या?
6: जी हाँ, मैं उस लाल वाले घर में रहता हूँ।
5: पर आप तो विदेशी दिखते हैं।
6: जी हाँ, मैं भारतीय हूँ, यहाँ मिस्टर हेल के घर में मेहमान हूँ।
5: अच्छा, पर आपका पहनावा कुछ अलग सा है।
6: मैं सन्यासी हूँ, भारत में सन्यासी इसी रंग का चोगा पहनते हैं।
5: यहाँ घूमने आए हैं?
6: नहीं नहीं नहीं, मैं धर्म महासभा में भाग लेने आया हूँ। यह आपकी बेटी है, बड़ी प्यारी बच्ची है।
5: इसी बच्ची के लिए आपके पास आई हूँ, क्या आप इसे थोड़ी देर के लिए अपने पास रख पाएंगे? मैं अभी बाजार से होकर आती हूँ।
6: हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं इसे संभालता हूँ, आप निश्चिंत होकर जाइए।
2: ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। दोनों की गहरी दोस्ती हो गई। दोनों उसी पार्क में खेलते, स्वामी जी उसे कहानी सुनाते।
0: कई वर्ष बाद बच्ची बड़ी हो गई। लगभग 10 वर्ष बाद बच्ची ने किसी पत्रिका में स्वामी जी के चित्र को देख करके पहचान ली। जिसने स्वामी जी को एक बार देख लिया उसके लिए 9-10 वर्ष बाद भी उन्हें भूल पाना कठिन था। बाद में बालिका विवाहित होकर के शिकागो से दूर फिलाडेल्फिया में बस गई और कहते हैं कि उसने रामकृष्ण संघ के एक सन्यासी से दीक्षा ग्रहण की थी।
2: स्वामी जी की आध्यात्मिक शक्ति की बात दूर दूर तक फैले जाने के फलस्वरूप बहुत सारे लोग साक्षात्कार अथवा आशीर्वाद लेने आया करते थे। सुप्रसिद्ध फ्रांसीसी गायिका मदाम एम्मा काल्वे भी इसी प्रकार उनके पास आकर लाभान्वित हुई थी। मदाम काल्वे की आत्मकथा से इसका पता चलता है और काल्वे से सुनकर मदाम पॉल वर्डियर ने अपनी डायरी में इसे दर्ज किया।
7: सन 1894 के मार्च में काल्वे जब मेट्रोपॉलिन ओपेरा कंपनी के साथ शिकागो आई तब वे अपनी कीर्ति के सर्वोच्च शिखर पर आरूढ़ थी, परंतु हठी तथा भोग परायण स्वभाव की होने के कारण उनके जीवन में शांति का अभाव था। इन्हीं दिनों शिकागो में उनकी इकलौती कन्या आग में जलकर मर गई थी। काल्वे के मन में तब आत्महत्या कर लेने का विचार आने लगा और एक मित्र द्वारा स्वामी जी के पास ले जाने का प्रस्ताव भी उन्होंने प्रारंभ में अस्वीकार कर दिया। चार बार आत्महत्या के प्रयास में विफल होने के बाद पांचवी बार वे मानो दीप जलित के समान अपनी उस सहेली के घर पहुंच गए जहां स्वामी जी ठहरे थे। बटलर ने उन्हें बैठक खाने में ले जाकर बिठा दिया। शुद्ध बुद्ध खोकर काल्वे वहां एक कुर्सी पर बैठी हुई थी कि बगल के कमरे में से किसी ने उन्हें पुकारा,
6: भीतर आओ बेटी, डरने की कोई बात नहीं।
7: स्वचलित यंत्र के समान काल्वे उस कमरे में गईं। वो स्वामी जी का अध्ययन कक्ष था। वे एक बड़ी मेज के दूसरी ओर बैठे थे।
3: अंदर जाने के पूर्व मुझसे कहा गया था कि उनके पूछने के पहले मैं कुछ भी न कहूं। अतः कमरे में पहुंचकर मैं क्षण भर चुपचाप खड़ी रही। वे उस समय शांत भाव से ध्यान की मुद्रा में बैठे थे और उनका गैरिक वस्त्र सीधा फर्श तक लटक रहा था। सिर पर पगड़ी सामने की ओर थोड़ी झुकी हुई थी तथा दृष्टि जमीन की ओर थी। थोड़ी देर बाद दृष्टि को बिना उठाए ही वे कहने लगे,
6: बेटी तुम क्यों अशांत परिवेश से घिरी हुई हो, शांत हो जाओ, ये बहुत जरूरी है।
3: इसके पश्चात उन व्यक्ति ने जो मेरा नाम तक नहीं जानते थे शांत स्वर में मेरे जीवन के गोपनीय समस्याओं तथा चिंताओं के बारे में अनेक बातें कही। उन्होंने ऐसी बातें भी बताई जो शायद मेरे परम अंतरंग मित्रों को भी ज्ञात नहीं थी। लगा कि ये कुछ अलौकिक है, अप्राकृतिक है। आखिरकार मैंने पूछा, आपको ये सब कैसे विदित हुआ, किसने आपको मेरे बारे में बताया है। मृदु हास्य के साथ आंखें उठाकर उन्होंने मेरी ओर देखा, मानो मैं एक शिशु के समान कोई निरर्थक प्रश्न कर बैठी हूँ। सौम्यता के साथ वे बोले,
6: किसी ने मुझे नहीं बताया है और बताने की आवश्यकता भी क्या है। मैं खुली किताब के समान तुम्हारे अंतर मन को पढ़ सकता हूँ।
3: आखिरकार मेरे लौटने का समय हो गया। मेरे उठकर खड़े होने पर वे बोले,
6: बीती बातों को भूल जाओ, पुनः आनंद और उत्साह का जीवन यापन करो। एकांत में बैठकर अपने दुखद प्रसंगों का चिंतन मत करो। अपनी भावनाओं को उदार करके उन्हें विविध प्रकार से व्यक्त करो। तुम्हारे आध्यात्मिक जीवन के लिए इसकी आवश्यकता है और तुम्हारी कला के लिए भी ये जरूरी है।
3: उनके शब्दों तथा व्यक्तित्व पर अत्यंत मुग्ध होकर मैं वापस लौटी। ऐसा लगता था मानो उन्होंने मेरे व्याधिग्रस्त मन की सारी कुंठाओं को दूर कर उसे पवित्र और शांतिमय भावों से परिपूर्ण कर दिया हो। उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति के प्रभाव से मेरा मन विश्वास और आनंद से भर गया। उन्होंने किसी सम्मोहक शक्ति का मुझ पर प्रयोग नहीं किया था। उनके चरित्र की दृढ़ता और उनकी सच्चाई ने मेरे मन में श्रद्धा जगा दी थी। उनके साथ अच्छा परिचय हो जाने पर मैंने देखा कि वे लोगों के बिखरे तथा चंचल विचारधाराओं को शांत कर धैर्य पूर्वक उसे अपने भावों में रंग देते थे, जिसके फलस्वरूप लोग उनकी बातों को मान लेते थे। उपदेश देते समय अक्सर वे उदाहरणों का सहारा लेते और हमारे प्रश्नों के उत्तर में अपनी बातों को सरल बना देते थे। एक दिन हम लोग आत्मा के अमरत्व पर चर्चा कर रहे थे, वे पुनर्जन्मवाद की व्याख्या करने लगे। मैं कह उठी, ये बात मैं बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकती। तुच्छ हो तो भी अपना मैंपन मुझे चाहिए। मैं एक शाश्वत के साथ लीन होना नहीं चाहती। ऐसी कल्पना तक मेरे लिए भयावह है।
6: एक दिन पानी की एक बूंद महासागर में गिर पड़ी। अपने को ऐसी अवस्था में देखकर वो तुम्हारी ही भांति रोने और शिकायत करने लगी। महासागर उस जल बिंदु की ओर देखकर हंसने लगा और बोला, तू रो क्यों नहीं है? जब तू मुझ में मिल गई तो जिन जल बिंदुओं से मैं बना हूं, अपने उन भाई बहनों से भी मिल गई है। तू स्वयं समुद्र ही बन गई है। यदि तू मुझसे अलग ही होना चाहती है तो सूर्य किरणों के सहारे बादलों में चली जा और पुनः बूंद के रूप में बरस कर प्यासी धरती का कल्याण कर।
0: अमेरिका के धन कुबेर जॉन डी रॉकफेलर से संबंधित एक घटना मदाम काल्वे से सुनकर के मदाम वार्नियर ने अपनी डायरी में लिख ली थी। श्रीमती बर्क ने उसे अपनी पुस्तक में भी लिखा है।
8: जिन सज्जन के घर में स्वामी जी रहते थे वे रॉकफेलर के किसी व्यवसाय से जुड़े हुए थे। रॉकफेलर को अनेकों बार अपने मित्र के मुख से उनके अतिथि एवं अद्भुत व असाधारण हिंदू सन्यासी के बारे में सुनने को मिला था और आकर स्वामी जी से मिलने का आमंत्रण भी प्राप्त हुआ था, परंतु किसी न किसी बहाने वे बारंबार टाल जाते थे। रॉकफेलर तब भी समृद्धि के चरम शिखर तक नहीं पहुँचे थे, तथापि वे बड़े ही सशक्त व दृढ़ इच्छा शक्ति के धनी थे और उन्हें प्रभावित करना या कोई सलाह देना अत्यंत कठिन कार्य था। स्वामी जी के साथ मिलने का आग्रह न होने के बावजूद एक दिन वे सीधे उन मित्र के घर पहुँचे। बटलर के दरवाजा खोलने पर वे बोले कि हिंदू सन्यासी से मिलना चाहते हैं। बटलर उन्हें शयन कक्ष में ले गया। स्वामी जी को सूचना देने की परवाह किए बिना ही वे बगल के अध्ययन कक्ष में प्रविष्ट हुए। ये देख कर अत्यंत विस्मित हुए कि मेज की दूसरी ओर बैठे स्वामी जी ने ये जानने की दृष्टि तक नहीं उठाई कि कमरे में कौन आया है। थोड़ी देर बाद स्वामी जी मैडम काल्वे के समान ही रॉकफेलर के अतीत की भी ऐसी घटनाएं बतलाने लगे जिन्हें उनके अतिरिक्त और कोई नहीं जानता था। स्वामी जी ने उन्हें समझाया कि उसके द्वारा संचित धन उनका अपना नहीं है, बल्कि वे उसके संरक्षक मात्र हैं और उनका कर्तव्य है कि दुनिया की भलाई करना। भगवान ने इसलिए उन्हें धन दौलत दिया है कि वे उसके द्वारा लोगों की सहायता व भलाई करके धन्य हो सके। रॉकफेलर के सामने कोई इस प्रकार बोले और कर्तव्य के बारे में निर्देश देने का साहस करे, ऐसा विचार तक उन्हें सहन नहीं होता था। नाराज होकर वे बिना विदा लिए ही कमरे से बाहर निकल आए, परंतु एक सप्ताह बाद पुनः उसी प्रकार बिना सूचना दिए उन्होंने स्वामी जी के अध्ययन कक्ष में प्रवेश किया और पिछली बार के समान ही उन्हें अध्ययन में तल्लीन पाया। स्वामी जी की मेज पर उन्होंने एक कागज फेंक दिया जिसमें विपुल धन व्यय करके एक जन उपयोगी संस्था प्रारंभ करने की योजना थी। तदुपरांत वे बोले, लीजिए महाशय, अब तो आपको संतोष हुआ, इसके लिए मुझे आप धन्यवाद दे सकते हैं। स्वामी जी ने अपनी आंखें तक नहीं उठाई, फिर कागज को उठाकर धैर्य पूर्वक पढ़ते हुए बोले, धन्यवाद तो आपको ही मुझे देना चाहिए। यही था रॉकफेलर का सार्वजनिक कल्याण हेतु पहला बड़ा दान।
0: इन्हीं दिनों स्वामी जी ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। उसी के तहत अगले 3 वर्षों के लिए एक लेक्चर ब्यूरो के तत्वाधान में अमेरिका के विभिन्न अंचलों का दौरा करते हुए व्याख्यान देने का अनुबंध हो गया। इसी दौरान उन्होंने आला सिंगा को लिखा था,
6: मैं यहाँ देश देखने, तमाशा देखने या नाम कमाने नहीं आया, बल्कि भारत के गरीबों के लिए उपाय ढूंढने आया हूँ। यदि परमात्मा सहायक हुए तो बाद में तुम वे उपाय जान सकोगे।
0: नवंबर के महीने में अनुबंध हो जाने के बाद भी उन्होंने भारतीय मित्रों को सूचित नहीं किया या सूचित करने की आवश्यकता ही नहीं समझी। शायद उन्होंने सोचा हो कि सन्यासी के लिए धन उपार्जन हेतु इस प्रकार अनुबंध होना तत्कालीन भारतीय समाज को पसंद ना आए। और जब इस नए काम की सफलता अनिश्चित है तो लोगों को सूचित करने की क्या जरूरत है। अब प्रश्न यह उठता है कि उन्होंने इस प्रकार अनुबंध क्यों किया। लोग सोचते हैं कि उनका अपना व्यय चलाने के लिए और भारत में सेवा कार्य चलाने हेतु धन संग्रह करने के लिए ही वे अनुबंधित हुए थे। श्रीमती बर्क का कहना है कि
8: जैसे आजकल वैसे ही स्वामी जी के दिनों में भी संपूर्ण अमेरिका के विभिन्न नगरों में सुव्यवस्थित ढंग से कार्य करने के लिए एक लेक्चर ब्यूरो की सहायता लेना आवश्यक था, परंतु वे 3 वर्षों के लिए अनुबंधित क्यों नहीं हुए, और वो भी एक ऐसा व्यवसायिक संस्था की बातों में आकर जो उन्हें ठग कर अथवा अनुचित रूप से परिश्रम कराकर अधिक से अधिक लाभ कमाने का प्रयास करते। ये समझ पाना कठिन है कि इन बातों पर उन्होंने गौर किया था या नहीं, अथवा इस विषय में उन्हें अपने मित्रों से उचित परामर्श मिला था या नहीं, पर हम शीघ्र ही देखेंगे कि इसका फल अच्छा नहीं हुआ।
2: इस व्याख्यान कंपनी के सहयोग से स्वामी जी एक अत्यंत मेहनत वाले काम में लग गए और तूफान की तरह अमेरिका के हर प्रांत का दौरा करते रहे। मोटे तौर पर इन व्याख्यानों का काल 20 नवंबर 1893 से अप्रैल 1894 तक माना जा सकता है। मेडिसन सिटी के व्याख्यान के संबंध में 21 नवंबर को अखबार में छपा,
9: विवेकानंद का व्याख्यान अत्यंत रोचक तथा उसमें काफी मात्रा में प्रकृत धर्म तथा दर्शन की बातें थीं। भले ही वे ईसाई नहीं हैं, पर ईसाई धर्म उनकी शिक्षाओं को ग्रहण कर सकता है। उनका धर्म ब्राह्मण की भांति ही व्यापक है, जिसमें सभी धर्मों का समावेश है और हर जगह प्रकट होने वाले सत्यों के लिए उसमें स्थान है। उन्होंने बताया कि भारतीय धर्म में कट्टरता, अंधविश्वास तथा सारहीन अनुष्ठानों के लिए कोई स्थान नहीं है।
0: एक दिन भी विश्राम किए बगैर वे 250 मील दूर डिमोइंस नगर पहुंचे। व्याख्यान का विवरण वहां भी छपा। स्वामी जी वहां बोले,
6: सच्चा ईसाई होने के लिए सभी धर्मों को मानना उचित है। एक धर्म में जिस तत्व का भाव है वो अन्य धर्मों में मिल सकता है और अच्छे ईसाई के लिए सब स्वीकार्य है। धर्मांतरण का भाव मुझे पसंद नहीं। हमारे देश में 2 शब्द हैं, धर्म और संप्रदाय, जिसका अर्थ तुम लोग जैसा समझते हो उससे भिन्न है। हमारे यहां धर्म का मतलब है सभी धर्म। हम लोग परमत असहिष्णुता के अतिरिक्त बाकी सब सहन कर लेते हैं, और संप्रदाय से तात्पर्य उन लोगों से है जो कहते हैं हम लोग ठीक हैं, तुम लोग गलत हो।
0: इतना कहने के बाद उन्होंने कूप मंडूक की कहानी सुनाई। डिमोइंस में 28 नवंबर को उनका एक और भाषण हुआ। विषय था पुनर्जन्म। स्वामी जी डिमोइंस में थोड़े ही दिन रहे, पर इसी दौरान उन्होंने पूरे शहर में मानो एक विद्युत प्रवाह संचारित कर दी थी।
2: इन दिनों स्वामी जी के लिखे हुए 5 पत्रों की जानकारी मिलती है, जिसमें उन्होंने अमेरिकी समाज के बारे में लिखा है। पहला पत्र शिष्य श्री हरिपद मित्र को लिखा गया है।
6: इस देश में अद्भुत बातें अनेक हैं। इस देश में निर्धनता प्रायः नहीं के समान है, और इस देश के समान नारियां अन्यत्र कहीं भी मेरे देखने में नहीं आई। सुशिक्षित पुरुष हमारे देश में भी बहुत हैं, परंतु इस देश जैसी नारियां शायद ही अन्यत्र दिखाई दें। और ये कैसी पवित्र है, 25-30 की आयु के पहले किसी का भी विवाह नहीं होता, और ये गगनचारी पक्षी की भांति स्वाधीन है। क्या तुम अपने देश की नारियों की अवस्था सुधार सकते हो, तभी आशा है, नहीं तो ऐसे ही पिछड़े रहोगे। इसके बाद है निर्धन लोग। हमारे देश में यदि किसी का जन्म नीच कुल में होता है तो वो सदा के लिए गया, उसके लिए कोई आशा भरोसा नहीं। क्या भाई, ये कैसा अत्याचार है। हे भगवान, हम भी क्या मनुष्य हैं? ऐसे सनातन धर्म की क्या हालत हो गई है। अब धर्म कहां है, केवल छुआछूत में। मुझे मत छुओ। अमेरिका वासियों में अनेक दोष भी हैं। आध्यात्मिकता में ये हमसे काफी नीचे हैं और सामाजिकता में काफी ऊंचे। हम इनका सामाजिक भाव ग्रहण करेंगे और इन्हें अपने अद्भुत धर्म की शिक्षा देंगे।
2: दूसरा पत्र रामकृष्णानंद जी को लिखा गया था। उसमें भी अमेरिकी स्त्रियों की प्रशंसा की है और भारत की सर्वहारा वर्ग के उत्थान की बातें कही हैं। तीसरे पत्र में मद्रास के भक्तों से कहा,
6: मेरा विचार है कि भारत में और अन्यत्र मानव जाति में जिन महान भावों का विकास हुआ, उन्हें गरीब से गरीब और हीन से हीन लोगों के द्वार तक पहुंचा दिया जाए, और तब वे स्वयं ही विचार करें जाति भेद रहे या नहीं, महिलाओं को पूर्ण स्वाधीनता मिले या नहीं, इस विषय में मुझे सिर खपाने की आवश्यकता नहीं।
0: चौथा पत्र जूनागढ़ के दीवान जी के नाम था। उसमें उन्होंने लिखा था,
6: भारत के असंख्य नरनारी मुझे नहीं समझ सके, और समझते भी कैसे, क्योंकि खाने पहनने की दैनंदिन क्रिया को छोड़कर उन बेचारों का मन कभी ऊपर ही नहीं उठा। केवल आप जैसे कुछ महामना लोग ही मेरे गुण ग्राही हैं। क्या कारण है कि अपनी अद्भुत बुद्धि तथा अन्य गुणों के रहते हुए भी हिंदू राष्ट्र छिन्न भिन्न हो गया? मेरा कहना है ईर्ष्या। इस अभागी हिंदू जाति के समान शुद्र भाव, ईर्ष्या परायणता तथा दूसरे के यश से दाह करने वाली दूसरी कोई भी जाति कभी देखने में नहीं आई। यदि कभी आप पाश्चात्य देशों में आए तो यहाँ के निवासियों में ईर्ष्या का अभाव ही सबसे पहले आपकी निगाह में आएगा।
0: पांचवा पत्र खेतड़ी के महाराजा के लिए था, जिसमें उन्होंने अमरीकी स्त्रियों के सहृदय व्यवहार तथा अतिथि परायणता के बारे में लिखा था। उन महिलाओं के प्रति कृतज्ञता प्रकाशित की गई थी एवं उनके नाना प्रकार के गुणों का वर्णन भी किया था।
2: इस तरह स्वामी जी व्याख्यानों के लिए अनुबंधित होकर समूचे देश में घूमते रहे और अपने समाचार स्वदेश के मित्रों को भेजते रहे। स्वामी जी के अमेरिका भ्रमण के बारे में हम अगली कड़ी में चर्चा करेंगे।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

0: जिंदा फिर से हो रहा।
1: जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है। धुलकर

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है।

पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है।

यातायात के नियम आपकी हिफाजत के लिए हैं। गाड़ी चलाते समय अनावश्यक ओवरटेक ना करें। गाड़ी की गति पर नियंत्रण रखें। तेज स्पीड से गाड़ी ना चलाएं। रेडियो आजाद हिंद द्वारा जनहित में जारी।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। श्रोताओं, रात्रि के 10 बजे हैं, हमारी यह सभा अब संपन्न होती है। कल प्रातःकालीन सभा में 7 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद।